इंसान भगवान के सामने बहुत भोला बन जाता है और हमेशा यही प्रार्थना करता है कि अनजाने में मैंने अगर कोई गुनाह किए हैं तो ईश्वर उसे माफ़ कर देना, क्योंकि वही सत्य को जानता है और सत्य ही शिव है।

दोस्तों, कई बार तो हम इतने हताश हो जाते हैं कि ईश्वर की मौजूदगी पर भी संदेह करने लगते हैं। ये तो वही बात हुई कि अगर आप मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान होते हैं।

और हमारी उलझन को वो सुलझा ही देते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। इसके साथ ही आज का भोर सुहाने कार्यक्रम अब संपन्न होता है और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं।

6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, प्रस्तुति रहेगी सुनीता चौहान की। श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे बालकान का आज भाग 118। 6:44 से 6:55 तक समाचारों का वक्त बता देते हैं। 6:55 से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और हिंदी में समाचार होंगे 7:00। सात बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 7:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 से 7:30 तक और प्रस्तुति रहेगी सुनीता चौहान की।

8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे। आठ बजकर 45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम, प्रस्तुति रहेगी सुनीता चौहान की। नौ बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव

0: चुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. Both leaders will be reviewing the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation. Highlighting the shared democratic values and maritime ties between the two nations, Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को। मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Prime Minister Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Later in the day, Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its 6th Project 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 into its eastern fleet at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by the Defence Minister Rajnath Singh. Union Home Minister Amit Shah has said the government

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण सुन रहे हैं आप। 6:12 और 3 सेकंड हो चले हैं और शनिवार की सुबह साथ हूं मैं आपके सुनीता।

महात्मा विदुर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धनी और ज्ञानी होने के बाद भी घमंड नहीं करता तो वो हमेशा शांत रहता है।

घड़ी मिला लीजिए, 6:27 और 28 सेकंड हो चले हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। ईश वंदन की इस मधुर वेला में मैं हूं आपके साथ सुनीता। आकाशवाणी FM गोल्ड पर एक बार फिर स्वागत है आपका। नमस्कार, सुप्रभात।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 MHz पर। और अब समय हो चला है कि हम सुने समाचार और जाने देश दुनिया का हाल। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में अब सुनेंगे आप समाचार, और मैं सुनीता लौट कर आऊंगी ठीक 7:10 पर। प्रोग्राम रहेगा गोल्ड। सुप्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही।

फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 7:10 और 56 सेकंड। ये समय है गोल्ड सुप्रभात का और आज शुरुआत उस एक्ट्रेस कॉमेडियन सिंगर के गाने के साथ जिनका जन्म हुआ 11 जुलाई 1923 को। शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ।

नौशाद साहब का म्यूजिक 1947 की फिल्म दर्द का ये गाना सुनकर अख्तर अब्बास काजी फैन हो गए इसके सिंगर उमा देवी खत्री जी पर। पार्टीशन ने उन्हें अलग किया लेकिन

वो दोनों ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाए और 1947 में ही उनकी शादी हो गई। अमरोहा उत्तर प्रदेश में जन्मी उमा देवी जी को हिंदी फिल्मों की फर्स्ट फीमेल कॉमेडियन का भी दर्जा हासिल है और इस रूप में उनका नाम था टुनटुन और ये नाम उन्हें दिया दिलीप कुमार साहब ने। और जो नेक्स्ट सॉन्ग मैंने चुना है वो दिलीप कुमार जी का ही है, फिल्म थी संघर्ष, आवाज मोहम्मद रफी साहब की और इस फिल्म में भी म्यूजिक वन एंड ओनली नौशाद साहब का ही था।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: चल।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गोल्ड सुप्रभात 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर 7:20 हो गए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं इस समय, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगी। बस इतना चाहूंगी कि आप ये जो म्यूजिक है उसे एंजॉय करें और जान लें आज के मौसम का हाल। मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज तापमान।

को ही 1945 में हुआ था। उनका जन्म, उनके पिता हिंदी फिल्मों के पॉपुलर कॉमेडियन रहे और उनका नाम था आगा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जलाल आगा की। और एक और गाना है मेरे पास जलाल आगा का, जो आप सबने देखा है और उस गाने को आप बहुत पसंद भी करते हैं। पिक्चराइज किया गया जलाल आगा साहब पर, लेकिन आवाज़ और म्यूज़िक आर डी बर्मन जी का था, और फिल्म शोले।

1972 की फिल्म मान जाइए से था ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, आवाज किशोर कुमार जी की। और स्क्रीन पर कौन थे जानते हैं आप? 11 जुलाई

आपके ये चेहरे की रंगत है ना, ये मुझे बता रही है कि आपको ये गाने अच्छे लग रहे हैं। और वैसे हो सकता है इसलिए भी आपका मूड अच्छा है क्योंकि जो मौसम है वो थोड़ा सा बदला है और अब आज आप इत्मीनान से मशीन लगा पाएंगे, कपड़े धो पाएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। और जब बारिश होती है ना, कपड़े नहीं सूखते, ये बहुत बड़ी हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है। लेकिन देखिए, बाहर का मौसम कैसा भी रहे, लेकिन आकाशवाणी एफ एम गोल्ड का मौसम हमेशा हमेशा ऐसा ही खूबसूरत सा रहता है। 10:30 पर आज आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में आज वाराणसी की तस्वीर होगी।

0: तो फिलहाल घड़ी की सुइयां मुझे कह रही हैं कि भाई अब बस करो, क्योंकि अब समय हो रहा है समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का। प्रोग्राम सुनते हैं, उसके बाद 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के साथ फिर मिलूंगी मैं आपसे यही FM गोल्ड पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज मैगजीन प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। अज्ञात का मानना था कि किताबें बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो अनुभव और ज्ञान और संसार के दरवाजे खोलती हैं। किताबों से रूबरू होना इल्म का सौदा होता है, लेकिन जिस तरह हम डिजिटल होते जा रहे हैं, किताबों की दुनिया अलमारी में बंद हो गई है। इस पर गुलजार कहते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, तो क्यों ना हम आप आज एक इल्म का सौदा करें और बंद किताबों को फिर से खोलें, जिससे हमारी समझ और बेहतर हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह के इस प्यार भरे नगमे से, जिसे खुद लिखा है गुलजार साहब ने।

0: किताबों के कई पन्ने आज भी हम पलटने जा रहे हैं अपनी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन के साथ। नमस्कार सुभद्रा।
1: नमस्कार फरहत, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू अस दिस लवली सैटरडे मॉर्निंग। यू नो फरहत, अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, यू नो यू टॉक्ड अबाउट रीडिंग बुक्स एंड एक्सरसाइज टू कीप अ माइंड बॉडी एंड ऑल्सो अ ब्रेन हेल्थी, सो यू नो जस्ट टू थ्रो योर फोन्स आउट एंड एन एक्टिविटी दैट इम्प्रूव्स आवर एबिलिटी टू रिटेन एंड इम्प्रूव मेमोरी, दैट्स रीडिंग बुक्स। And of course, Farhat, you know that this good old habit can never die. On that note, we begin this edition of Aaj Savere with some news headlines.
0: जी बिल्कुल, आज के संक में बहुत कुछ होगा, खास खबरें होंगी, महानगरों की खबरें होंगी, मौसम का हाल जानेंगे, खेल जगत के समाचार जानेंगे और अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।
1: एंड फॉर हैड समथिंग फॉर ऑल आवर पाइनएप्पल लवर्स, यस, Union Minister for the Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Scindia, and Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma inaugurated the 4th edition of Meghalaya Pineapple Festival 2026 at Delhi Heart in the national capital. And of course, this annual festival has become the state's flagship platform for connecting pineapple growers with consumers, retailers, food businesses, and export markets. Speaking on the occasion yesterday, Mr. Scindia said the program has been conceptualized based on Prime Minister Narendra Modi's vision of vocal for local and local to global. He said such programs promote trade and provide new impetus to the capabilities of farmers at the global level. The minister said Meghalaya Pineapple Fest 2026 will promote the farmers of the state.
0: जी बिल्कुल सुभद्रा, बहुत ही रोचक कार्यक्रम ये होता है। इसमें म्यूजिक, डांस कॉम्पिटिशन और इसके अलावा खाने में फ्रेश कट पाइनएप्पल, ग्रिल्ड पाइनएप्पल और पाइनएप्पल आइसक्रीम भी जो है मिलती है।
1: दिस इज एंड फॉर दैट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट्स।
0: बिल्कुल, शनिवार और रविवार है तो क्यों ना जो है हम लोग भी वहीं का रुख करते हैं। जी, और अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय

0: अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 महीने के मिशन पर रवाना होने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए श्री मेनन लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के शारीरिक प्रभावों और सूक्ष्म गुणवत्ता आकर्षण के अंतरिक्ष यात्रियों में रक्त प्रवाह, शिरा संरचना और रक्त संरचना पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे।
1: And moving on to the next news, and Farhad, the Indian Navy is all set to commission its 6th Project 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 into its eastern fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by Defence Minister Rajnath Singh. It will mark another significant milestone in India's journey towards defence self-reliance and indigenous warship construction. INS Mahendragiri, designed in-house by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai, represents the latest evolution of India's frontline stealth frigates. Incorporating advanced stealth features, enhanced survivability, reduced radar signature and a high degree of automation, the warship is designed to undertake full spectrum of maritime operations in all dimensions of naval warfare.
0: जी सुभद्रा, और अब बात कर लेते हैं जम्मू फिल्म महोत्सव की, जहां पर 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों के 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। अब तक प्राप्त प्रविष्टियों में 130 लघु फिल्में, 35 वृत्तचित्र और 17 फीचर फिल्में भी शामिल हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। और अब हम अनिवार्य घोषणा की बात कर लेते हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से विशेष बातचीत आज प्रसारित की जाएगी। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होगी और इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। और अब सुभद्रा, खेलों की बात कर लेते हैं। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। वहीं ये मैच शुरू होगा 2:30 पर। और वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना होगा स्विट्जरलैंड से। और विंबलडन टेनिस की अगर बात की जाए तो आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला उन्हीं के देश के लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल कल खेला जाएगा, इसमें विश्व नंबर 1 यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम जानेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें। तो सबसे पहले सुभद्रा, चेन्नई में क्या है खास?
1: Yes, starting with news from Chennai, the Higher Education Secretary V. Arun Roy has said that the Grade 1 college principal posts in the state will be filled by next week. Further, the principal posts in 100 Grade 2 government colleges will be filled after getting the approval from the Human Resource Management Department. Once they approve, the panel will be formed and an appointment order will be issued by the first week of August. Government colleges with over 2,000 enrollment and 3 PG courses are regarded as grade 1 colleges and others are considered as grade 2 colleges. The General Secretary of the Tamil Nadu Government Collegiate Teachers Association, S. Suresh, said that government colleges lecturers wanted the normalization process for different subjects, stating the difficulty level varied for each subject in the written exam. Moving to Bengaluru now, Nada Habba Mysuru Dasara, an amalgam of Karnataka's heritage, culture and history will be celebrated at a grand scale this year. Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwar was part of a high-level meeting under Chief Minister D. K. Shivakumar in Bengaluru to review the comprehensive preparations being made for the annual Dasara festivities. He informed media persons after the meeting that Dasara, which is the celebration of Karnataka's ancient heritage, culture and history, will be a grand affair this year. He added that some parts of the state are facing drought, but that must not prevent the state from celebrating its heritage without disruptions. Mysuru Dasara has been celebrated for 400 years. from the Vijayanagara Empire era, followed by the Mysuru Wadiyar reign to mark the victory of good over evil and other military triumphs. Dr. Parameshwar informed that over 25 lakh tourists visited Mysuru Dasara festival last year, and the district administration has made excellent arrangements. Getting over to Hyderabad Metro now, the Telangana government is making extensive arrangements to celebrate the annual Ashada Bonalu festival at the historic Secunderabad Sri Ujjaini Mahan Kali Temple with unprecedented grandeur. Forest Environment and Endowment Minister Konda Surekha chaired a high-level preparatory meeting at the temple premises yesterday to review the coordination among various government departments, emphasizing that the Bonalu festival reflects the spiritual and cultural identity of the people of Telangana. The minister directed officials to ensure a smooth experience for the lakhs of devotees expected to visit. She noted that Chief Minister A. Revanth Reddy has allocated 20 crore for this year's festivities, enabling the administration to execute the celebrations on a spectacular scale. Farhat, over to you now for rest of the news.
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की एक पहल भी शुरू की है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम DTC ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित बनाने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड धारक महिलाओं को ही DTC और क्लस्टर बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस महीने के अंत तक की कागजी पिंक टिकट जारी रहेगा। जिन महिलाओं के पास ये पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें निर्धारित किराया देकर सामान्य टिकट लेना होगा। और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक जिले में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया है। नासिक संभागीय आयुक्त प्रवीण गेदम की अध्यक्षता में गठित इस SIT में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये घोषणा राज्य विधानसभा में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान की गई। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र में जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हुई है और राज्य के जलाशयों में अब उनकी कुल भंडारण क्षमता का 41% से अधिक जल जमा हो गया है। वहीं मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण जलाशयों में जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि आने वाले महीनों में शहर को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त बारिश की जरूरत है। और अब हमारा आखिरी समाचार है कोलकाता का। पश्चिम बंगाल सरकार सदियों पुरानी रथ यात्रा समितियों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सोमवार को सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नाबन्ना सभागार में इन समितियों के प्रतिनिधियों को अनुदान राशि सौंपेंगे। प्रारंभिक तौर पर 25 रथ यात्रा समितियों की पहचान की गई है और ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। प्रारंभिक सूची में इस्कॉन, महेश, महिषदल, नवद्वीप, जगन्नाथ मंदिर और बाग बाजार, जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर प्रबंधन समिति जैसी ऐतिहासिक समितियां शामिल हैं। महानगरों के समाचारों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई की बात की जाए तो वहां पर भी बारिश जारी है और तापमान में गिरावट महसूस होगी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी आसमान आमतौर बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो सुभद्रा, ये तो थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के मौसम का हाल। चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम?
1: Yes, Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees Celsius, maximum will be around 35 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky, minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will have be between a minimum of 25 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
0: और श्रोताओं, आज है 11 जुलाई 2026, तो आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को पलटते हैं.
1: Yes, and there is a very important issue for her that's prevalent all over the globe, and I'm sure you can guess what it is.
0: जी बिल्कुल, जनसंख्या.
1: Yes, today is the World Population Day, and of course the observance aims to raise awareness about critical issues like maternal health, gender

0: The equality, family planning and sustainable resource management. And this year, World Population Days, they have a theme this year called Realizing the Hopes and Aspirations of Young People Today and for the Future.
1: जी बिल्कुल, और अगर इसे इतिहास की अगर बात की जाए इसके, तो 11 जुलाई 1987 को इसी दिन दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी और पूरी दुनिया के लिए तेजी से बढ़ती आबादी एक चिंता का सबब थी. अमेरिका ने बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसी दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया था और ये कार्यक्रम पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस
0: एंड आल्सो भारत द थीम एम्फसाइजेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन हेल्थ स्किल्स एंड द राइट्स ऑफ यूथ फॉर देम सो दैट इन्फ्लुएंस द फ्यूचर थ्रू डेमोग्राफिक मींस.
1: जी बिल्कुल, और इसी के जो है तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. और अब आगे बढ़ते हैं, 1922 की बात कर लेते हैं. आज के दिन हॉलीवुड बाउल की शुरुआत हुई. लॉस एंजलिस के बोल्टन कैनियन में एक खुले प्राकृतिक एम्पी थिएटर के रूप में हुई थी.
0: एंड आई एम गोइंग बैक इन टाइम 1735. मैथमेटिकल कैलकुलेशन सजेस्टेड दैट इट वाज ऑन दिस डे दैट प्लूटो मूव्ड फ्रॉम द 9th टू 8th मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट टाइम बिफोर 1979.
1: सन 2002 में आज के दिन चोंग सोंग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी.
0: एंड 1848 लंदन वाटरलू स्टेशन ब्रिटेन्स बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन वाज ओपन बाय द लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवेज.
1: 2003 की बात कर लेते हैं सुभद्रा, तो आज के दिन हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत हुई थी. भारतीय भाषाओं में ज्ञान का सबसे बड़ा मुक्त ऑनलाइन स्रोत बन चुका है ये विकिपीडिया. 300 से अधिक भाषाओं में ये उपलब्ध है.
0: पीपल कंसल्ट दिस एवरी डे एवरी सेकंड एवरी मिनट एवरी आवर. एंड गोइंग बैक अगेन, आई एम गोइंग बैक इन टाइम. इन 1899 टिजुआना सिटी इन मेक्सिको वाज फाउंडेड. इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन बाहा कैलिफोर्निया ऑफ मेक्सिको एंड ऑफ कोर्स इट इज द इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर of Mexico. And 1921, Mongolia declared independence from the Republic of China following a period of occupation by Chinese forces. And 1921, a truce called in the Irish War of Independence.
1: और अगर 1979 की बात की जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काई लैब विखंडित होकर ऑस्ट्रिया के पश्चिमी तट के समीप समुद्र में जा गिरी.
0: And 1960, American author Harper Lee's To Kill a Mockingbird was published and became a classic, noted for its sensitive treatment of a child's awakening to racism and prejudice in America's South. And also in 1962, first transatlantic transmission of satellite television was done. It is a system for transmitting television program signals through communication satellite. And before the invention of this system, cable networks were used for exchange. And also 2000, this day, the very popular Punjabi writer Amrita Pritam was honored with the highest award of Punjabi literature, the Shatabdi Samman. And in 2012, the discovery of Pluto's fifth moon was announced by astronomers. The Stylax was the name that was given to the moon.
1: और सुभद्रा, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों को याद करते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी की. प्रभावशाली लेखन ने सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जिसमें उन्होंने दलितों, महिलाओं और गरीबों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बड़ी ही प्रखरता से आवाज उठाई. भीष्म साहनी की महान रचनाओं में तमस, बसंती, झरोखे, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा, नीलोफर, चीफ की दावत, फैसला, चीले, अमृतसर आ गया शामिल है. साल 1957 लेकर साल 1963 तक भीष्म साहनी मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के तौर पर कार्यरत रहे और इस दौरान इन्होंने करीब 2 दर्जन किताबों का हिंदी में अनुवाद किया जिसमें टॉल्स्टॉय के उपन्यास भी शामिल थे. अनुवाद को भीष्म साहनी एक कला मानते थे. वो लिखते हैं, अनुवाद कार्य भी एक कला है. पाठक को जो रस कहानी उपन्यास को मूल भाषा में पढ़ने पर मिले, वैसा ही रस अनुवाद में भी मिले, तभी अनुवाद को सफल और सार्थक अनुवाद माना जाता है. वाकई में सुबह देखा जाए तो यानी जिसे हम अनुवाद करते हैं बेहद जरूरी है और पूरी कहानी को वो अगर एक गलत अनुवाद हो जाए तो बदल कर रख देता है. बिल्कुल, भीष्म साहनी की कहानी तमस पर आगे चलकर फिल्म का निर्देशन भी हुआ और तो क्यों ना, गोविंद निहलानी इसके निर्देशक रहे. तो इस फिल्म का ये जो है एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो उस टाइम पे आजादी के जमाने में गुनगुनाया जाता था, ये सुन लेते हैं.
2: गुरु जे कामयाबी पर कभी हिंद

शरीर, मजेदार चेहरे के हाव भाव और कमाल की कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है। जी हाँ, उस समय सभी डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी वो। हम बात कर रहे हैं टुनटुन की। हिंदी सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन थी ये। सबको हंसाने वाली कलाकार का बचपन त्रासदी से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन वो सिंगर बनने मुंबई और नौशाद के संगीत में अफसाना लिख रही हूँ जैसे सुपरहिट गाने गाए। और इसके अलावा मिस्टर एंड मिसेज 55, आर पार, प्यासा के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो क्यों ना उन्हीं के गानों की ये प्यारी सी मेडली सुन लेते हैं।

0: The winner of 54th Gyanpeeth Award in the year 2018, best known for his work in English fiction, Amitabh Ghosh celebrates his birthday today. In fact, he is the first English language writer to win the award. Amitabh Ghosh's works have received critical acclaim, recognition both at home and abroad. And today is also the birthday of Jhumpa Lahiri, English-born Indian-American novelist and short story writer whose works illuminate the immigrant experience. While in graduate school and shortly thereafter, Lahiri published a number of short stories in magazines. As a New Yorker, Harvard Review and Story Quarterly, she collected some of these stories in her debut collection, Interpreter of Maladies, in 1999. And among the awards garnered by Interpreter of Maladies were 2000 Pulitzer Prize for Fiction.
1: और श्रोताओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपके शहर में कौन कौन से होंगे कार्यक्रम। राजधानी दिल्ली में शाम 6:30 बजे से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शाम आयोजित होगी। वहीं इंडिया हैबिटेट सेंटर में 7:30 बजे से द स्टीन ऑडिटोरियम ट्रेजेडी में कॉमेडी का मंचन होगा। और इसके साथ ही वक्त कह रहा है कि हमें कहना होगा आपसे अनुमति, क्योंकि इन दिनों बारिश का भी मौसम चल रहा है, तो क्यों ना आर डी बर्मन के ये संगीत जो है वो सजे ये इस प्यार भरे गीत को सुन लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं लता और यसुदास की आवाज में ये प्यार भरा नगमा।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
0: नमस्कार।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
4: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
6: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
4: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
6: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
4: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार

0: सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
1: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज हैं और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं।

0: वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। किसका मकसद?

0: इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया था जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाज़ा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इक्तसादी शराकत दारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौकों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए ताकि तवील मुद्दती शराकत दारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इक्तसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने

0: ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज़ को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन इस्तेहकाम के बुनियादी जामीन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज़ महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को फसा और ज़मीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहर हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाज़ों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहर हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकत दार मुल्क के तौर पर एक तरजीह मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तिजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तिजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निज़ाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटा बेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजवजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मायना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में मरकजी दाखला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के सेक्रेटरी और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी, नीज CISF के डायरेक्टर जनरल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मर्चेंट जहाजरानी कानून 2025 की दफा 13 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम को कानूनी इदारे की शक्ल दी जा रही है। ये ब्यूरो बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत डायरेक्टर जनरल के मातहत काम करेगा। ये ब्यूरो सलामती से मुतालिक मालूमात मुश्तरक करने, तजिया करने और उन्हें बरवक्त जमा करने की यकीनी बनाएगा। इसके अलावा ब्यूरो साइबर सलामती पर खसूसी तवज्जो देगा और एक मखसूस डिवीज़न साइबर हमलों के खिलाफ बंदरगाहों के IT बुनियादी ढांचे को तहफ़ फराहम करेगा। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: नायब सदर CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान नायब सदर गया के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में बिहार कानून साज असेंबली के अराकीन के तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुकासिमत में हालिया इजाफे के बावजूद वाशिंगटन और तेहरान बातचीत जारी रखने पर रजामंद हो गए हैं। तहम सदर ट्रंप ने

0: बयान किया कि फरीकैन के दरमियान गुज़िश्ता महीने हुई जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है और अमरीका इस पर राजी हो गया है। वहीं अमरीका ने भी मुतालबा किया है कि ईरान आबनाए हुरमुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करे। आबनाए हुरमुज़ में जारी लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब 3 कतरी और सऊदी तिजारती टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अमरीका को ईरानी मकामात पर हमले करने पड़े और जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद 4,000 से तजावुज़ कर गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के चीफ जॉर्ज रोड्रिगेज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लातिनी अमरीकी मुल्क में 7.2 और 7.5 शिद्दत के जके बाद दीगरे आए 2 जलजलों में कम अज़ कम 4,118 अफराद हलाक हो गए हैं और 16,740 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हम अपनी सीरीज़ प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप 100.1 मीटर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 पर सुन सकते हैं। आप ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। फीफा आलमी कप में कल रात अमेरिका के इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकिश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुचोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हिसार कर रही हैं, जबकि अपनी सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर 1 यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में तआवुन बढ़ाने के लिए एक रोडमैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम विरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती विरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समत में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने उजागर किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ़ की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिससे दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

म्यूजिकल दिल्ली का आगाज हो चुका है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। 8:46:03 यह पहला सेगमेंट सुनीता है आपके साथ और आरजू लखनवी साहब फरमाते हैं कि वफा तुमसे करेंगे दुख सहेंगे नाज उठाएंगे। वफा तुमसे करेंगे दुख सहेंगे नाज उठाएंगे, जिसे आता है दिल देना, जिसे आता है दिल देना उसे हर काम आता है।

1982 की फिल्म तेरी कसम से ये सॉन्ग, आवाज अमित कुमार, म्यूजिक आर डी बर्मन और स्क्रीन पर मनोज तुली, सॉरी उनका स्क्रीन नेम है कुमार गौरव, सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका बर्थडे। 11 जुलाई 1956 को हुआ उनका जन्म। डेब्यू किया 1981 की सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी से। इसी फिल्म का ये प्यारा सा गाना अब खास आपके लिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

लता मंगेशकर जी की आवाज, फिल्म कुदरत का ये गाना इस सेगमेंट का आखिरी गाना। अगले सैटरडे फिर मिलूंगी आपसे मैं सुनीता यहीं एफएम गोल्ड पर। इस गाने के बाद आप सुन पाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

0: किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ेगा। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गयाजी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुआ युद्धविराम समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मोरिना ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade, in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030 following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज

0: विशेष मेहमान हैं आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सके, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
1: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहाँ वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इम्प्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इम्प्रूव होगी, हमारे एक्शंस इम्प्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
0: जी।
1: इसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
0: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
1: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
0: जी,
1: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
0: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
1: बिल्कुल,
0: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
1: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6-figure सैलरी कमा रहे हो, तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश

0: कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का एमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का एमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह एक कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न हैं उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा है उनको इस

0: लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: So, आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
0: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं, तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन।

0: करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली? अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वॉन्ट है। तो एक बार नीड वर्सेज वॉन्ट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है, तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वॉन्ट है। और फिर नीड है कि वॉन्ट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया x से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवस पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम, तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलतफहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंड और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर यह धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना, कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता है जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके, अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो

0: काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलते हैं वहां 100 दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो एमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस करे कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इंप्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था एस्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो हैं, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं कल दिल लगी में मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों 11 जुलाई शनिवार का दिन है, थोड़ा थोड़ा फुर्सतों का दिन है, फुर्सतों की सुबह है। बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें लिए एक पूरा दिन हमारे सामने है। आइए इसमें भरी हम सुकून का रंग, सपनों का रंग, प्यार का रंग। बहुत प्यारा गीत है आपके लिए फिल्म मिशन कश्मीर का, आइए सुने शंकर महादेवन की आवाज़ में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं उसकल दिल लगी कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। ये दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर पहली बार 11 जुलाई साल 1990 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं जैसे गरीबी, पर्यावरण पर दबाव, बेरोजगारी तथा स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना और परिवार नियोजन के महत्व को समझाना और समझना भी है। तो हम सभी को इस जागरूक होने की जरूरत है, जिससे देश, समाज और धरती को बेहतर बनाया जा सके। जब बात धरती की आती है तो साथ ही देश प्रेम भी कहीं ना कहीं दिल में हिलोरे लेने लगता है। देश प्रेम का गीत, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, जिगरी दोस्त फिल्म का एक गीत, आइए सुनें।

साथियों, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो बहुत प्यारी लगती हैं और हमारे मन को खींचती हैं। फिलहाल हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख कौशल प्रशिक्षण योजना है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग संबंधित प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना में आयु सीमा 15 से लेकर 35 वर्ष के बीच है और इसके तहत प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होता है। इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं, तो जो भी युवा इसके पात्र हैं उन्हें जरूर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस बारे में ज्यादा जानकारी और आवेदन के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर इसे देखें। रोजा फिल्म का गीत हरिहरन की आवाज में आपके लिए।

0: देश।
1: भारत हमको जान से प्यारा है और हिंदुस्तानी नाम हमारा है। भारत देश ने समय समय पर ऐसे दिग्गजों को जन्म दिया है जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत की तस्वीर सजाने में, संवारने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ कथाकार, नाटककार तथा अभिनेता भीष्म साहनी की डेथ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ था। उनके पिता अपने समय के मशहूर समाजसेवी थे। मशहूर अभिनेता बलराज साहनी उनके बड़े भाई थे। भीष्म साहनी ने न केवल कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे बल्कि वे थिएटर की दुनिया से भी जुड़े रहे। उन्होंने मशहूर नाटक भूत गाड़ी का निर्देशन भी किया। उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा भी गया। 11 जुलाई साल 2030 को भीष्म साहनी ने इस दुनिया से विदा ले ली, लेकिन अपनी कृतियों द्वारा वे हमेशा समाज में नवचेतना की रोशनी फैलाते रहेंगे। अनाड़ी फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

0: नाम है।
1: इसी गीत के साथ ही मैं कल दिल लगी यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं कुसुम आपके साथ फिर से रहूंगी। फिलहाल जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूँ। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज

0: हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गयाजी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुए युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिन में आज राजधानी दिल्ली में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हुई। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 9 बजे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। वार्ता के दौरान अगले 4 वर्ष के लिए सहयोग रणनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा और भारतीय नौसेना तथा न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और उसके विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऑकलैंड में इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट 2026 कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता केवल 9 महीने में पूरा होना दोनों देशों के मजबूत विश्वास का प्रमाण है।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्ष में भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध ईरान के नए नेता मुज्तबा खामेनेई के एक प्रमुख वित्तीय सहयोगी सहित 13 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर लगाए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार दुबई स्थित ईरानी बैंकर और कारोबारी अली अंसारी पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और अन्य संस्थाओं को वित्तीय

0: सहायता देने का आरोप है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 3 एक्सचेंज हाउस और कई कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य ईरान के शीर्ष नेतृत्व की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुआ युद्धविराम समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कतर का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान जा रहा है। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से लागुएरा प्रांत में भारी तबाही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए लगभग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता की अपील की है। नाइजीरिया में सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 2 महीने पहले अगवा किए गए शिक्षकों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। ये कार्रवाई दक्षिण पश्चिमी ओयो राज्य में की गई। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अभियान के दौरान 8 संदिग्ध अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई अन्य मारे गए। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हुई। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश के लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership. Set target to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. US imposes fresh sanctions on Iran-linked individuals as West Asia crisis deepens again. Death toll in Venezuela's devastating twin earthquakes last month crosses 4,000. In FIFA World Cup, Spain booked spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia's Karolina Muchova to face compatriot Linda Noskova in women's singles

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल का मेलबॉक्स। आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। इस कार्यक्रम में आप अपनी मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता तन्या की पसंद पर फिल्म परिंदा से। कविता तन्ना आप सुन रही हैं कार्यक्रम को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पसंद का गीत आपके लिए ये रहा।

बहुत सारे साथियों के संदेश हम तक पहुंचते जा रहे हैं। देर न करते हुए मैं सभी के नाम शामिल करने की कोशिश करती हूं। मारहरा दरवाज़ा एटा से हमें संदेश भेजता है नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अशफ अब्बासी, रसीद वारसी। किदवई नगर शिवपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिहा अंजुम खान, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। और उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का भी संदेश हम तक पहुंचा है। नमस्कार भेजते हैं मजनू कटिला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का भी संदेश हम तक आया है। शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे भी हमें सुन रहे हैं, संदेश भेजते हैं। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश आया है एडवोकेट ममता मोदी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, दिल का मेल बॉक्स, अच्छा रामगढ़ कैंट से लिख रहे हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर तसीम कौसर, और ये भी हमें संदेश भेजते हैं। और हम इनकी पसंद का गीत सुन रहे हैं, जिला खरगोन सनवा मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा।
3: ध्यान रखना बेटा।
4: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
5: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
4: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
5: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
4: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा दिल का मेल बॉक्स, और आपके दिल का मेल बॉक्स खुला हुआ है। बहुत सारे खत, बहुत सारे संदेश हम पढ़ पा रहे हैं। ये जो संदेश है वो आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा का है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेजते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और ये संदेश है महाराष्ट्र से, परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई का। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिक्स डिकेस्ट्रो का। और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार भी हमें संदेश भेजते हैं। बबलू कश्यप, सलीम अख्तर, सिराज मिथुन, नवाब अहमद, अशरफ अली, दिल्ली से संदेश हम तक पहुंचा है। और कस्बा गुन्नौर से अभी नाम पढ़ चुके हैं फारूक अली और परिवार के सदस्य। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना का भी संदेश हम तक पहुंचा है। राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, और पिंकी स्वर्णकार, मुन्ना भाई स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है वीरम गाम गुजरात से, अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार और इनके परिवार के सभी सदस्य हमें संदेश भेजते हैं। बालू छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और इनका पोता है मास्टर अल कबीर, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ भी हमें संदेश भेजते हैं। इंद्रनगर भावरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन का भी संदेश हम तक आया है। राजेश कुलकर्णी, गौरी कुलकर्णी, राघव

कुलकर्णी, ये हैं पुणे महाराष्ट्र से, ये भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां लक्सर हरिद्वार, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से भी संदेश भेजते हैं। विजय सुरलकर, रतनमाला सुलरकर, कुमकुम गुड़िया, मोताला महाराष्ट्र से हमें संदेश भेजते हैं। बबलू कश्यप का संदेश मैं पढ़ चुकी हूँ, आपका भी दो दो बार आया है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का भी संदेश हम तक पहुँचा है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक का भी संदेश हम तक आया है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के समस्त जो सदस्य हमें संदेश भेजते हैं वो हम तक पहुंचा है। और अगला गीत जो हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आज अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिवस है, तो हम सबकी ओर से, एफएम गोल्ड की ओर से अभिनेता कुमार गौरव को जन्मदिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कस्बा बिलराम गेट से इरशाद अहमद शाह की फरमाइश पर हम सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी का ये गीत। और क्योंकि कुमार गौरव का जन्मदिवस है, इसलिए हम सबकी ओर से ये शुभकामनाएं उनके लिए।

और अब एक बार फिर से आपके दिल के मेल बॉक्स की ओर हम बढ़ते हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है मोताला महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर और आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सरिकाली खान का भी हमारे पास संदेश पहुंचा है। नईम खान, अकरम निसार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानू, एलजा नायब और लड्डू भी हमें संदेश भेजते हैं। अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी, दाऊद सराय सहारनपुर से हमें संदेश भेजते हैं। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन भी हमें संदेश भेजते हैं। शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ भी हमें संदेश भेज रहे हैं। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, नाजिया इब्राहिम का भी हमें संदेश पहुंचा है। सादुल शहर से, राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बाबू डब्बू का भी संदेश मेल हमें पहुंचा है। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, जिनका संदेश मैं शामिल कर चुकी हूँ, एक बार फिर से आया है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमन, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश भेजते हैं। और अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं जिसे हमें संदेश में भेजा है पसंद अपनी, खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू, इनकी पसंद का ये गीत बैजू बावरा फिल्म से।

और साथियों, जल्दी जल्दी से आपके नामों को शामिल कर लिया जाए क्योंकि समय कह रहा है कि अब बहुत थोड़ा रह गया है। ये संदेश हमें अभी आया है, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन।

आशीष राजा चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु खुराना का हमें अभी मिला है संदेश। अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीवियम जैन मलियान सरदना मेरठ से हमें संदेश भेजते हैं और तारीफ भेजते हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश भी हमारे पास है सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विनी शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह का भी संदेश हम तक पहुंचा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना भी में संदेश भेजते हैं। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब ममता मोदी डॉक्टर प्रियंका मोदी डॉक्टर तस्नीम कौशर का भी संदेश हम तक पहुंचा। उग्रसेन यादव शकुंतला यादव गरिमा नई दिल्ली से संदेश भेजते हैं। असम से हितेंद्र दास का संदेश हम तक पहुंचा है। और साथियों आज है उमा देवी यानी टुनटुन का बर्थडे तो आइए हम उनके बर्थडे पर बहुत सारे साथियों ने शुभकामनाएं दी हैं तो आइए उनका एक गाना जो फिल्म दर्द का है जो सबसे फेमस गाना है ये सुना जाए।

0: इस गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं पर बंद करते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम में मैं कुसुम वाराणसी की तस्वीर लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल आइए जुड़ते हैं समाचारों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared commitment to a free, open and prosperous region. They also emphasized the importance of safeguarding sovereignty, territorial integrity and the rules-based international order. The two leaders welcomed the conclusion and signature of a balanced, comprehensive and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement. They agreed to work together to ensure its early entry into force and effective implementation. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, तस्वीर कार्यक्रम में आज हम देश की जिस खूबसूरत जगह की तस्वीर बनाने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी। विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी हजारों सालों से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ पर आते ही आपको इतना दैवीय महसूस होगा ना कि आप कभी भुला नहीं सकेंगे। तो चलिए तस्वीर बनाते हैं वाराणसी की, साथ में मैं रहूंगी कुसुम। अभिजीत और सोनू निगम की आवाजों में ये गीत है फिल्म मुकाबला का।

जी हाँ, आइए चलिए चलते हैं वाराणसी, जिसने विश्व को दिशा देने का काम किया है। इस शहर का महत्व तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आयुर्वेद की खोज यहीं पर हुई। श्रीमती एनी वेसेंट ने अपनी थियोसोफिकल सोसाइटी का केंद्र इसी शहर को रखा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं पर की। प्लास्टिक

सर्जरी की खोज यहीं पर की गई। हजारों आध्यात्मिक रचनाओं का केंद्र रहा ये शहर, अपने भी जहां इतिहास की अनेक धरोहरों को समेटे हुए है, तो वहीं अपनी मिट्टी में एक दिव्य शांति की महक भी समेटे हुए है। तो आप वाराणसी में कहां कहां घूम सकते हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद जो हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे, आवाजें उदित नारायण की।

पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, कहाँ वाराणसी में। तो आज तस्वीर कार्यक्रम में हम वाराणसी का खाका बना रहे हैं। वाराणसी में आप सुबह 5 बजे उठकर 80 घाट पर आ जाएं और नाव से गंगा यात्रा के लिए निकल जाएं। 80 घाट वो स्थान माना जाता है जहाँ पर महान कवि गोस्वामी तुलसीदास का निधन हुआ था। इस जगह को देखने के लिए रोजाना पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, त्योहारों में ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 80 घाट 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इस घाट का बहुत धार्मिक महत्व है, पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब आप सुबह यहाँ पर आएंगे ना, तो सुबह का उगता हुआ सूरज, सिंदूरी आसमान, चिड़ियों की चहचहाट, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और गंगा आरती देखकर आपका मन एक दिव्य रोशनी से भर जाएगा और आपका यहीं रुक जाने को मन करेगा। जी हाँ, और वाराणसी के 80 घाट पर नाव की यात्रा आपको माँ गंगा की गोद से वाराणसी की सभ्यता के दर्शन करवाएगी। शहर की खूबसूरती, रंग बिरंगी संस्कृति, खूबसूरत मंदिर, ये नज़ारा देख कर आपको वहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और ये नज़ारा आपको देखने के लिए कहाँ से मिलेगा? नाव से, जब आप नदी में नाव पर बैठे होंगे। और ये जो नाव की यात्रा है, ये आपके मन को स्फूर्ति से भर देगी। और इसी बात पर आइए सुनते हैं फिल्म सफ़र का ये गीत मन्ना डी की आवाज़ में।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा।
3: ध्यान रखना बेटा।
4: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
5: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
4: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
5: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
4: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। हम बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं खाका बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो अभी हमने बात की कि उत्तर प्रदेश के 80 घाट आप जा सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं। तो 80 नदी के किनारे ही, 80 घाट के पास ही आप संकट मोचन हनुमान मंदिर देखने भी जा सकते हैं। इस मंदिर को साल 1900 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान राम और हनुमान जी को समर्पित है। वाराणसी हमेशा से संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ है, और इस पवित्र शहर का एक ये अनिवार्य हिस्सा है ये संकट मोचन मंदिर। और इसके बाद जब शाम हो जाए तो आप चाहें तो आप दशाश्वमेघ घाट पर जा सकते हैं, क्योंकि वाराणसी में सूर्यास्त होते ही मानो पूरी वाराणसी अपना रुख दशाश्वमेघ घाट की ओर कर लेती है। ये घाट प्रमुख गंगा घाट है, और यहाँ पर शाम की आरती देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लगभग 45 मिनट तक चलने वाली ये आरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, और आपको बस यही रह जाने का मन करेगा। गंगा घाट की आरती के बाद आप घाट से होते हुए सैकड़ों छोटे छोटे मंदिरों को देख सकते हैं, और यहाँ की दिव्य शांति

को महसूस कर सकते हैं। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से लता मंगेशकर की आवाज में।

वाराणसी में भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। वेद पुराणों में भी इस मंदिर का कई जगह पर जिक्र मिलता है। इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी अधिक पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और इसके लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आत्मा को शुद्ध कर देती है और आत्मा को शांति के पथ पर ले जाती है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिकता हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। तो वाराणसी यात्रा में आपको भी काशी विश्वनाथ के मंदिर जरूर देखने चाहिए और इस आत्मिक शांति को महसूस करना चाहिए। तो जब बात विश्वनाथ भगवान की चली पड़ी है, भगवान शिव की चल पड़ी है, तो ये गीत याद आता है फिल्म आपकी कसम का। आइए सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

वाराणसी में शिवशंकर के दर्शन करने के बाद आप रामनगर का किला भी देखने जा सकते हैं। तुलसीघाट से गंगा नदी के पार स्थित यह किला बनारस के राजा बलवंत सिंह के आदेश पर 1750 ईस्वी में बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसमें किले में वेदव्यास मंदिर, राजा का निवास स्थान और क्षेत्रीय इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय भी है। यह किला वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। और अगर आप वहाँ चले ही गए हैं तो सारनाथ भी देखने चले जाइएगा वाराणसी में। वाराणसी से सारनाथ की दूरी महज 10 किलोमीटर है। ये जगह बौद्ध धर्म के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहीं पर दिया था। यहाँ पर आप गौतम बुद्ध, डियर पार्क, म्यूजियम और बौद्ध धरोहरों को देख सकते हैं। इसके बाद आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी देखने जा सकते हैं। ये विश्वविद्यालय वाराणसी की पहचान है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित होने के बाद से इस विश्वविद्यालय ने एक लंबा सफर देखा है और इस विश्वविद्यालय ने देश को अनेक बुद्धिजीवी भी दिए हैं, हम सभी को पता है ना। चलिए, देशभक्ति की भावना से भरा ये अगला गीत सुनते हैं, फना फिल्म का, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में।

जी हाँ, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, और इसी एक रंग में है वाराणसी का रंग। वाराणसी में भक्ति का रंग घुला हुआ है। यहाँ पर अनेक घाट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे आप दरभंगा घाट, नेपाली घाट, केदार घाट देख सकते हैं। केदार घाट के शीर्ष पर केदारेश्वर मंदिर है जो भारतीयों के लिए अत्यंत पवित्र है। पास ही पार्वती कुंड है जो ऐसा जलकुंड है जिसमें माना जाता है कि उपचार करने की शक्ति है। इसके अलावा नदी के सुंदर दृश्यों के लिए भी ये वाराणसी के सबसे अच्छे दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसके अलावा दुर्गा कुंड मंदिर भी देखा जा सकता है, यह वाराणसी के महत्वपूर्ण मंदिरों में से है। लाल रंग के इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक बंगाली रानी ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की देवी शहर को हानि और बुराई से बचाती हैं। मंदिर में स्थित तालाब यहाँ के वातावरण को सुखद और शांत बनाता है। ये मंदिर 80 घाट से बस थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप आलमजीर मस्जिद भी देखने जा सकते हैं। आलमजीर मस्जिद पंचगंगा घाट पर स्थित यह खूबसूरत मस्जिद वाराणसी की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये सब देखने के बाद अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें यादगार के तौर पर घर ले जाना चाहें तो दशाश्वमेघ घाट के पीछे सकरी गलियों में एक बाज़ार लगता है और यहाँ पर आपको आपकी पसंद का लगभग सब कुछ मिल जाएगा, तो आप बाज़ार भी घूम लीजिएगा, है ना। फिल्म पवित्र पापी का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में, ये रहा आपके लिए।

0: चलू लचक लचक के
1: आहे,
0: जरा मटक मटक के
1: आहे,
0: लट झटक झटक के
1: आहे।

बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के।

तो खरीदारी करने के बाद आपके मन में यह ख्याल आएगा कि अब क्या खाएं, है ना। तो वाराणसी में क्या खाएं, ये सोचने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाराणसी न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वजहों के से ये मशहूर है, बल्कि अपने स्वादिष्ट खान पान के लिए भी। आप यहाँ पर कचौड़ी सब्जी का स्वाद ले सकते हैं, और कचौड़ी गली के कचौड़ियों के तो क्या ही कहने। इसके अलावा चूड़ा मटर भी ट्राई कर सकते हैं, खास तरह का पोहा है, इसे नाश्ते में लोग खाते हैं, और चटनी, दही चटनी गोलगप्पे भी यहाँ पर मशहूर है। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश के सभी व्यंजनों का, लगभग सभी व्यंजनों का यहाँ स्वाद ले सकते हैं। अब बारी है ये जानने की कि वाराणसी हम जाएँ कैसे। तो बस, ट्रेन और बाई एयर तीनों सुविधाएँ आपके पास है वाराणसी जाने के लिए। अगर आप बाई एयर जाना प्रीफर करते हैं तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट शहर के केंद्र से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां से आप टैक्सी लेकर आसानी से पहुंच जाएंगे। रेल मार्ग की बात करें तो देश के सबसे सभी प्रमुख हिस्सों से रेल द्वारा वाराणसी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, तो रेल से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 28 से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लखनऊ, पटना और प्रयागराज से नियमित बसें चलती हैं, तो आप इस तरह से वाराणसी पहुंच सकते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत सौतन फिल्म से।

इसी गीत के साथ ही तस्वीर यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister's endorsed the Indian-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally.
4: Is the decision by the two prime ministers to raise the relationship to a strategic partnership. They also decided that this goal of a more strategic relationship would be approached systematically, for which they decided that there would be a roadmap to take us forward the next couple of years. This roadmap has been summarized, in fact, in a document which is being released along with the joint statement that the two prime ministers are issuing at the conclusion of their talks.
3: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये, और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
3: The bilateral discussions were preceded by a ceremonial welcome at the Government House, where Prime Minister Modi was accorded a guard of honour. Later in the day, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated

0: आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू
2: और मैं हूं दीपा। तो कीजिए स्वीकार हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
2: दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: और कैसी हो दीपा, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है।
2: अरे रेनू मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
1: मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता भी ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला और सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत

0: आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना। फिल्म थी वो कौन थी।
1: दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वयं पर विश्वास रखिए, दुनिया आपके कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, रेनु तुम बताओ।
0: हाँ, बिल्कुल, उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति, प्रतिभा और संभावनाएं छिपी होती हैं। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन चुनौतियां भी अवसर के रूप में बदलने लगती हैं और सफलता हमारी ओर स्वयं कदम बढ़ाती है।
1: और दोस्तों, इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखिए, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही अपने सपनों को साकार करता है।
0: बिल्कुल। तो दीपा, ये तो हुई हमारे आज के विचार की, सुविचार की, और इसी के साथ हम अपना आज का प्रश्न पूछ लें। क्यों? क्योंकि श्रोताओं को आजकल हमारे प्रश्न का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इससे हम उनसे बातचीत कर पाते हैं, सीधे बातचीत कर पाते हैं, और कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। तो दीपा, जल्दी से बताओ कि हमारा आज का प्रश्न क्या है।
1: दोस्तों, फिल्में तो आप सभी देखते होंगे, और आज आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको अभी तक याद हो और आपने उसे कई बार देखा हो और आज भी उसे देखना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, यानी आपको बताना है कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, और इसके बारे में हमें झटपट से लिख भेजिए, और पसंदीदा फिल्म का नाम, उसके साथ आप ये भी बताइए कि आपकी आपको ये फिल्म क्यों पसंद आती है, यानी आपकी नजर से उसमें क्या खासियत है। और इसके लिए हमारा मेल आईडी
1: दोस्तों नोट कर लें, fmgoldga@gmail.com।
0: तो हमें आपके मेल्स का बेसब्री से इंतजार है, और आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम बताइए। तब तक सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में, और फिल्म थी तेरे मेरे सपने। और देखो इसमें जो है दीपा, मुख्य भूमिकाएं जो है इस फिल्म में मुमताज और देवानंद ने निभाई थी, और संगीत एसडी बर्मन का था।

0: थे, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। और
1: भीष्म सानी दोस्तों यथार्थवादी और प्रगतिशील एक ऐसे कथाकार थे जिनकी रचनाएं विभाजन की त्रासदी और शोषित वर्ग के संघर्षों की प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करती हैं।
0: बिल्कुल, और भीष्म सानी की रचनाएं समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज और यथार्थ का सटीक दर्पण है। उनका प्रमुख उपन्यास तमस विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता की विभिषिका पर आधारित एक प्रामाणिक दस्तावेज है। और पता है तुम्हें दीपा, इसी नाम से ना जो जाने माने निर्देशक गोविंद नहलानी जी हैं उनके निर्देशन में एक फिल्म बनी थी तमस नाम से ही, और इसमें मुख्य किरदार जो था वो ओमपुरी जी ने निभाया था और ये फिल्म भी बहुत लोकप्रिय हुई थी। और अब जब फिल्मों की बात चली रही है तो हमारा आज का प्रश्न भी हमारा फिल्मों से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे हाथ में लगता है कि कुछ मेल्स आए हैं, जो तुम कौन से मेल है ये?
1: नवीन भाटिया जी हमसे जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि वक्त मूवी जो है उनकी और उनके पापा की फेवरेट फिल्म थी और उन्हें बहुत पसंद थी और उसमें मिलना बिछड़ना और काफी उसमें जो चलता है वो उनको बहुत पसंद थे, उसके गाने भी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद
0: हैं। भाई ये मूवी तो बहुत अच्छी थी ही। बिल्कुल नवीन भाटिया जी, और आपने लिखा हमें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नवीन भाटिया जी मोतीनगर से लिख रहे हैं ना, और देखिए सही बात है, वक्त फिल्म जो है मल्टी स्टारर एक फिल्म थी और इसमें शानदार कहानी और तकनीक के प्रयोगों के लिए ये जानी जाती है। और इसमें जैसा कि तुम्हें भी दीपा तुमने भी देखी होगी, इसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना और शर्मिला टैगोर, सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया था और वाकई इसमें कालजयी जो गीत संगीत था इसका वो भी था। और कौन सा मेल है?
1: और
0: ये है डी राजेश्वर राव, जो है ये लिखते हैं शक्करपुर मेन विकास मार्ग न्यू दिल्ली से। हाँ, तो इन्होंने भी कहा है कि भाई खट्टी मीठी यादें जो है ये तो हमारी मतलब है ही है पिक्चरों से जुड़ी हुई। और इसमें जो एक रेखा जी की फिल्म के बारे में इन्होंने लिखा है तो ये फिल्म भी इनको बहुत पसंद है। और एक और ये पुलका भाटिया जी ने लिखा है कि इन्हें शोले फिल्म बहुत पसंद है। हाँ, तो शोले फिल्म तो भाई देखिए सबको ऑल टाइम फेवरेट है, सबकी बहुत पसंद है सबको। और इसमें इन्होंने लिखा है कि इनकी फेवरेट फिल्म तो है ही, और डीडीएलजे को भी कह रही है कि इनकी फेवरेट फिल्म है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और तो डीडीएलजे भी भाई बड़ी फिल्म अच्छी थी और शाहरुख खान और काजोल की इसमें जोड़ी बहुत पसंद की गई थी बहुत। हाँ, और जो प्रवासी भारतीयों के अंदर जो उनकी पारिवारिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित थी, तो भाई इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे साथ, और जो है इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने प्रश्नों का जवाब हमारे दीजिए और फिर अब तक सुनवाते

किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में बसा।

0: दोस्तों, अभी आपने गीत सुना मोरी पायलिया, फिल्म थी जुगनू और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, और कुछ मेल तो हमारे दर्शक करते जा रहे हैं भाई, ऐसा विषय ही है क्योंकि मूवी तो सबको बहुत पसंद आती है, हमारे मनोरंजन का सबसे देखा जाए तो प्रमुख जरिया है और हम लोग सालों साल मूवी देखते आ रहे हैं। तो ये जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अमिता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं कि ये इनको भी वक्त मूवी बहुत पसंद आई है। अच्छा। और इन्होंने इसका कारण भी बताया है कि क्योंकि इस मूवी में जीवन की सच्चाई है इसलिए बहुत पसंद आई है। और इन्होंने एक चीज और भी लिखी है कि उम्मीद दूसरों पर करोगे तो ये तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी और उम्मीद खुद पे करोगे तो ये तुम्हारी ताकत बन जाएगी।
0: वाह
1: भाई वाह, क्या बढ़िया बात कही है इन्होंने। और देखिए, अगर मूवी देखी है इन्होंने और उससे कुछ उसका उद्देश्य और उसका मतलब जाना है, कुछ जीवन में अगर उन्होंने पाया है तो ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है। फिल्में हमारे समाज का दर्पण होती हैं और इन फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और तो ये फिल्में अगर सार्थक तभी हैं जब वो अपने संदेश देने में कामयाब हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसके साथ ही ये महेश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भी लिखा है, ये हरियाणा से लिख रहे हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से। तो इन्होंने भी हम लोगों को नमस्कार भेजा है और कहा है कि इन्होंने बाजार फिल्म इन्हें बहुत पसंद है। तो भाई, बाजार फिल्म भी बहुत एक क्लासिक मूवी थी और बहुत ही अच्छी है और ये फिल्म आपको पसंद आई तो सही बात है, याद दिला दिया आपने, ताजा कर दिया।
0: गाने
1: भी बहुत अच्छे थे, सही बात आप कह रही हैं। और बहादुरगढ़ से ही ये श्रीपाल गोयल जी लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं ये दीपा जी, आप बताइए।
0: हाँ, इनको जो है, इनको ये फिल्म बहुत पसंद है, फिल्म भावना जी। और इसमें ये कह रही है कि शबाना आजमी भावना की भूमिका में थी और ये इनको बहुत पसंद है। इसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकती है, इस फिल्म में इन्होंने बताया कि दिखाया गया है। और ये फिल्म में एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है।
1: अच्छा, भावना फिल्म के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने एक अलग सी फिल्म पसंद की और इसको हमसे अपना विचार और अपने जो अनुभव है वो साझा किए, तो बहुत अच्छी बात है। और देखो, एक और मेल आया है, ये सोनाली का है और ये कह रही है कि इनको फिल्म आधी पसंद है। सुचित्रा सेन का किरदार बहुत अच्छा था, संजीव कुमार लेजेंड, सही बात है भाई, बहुत अच्छी फिल्म थी ये और बहुत इसके गाने भी पसंद हैं। तो सोनाली जी, महेश अग्रवाल जी और सुदर्शन मुखी जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने विचार व्यक्त करते रहिए। और तब दीपा, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो तुम क्या बताने वाली हो?
0: मैं अब बताने वाली हूँ, हम बात करेंगे अब आर्थिक आत्मनिर्भरता और बचत की। दोस्तों, आर्थिक आत्मनिर्भरता की सबसे जो मजबूत नींव है वो है बचत। आय कम हो या अधिक, यदि नियमित बचत की आदत नहीं है तो आर्थिक सुरक्षा अधूरी रह जाती है। छोटी छोटी बचत ही समय आने पर सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: बिल्कुल सही बात कहा तुमने दीपा। और देखो ना, बचत को की इस जरूरत को और इसके महत्व को अगर सबसे ज्यादा समझा है किसी ने तो हमारे घर की महिलाओं ने, क्योंकि उन्होंने जो सीमित आय भी उनके पास अगर आती है तो जो पूरे घर का बजट बनाती हैं उसके बाद भी वो भविष्य में के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ बचाकर जरूर रखती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रेनू, और ये उनकी दूरदर्शिता तो है, लेकिन आज बैंकिंग व्यवस्था ने बचत को और अधिक सुरक्षित और लाभदायक बना दिया है। कई बैंक ऐसी सुविधाएं देते हैं जिनमें खाते की अतिरिक्त राशि स्वतः अधिक ब्याज वाले विकल्प में चली जाती है, यानी बचत भी सुरक्षित रहती है और उस पर बेहतर लाभ भी मिलता है। और अब सरकार भी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कुछ ना कुछ सरकार भी कर रही है महिलाओं की बचत योजना के लिए।
1: बिल्कुल, तो दीपा बिल्कुल सही बता रही हो। और देखो ना, डिजिटल युग है तो इसका फायदा भी हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमारे बहुत काम की चीज है, तो इससे इसके फायदा उठाना चाहिए। और कई सारी बचत की जो माध्यम है, कई सारी चीजें हैं, उसको जानना चाहिए और उसको उपयोग में लाना चाहिए। जैसे कि UPI का उपयोग करना चाहिए, अपने पैसों का हिसाब स्वयं रखिए, क्योंकि डिजिटल सशक्तिकरण ही आत्मनिर्भरता की पहचान बन रहा है और यही सही मायने में सशक्तिकरण है आपका।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना गीत आइए बाहर को हम बांट लें, फिल्म थी तकदीर और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, जो हमारे श्रोतागण हैं वो देखो ना कितना मतलब इस समय उनको आनंद आ रहा है और अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में अपने बारे में बता रहे हैं। तो अभी जो इस मेरे हाथ में इस समय जो मैसेज है वो है इदरीस सैफी जी का, ये भी बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे। तो इन्होंने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म इन्हें बहुत पसंद है। भाई, ये बहुत अच्छी मूवी थी, सही बात है, हम सबको बहुत पसंद है। राज कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे इसमें मेन लीड रोल में, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे थे और बहुत ही अच्छी मूवी थी, इसके ने भी बहुत अच्छे थे। और देखो, इसी के साथ हमारे पास रजत भूषण जी का भी ये मेल आया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि इन्हें फिल्म अंगूर बहुत पसंद है क्योंकि बिना शोर शराबे के शानदार अभिनय और स्वाभाविक हास के दम पर ये मनोरंजन करती है। बिल्कुल सही बात आपने कही और याद आ गया मुझे भी उसके काफी सीन और संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा जो डबल रोल में थे ना, हाँ बिल्कुल, सीन सिक्वेंस इतने बदलते थे इसके कि हाँ मजा आ जाता था, बिल्कुल लगता था अगले पल क्या होगा। देखो, इन्होंने भी कुछ लिखा कि हर बार इसे देखने पर कोई ना कोई नया पहलू और नया हास्य सामने आता है, यही कारण है कि वर्षों बाद भी ये फिल्म उतनी ही ताजा और आनंद। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सच में ये फिल्म जब भी देखो तो हंसी आ ही जाती है और हंसाना किसी फिल्म में जो अगर ये हंसाने का मादा रखती है कोई मूवी तो वाकई वो बहुत हाँ बहुत मतलब सशक्त मूवी होती है, तभी वो किसी को हंसा पाती है
0: कि हम जाते इसलिए हैं कि हम मूवी देखकर खुश हों।
1: हाँ हाँ, सही बात है, और वो उस चीज को अगर फुलफिल करती है तो बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी है। और इसी के साथ देखो, ये गौरी शंकर जी ने भी लिखा है नागलोई से, और गौरी शंकर नागलोई हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि मतलब पहले तो ये हमें नमस्कार कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि सन 80 तक की फिल्में मैंने देखी हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जितेंद्र जीने की राह, अच्छा जीने की राह फिल्म के बारे में ये बता रहे हैं, सुनील दत्त और नंदा मुझे बहुत अच्छी लगी और ये फिल्म भी इन्हें बहुत अच्छी लगी, और इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर हार नहीं मानना चाहिए, ये कुछ संदेश देती हुई फिल्म है और दर्शकों तक वो उतने संदेश पहुंचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और दीपा, एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात और जरूरी हमें करनी जरूरी हो जाती है कि हम जो है बात करते हैं अगर, तो देखें फोन हम सबके जीवन का हिस्सा बन चुका है,
0: बहुत ज्यादा आज के समय में तो
1: बहुत जरूरी है और सबके पास होता ही है, लेकिन अति ना किसी चीज की बहुत देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट डालती है। उसी में से एक है हेडफोन और ईयरफोन, अगर इसका आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा रेनू, और ईयरफोन और हेडफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे कानों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और इससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सुनने की क्षमता कम होना, कान में लगातार सीटी बजना या फिर संक्रमण। ये इतना खतरनाक है कि इससे आपके सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, और ये

0: देखो ना, ये तेज आवाज यानी कि 85 डेसिबल से ज्यादा अगर आप लगातार संगीत सुनते हैं या गेम खेलने में कान खेलते हैं और हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कान के आंतरिक हिस्से की कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। इससे आपको बहरापन, टीनिटस की समस्या हो सकती है। टीनिटस यानी कि कानों में झनझनाहट, भनभनाहट या सीटी बजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं।
1: और ईयरबड्स दोस्तों कान के बहुत अंदर तक जाते हैं। इन्हें ज्यादा देर लगाए रखने से कान के अंदर हवा नहीं जा पाती, जिससे नमी और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। ये कान में दर्द और फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक हेडफोन पहनते हैं तो दिमाग पर भी इसका दबाव पड़ता है, जिससे चक्कर आना, ध्यान केंद्रित होना और ना केंद्रित होना और स्ट्रेस जैसी मानसिक समस्याओं का भी सामना आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें जो ना निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव जो होती है वो दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है।
1: और इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि हेडफोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही किया जाए, यानी दिन में केवल 1 से 2 घंटे ही। और अगर किसी काम से ज्यादा यूज करना पड़ रहा हो आपको, तो बीच में ब्रेक जरूर लें।
0: बिल्कुल। और ये ब्रेक ना लेने का एक नियम है, जैसे कि 60-60 का नियम अपनाएं। जैसे इसका मतलब ये है कि 60% की वॉल्यूम पे आप कोई भी चीज सुनते हैं तो 60% की वॉल्यूम उसका रखें और 60 मिनट से ज्यादा तक उसका इस्तेमाल ना करें, यानी कि उसको ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रेक लेना है। और ईयरफोन को हमेशा साफ रखें और कभी भी दूसरों के साथ अपना ईयरफोन शेयर ना करें। तो दीपा, ये तो बातें हो ही रही हैं, लेकिन एक बार मेल आईडी हम फिर से श्रोताओं को बता दें कि हमारी मेल आईडी क्या है, बताओ।
1: हाँ, हमारी fmgold@gmail.com।
0: तो इसी मेल आईडी पर आपके मेल्स का इंतजार है हमें। और प्रश्न तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक कि आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है जो आज तक आपको याद है और आपने कई बार उसे देखा है, और वो मूवी आपको क्यों पसंद है।

0: अभी आपने गीत सुना सुनो कहो, फिल्म थी आपकी कसम और गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर।
1: और ये देखो एक मेल और मेरे हाथ में है, वैसे तो इनका मेल पहले भी मैंने पढ़ा था लेकिन अभी इन्होंने मूवी का नाम लिखा है। ये डी राजेश्वर राव हैं जो शकरपुर मेन विकास मार्ग न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इनको फिल्म चुपके चुपके बहुत पसंद है और ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा इनको, इसमें धर्मेंद्र का जो है वो बहुत काम अच्छा लगा। तो ये मूवी तो सही में हम लोग को भी याद आ गई, कॉमेडी उस समय की थी, कॉमेडी के साथ और इतनी अच्छी थी और बहुत अच्छा संदेश इसमें
0: बहुत
1: था।
0: सारे कलाकार थे,
1: बहुत सारे बहुत कलाकार थे। हाँ दीपा, और देखो ना उसमें उन्होंने बातों बातों में जो हिंदी का एक तरह से हिंदी और इंग्लिश का जो था उसमें उन्होंने ये एक तरह से संदेश उसमें दिया कि जो हिंदी का व्याकरण है ना वो हमारा इतना सशक्त है कि उसके मुकाबले अगर तुलना की जाए तो किसी और भाषा में वो बात नहीं आती जितनी कि हिंदी का व्याकरण सशक्त है। और दीपा कहना पड़ेगा ना कि हमारी फिल्में जो है ना वो वैश्विक पटल पर और हर जगह जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, उसका सबसे बड़ा देखा जाए तो संदेश वाहक हमारी फिल्में होती हैं और बहुत ही अच्छी छाप इससे संदेश दे पाती हैं
0: कई जो
1: इसीलिए ना मूवी को सॉफ्ट पावर कहा गया है कि वो हमारे देश की या किसी भी देश की सॉफ्ट पावर होती हैं। वो आसानी से आपकी संस्कृति और आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, सब कुछ जो है वो कन्वे कर देती हैं वैश्विक पटल पर। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी मूवी है आप जो आपको पसंद आई है
0: और हमारे
1: अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं। और देखो एक और संदेश मेरे हाथ में है, ये कामायनी है, लक्ष्मी नगर से लिख रही हैं। इनकी फेवरेट मूवी है दो बदन और ये लिख रही हैं कि इसमें भावनाओं का ऐसा मार्मिक और मतलब जो इस ये वर्णन किया गया है वो किसी का भी इससे जो है वो संवेदना से देखा जाएगा तो जी भर आएगा। बिल्कुल सही बात कही कामायनी जी आपने और लगता है आप भी बड़ी संवेदनशील व्यक्तित्व रखती हैं तभी आपको ये चीजें और इस तरह की मूवी पसंद आती हैं। और देखिए कहीं ना कहीं होता है कि जो जैसा होता है या जैसी उसके विचार जहां पर मतलब कनेक्ट होते हैं उस मूवी को वो व्यक्ति पसंद करता है, ये भी एक बड़ी बात है।
0: और उस समय की रेनू ये भी बात थी कि मूवी के साथ साथ गाने भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। हाँ, आज तक सब लोग
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही तुमने। और देखो ना इसी तरह से लोग हमें लिख रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमें जुड़ रहे हैं। लेकिन अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक देखा जाए तो खासकर दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी बात है कि जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 1 जुलाई से लागू हो गई है। 31 मार्च 2030 तक ये प्रभावी रहेगी और ये नीति क्या है, आपको इसमें दिल्ली सरकार द्वारा कौन सी छूट या सब्सिडी दी जा रही है, बात करते हैं इस बारे में।
0: दोस्तों इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको 30,000 तक की और थ्री व्हीलर लेना चाहते हैं तो इस पर आपको 50,000 तक की छूट यानी सब्सिडी दी जाएगी।
1: और अगर आप 30,00,000 तक की इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो इस पर आपको कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। इस पर दिल्ली सरकार द्वारा 100% सब्सिडी आपको दी जा रही है।
0: और इसी तरह अगर आप N1 कमर्शियल वाहन खरीदना चाहते हैं तो 1,00,000 तक की सीधी छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा इस नीति के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर नई ईवी खरीदने पर 1,00,000 तक का स्क्रैप इंसेंटिव भी आपको मिल सकता है।
1: तो इस नीति से जुड़ने के

लिए दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और इस तरह दे सकते हैं वायु प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना कली कली, जिसकी फिल्म थी मंचली और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा, हमारा वक्त तो अब कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है, लेकिन हमारे श्रोता जो है मेल भेजते जा रहे हैं, तो जल्दी से मैं कुछ मैसेजेस और ले लेती हूँ। इसमें देखो, ये मैसेज लिखा है रघुवर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब ने, और ये लिखती हैं कि इन्हें भी जो है वक्त फिल्म बहुत पसंद आई। और देखो, इन्होंने कहा है कि जो है वक्त में जो संदेश दिया गया था ना कि एरोगेंस जो है अच्छी बात नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए, तो भाई हमारे बड़े जागरूक श्रोता हैं, वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और उसके संदेश को भी समझ रहे हैं। और इसी तरह से ये अखिलेश राठौर हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे हम आपके हैं कौन मूवी बहुत अच्छी लगी। तो भाई, अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है, तो मुझे यानी रेनू को
0: और मुझे यानी दीपा को दे अनुमति,
1: नमस्कार।
2: घर आंगन, आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री क्षेत्र और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते।

0: और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrives at Spark Arena in Auckland to address the Indian community. Around 10,000 people have already gathered at the venue. Members of the Indian diaspora from across New Zealand have come together for this special event. Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary E.S. Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide joint action over the next 4 years. He added that this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today.
3: It has a long-range surface-to-air missile combination with a multifunction radar that can detect and destroy any threat coming from the sky from a distance. And it has an indigenous rocket launcher, torpedo launchers, an integrated anti-submarine defense system, an electronic warfare suit and a close-in weapon system too. These all things make INS Mahendragiri as invincible and strong as the Mahendragiri mountain.
0: Mahendragiri parvat ke saman hi abhed aur majboot banati hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education. Union Road Transport Minister Nitin Gadkari chaired the 3rd BRICS Transport Ministers meeting today in Nagpur, Maharashtra. While interacting with media, Mr. Gadkari said the delegates discussed the efforts to make the carbon neutral transport in road, rail, aviation and waterways transport by adopting the alternative biofuels and pollution-free technologies. BRICS Ministerial Declaration 2026 has also been adopted during

वक्त हो चला है 1:10 और 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम हिंदी सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे सितारे का जिक्र करेंगे जिसने अपनी चमक से 4 दशक तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया था। अपनी एक्टिंग की चमक से इस बेमिसाल कलाकार ने ऐसी रोशनी फैलाई कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री देखती रह गई। कौन? ये थे एक्टर राजेंद्र कुमार, जिन्हें जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज एक ऐसे स्टार की कहानी जो हिट सिनेमा की गारंटी था। वो जिस भी फिल्म में काम करते वो फिल्म सुपरहिट हो जाती। तो बने रहिए FM गोल्ड के साथ, मैं संगीता हूं आप सभी के साथ, और आज हम जिक्र करेंगे राजेंद्र कुमार का।

तो आज के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में हम याद करेंगे राजेंद्र कुमार को। और जाहिर सी बात है कि जुबली कुमार को अगर हम याद कर रहे हैं तो गाने तो एक से बढ़कर एक हम आपको सुनवाएंगे ही। 20 जुलाई 1927 को जन्म हुआ था राजेंद्र कुमार का, और जब देश का बंटवारा हुआ तो परिवार हिंदुस्तान आ गया। राजेंद्र कुमार जब बॉम्बे आए तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र कुमार हीरो नहीं बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर एचएस रवेल के साथ एक असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया था और करीब 5 साल तक राजेंद्र कुमार ने उनको असिस्ट किया था। लेकिन फिल्मों की तरफ वो कैसे गए और कब गए ये हम आपको बताएंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद।

तो अगर अभी अभी आप हमसे जुड़े हैं यानी कि एफएम गोल्ड से जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं राजेंद्र कुमार को। 1949 में उन्हें पहली फिल्म मिली थी पतंगा, और इसी फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद वो फिल्म जोगन में एक छोटे से रोल में नजर आए थे, और इस फिल्म ने राजेंद्र कुमार को देखने के बाद प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल ने उन्हें 1955 की फिल्म वचन में साइन किया था। फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। ये राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई थी। उसके बाद तो खैर फिल्मों का तांता लग गया, जो उनकी फिल्में जो है सिनेमा पर बॉक्स ऑफिस पर जुबली मनाया करती थी, इसीलिए उनका नाम ही जुबली कुमार पड़ गया। और यानी कि 25 हफ्तों तक लगातार ये फिल्म चली। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। आजकल तो भले कहा जाता है कि फिल्म ने 100 करोड़ कमाई कर ली या 200 करोड़ कमाई कर ली, 500 करोड़ कमाई कर ली, लेकिन वो ये पूरे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे जो है देश के बाहर सरहद के पार भी जो फिल्में चलती हैं वो पूरा बजट होता है। लेकिन आप सोचिए कि 25 हफ्ते तक किसी फिल्म का सिनेमा हॉल में लगे रह जाना कितनी बड़ी बात है।

मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत लम्हा होता है ना जब हम स्टूडियो में होते हैं और कुछ भी जहन में नहीं होता है सिवाय इसके कि हमारी फिल्में होती हैं साथ में, हमारे खूबसूरत गीत जो हम सेलेक्ट करके रखे होते हैं वो होते हैं हमारे साथ में और उन गीतों पर झूमने का पूरा मौका मिलता है। आज हम याद कर रहे हैं राजेंद्र कुमार को। 1959 से 1966 के बीच राजेंद्र कुमार के करियर में ऐसा दौर आया जब उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी। उन्हें जो है वो जिस भी फिल्म में काम करते वो हिट हो जाती। इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाने लगा। राजेंद्र कुमार की लगातार 6 फिल्में सुपरहिट रही थीं और वो बॉक्स ऑफिस पर 25 हफ्तों तक चली थी। उसी दौरान राजेंद्र कुमार की फिल्म मेरे महबूब की चर्चा हो रही थी। मेकर्स इसमें एक्ट्रेस साधना को राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट साइन करना चाह रहे थे, लेकिन साधना जो है वो इस फिल्म में काम करने से थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। और चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी को मालूम था कि फिल्म में राजेंद्र कुमार हैं, तो उन्होंने साधना को बेहिचक फिल्म साइन करने की सलाह दी, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी जानते थे कि राजेंद्र कुमार का किसी भी फिल्म में होने का मतलब है उस फिल्म का सुपरहिट होना। कम से कम उस वक्त में तो यही ट्रेंड देखने को मिल रहा था और हुआ भी यही। मेरे महबूब हिट रही और इसने साधना और राजेंद्र कुमार की जोड़ी को भी हिट कर दिया।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं राजेंद्र कुमार को। 1963 से 1966 के बीच राजेंद्र कुमार की जितनी भी फिल्में आईं सभी हिट रहीं, एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं थी। मेरे महबूब से लेकर संगम, आई मिलन की बेला, सूरज और जिंदगी, तमाम फिल्में सुपरहिट रहीं। वक्त के साथ राजेंद्र कुमार एक ऐसे स्टार बन गए थे जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता था। उनका स्टारडम दिनों दिन बढ़ रहा था। राजेंद्र कुमार देखते ही देखते अपने समय के सबसे शानदार एक्टर और सबसे अमीर एक्टर में भी शामिल हो गए।
2: धीरे धीरे बोल कोई सुनना,

इन्हीं दुश्वारियों से जिंदगी आसान होती है, इन्हीं दुश्वारियों से जिंदगी आसान होती है, न हो दुश्वारियां तो जिंदगी दुश्वार हो जाए, है ना। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार का स्टारडम और लक अपने पूरे चरम पर था। इस दौर में उन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया, जो भी किरदार किया, वो सब हिट रहा। अपने करियर में राजेंद्र कुमार ने माला सिन्हा से लेकर नंदा, सरोजा देवी, मीना कुमारी, साधना, वैजयंती माला, सायरा बानो, कुमकुम सभी के साथ काम किया। लेकिन 1967 तक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर में ऐसा पड़ाव आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, उनका करियर ढलने लगा। 1970 तक राजेंद्र कुमार की एकाधी फिल्म चल पाई और फिर उसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री होती है राजेश खन्ना की।

लेकिन सबका समय एक सा नहीं होता ना, किसी का भी, कोई भी हो, चाहे वो कोई साधारण व्यक्ति हो या असाधारण व्यक्ति हो, किसी का भी समय एक सा नहीं होता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से 70s में राजेश खन्ना की एंट्री होती है बॉलीवुड में, और राजेश खन्ना के चार्म और उनकी एक्टिंग का जादू ऐसा चला कि उनका स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। हीरोइनें तक राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए बेचैन रहती। एक तरफ राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए थे, वहीं दूसरी ओर राजेंद्र कुमार का करियर ढल रहा था। 80s में राजेंद्र कुमार ने बेटे कुमार गौरव को फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला किया। उन्होंने कुमार गौरव को लेकर लव स्टोरी बनाई। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और कुमार गौरव छा गए। पर कुमार गौरव को हिट डेब्यू देने के बाद भी फिल्मों के ऑफर कुछ खास नहीं मिल रहे थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने बेटी के लिए फिल्में बनाना जारी रखा।

चार दशक से भी लंबे करियर में राजेंद्र कुमार ने करीब 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और लगातार कई हिट फिल्में उन्होंने दी। बावजूद इसके राजेंद्र कुमार को कभी कोई अवार्ड नहीं।

राजेंद्र कुमार को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया पर उन्हें ये अवार्ड नहीं मिला और बाद में 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: और अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। आपसे कहना यह है कि आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। कार्यक्रम हमें यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। साल 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तआवुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पांचवें और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को तौसी देकर दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दो तरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया। ये फैसला ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक, अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी तआवुन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दो तरफा लॉजिस्टिक्स मदद का मुआहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह किया, जिससे एक आजाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई उनके मुश्तरका अज़्म का इयादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालिमियत और उसूलों पर मबनी बैन अल-अक़वामी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन, जामे और बाहम फायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती मुआहदे की तकमील और इस पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मुआहदे को जल्द अज जल्द लागू किए जाने और इस पर मुअसर तौर पर अमल किए जाने को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते रिश्तों के लिए न्यूजीलैंड में भारतीय बिरादरी का अहम रोल है। ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं।
2: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड

0: न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी फर्द की शख्सियत को बनाने में लाइब्रेरियों की अहमियत को उजागर करते हुए मुल्क की नौजवान नस्ल से कहा है कि वो लाइब्रेरियों का इस्तेमाल करें। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी, मुफक्किर और कौमी लीडर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अहम खिदमात पेश की थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क को और उसके लोगों को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रिवायती दिफाई सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजियों को मजबूत करके एक ताकतवर, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फोर्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें हो सकता है कि मस्नूई जहानत और दीकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लड़ी जाएं, लेकिन बिलाखिर वो बहादुर सिपाहियों और बासलाहियत फौजी ताकत के साथ ही जीती जाएंगी। छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मशरकी बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IND महेंद्रगिरी को शामिल किया जाना भारत की बहरी ताकत और मुल्क में ही तैयार करने की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की समत एक संगे मील है।
3: समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी एक लाइफलाइन। आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामानिकारों से बात करते हुए जनाब गडकरी ने बताया कि शराकतदारों ने सड़क, रेल, फजाई और आबी ट्रांसपोर्ट को कार्बन के बगैर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और मुतबादल बायो ईंधन और आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजियों को अपनाने पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ज्यादा मजबूत, लचकदार और पायदार ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजियां और इख्तिरात का तबादला किया जा रहा है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रांसपोर्ट वजरा ने भी इस मीटिंग के दौरान अपने ख्यालात और बयानात पेश किए। रेलवे और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को एक बड़ा तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का हब बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद को बुलेट ट्रेन के साथ पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ जोड़ने की तजवीज रखी गई है। हैदराबाद में एक सनती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार रेल नेटवर्क सफर के वक्त को कम करेगा और जनूबी भारत के बड़े इक्तिसादी मरकजों के दरमियान कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तूफान बावी आज मशरकी बुहेराए चीन में शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बायस जापान के जनूबी जजायर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि ताइवान और मशरकी चीन तूफान से निमटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 144 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल रफ्तार वाली हवाओं के साथ इस तूफान के बारे में पेशगोई की गई है कि ये चीन के सूबे जेजियांग में कल सुबह सवेरे खुश्की से टकराने से पहले ताइवान के शिमाल से गुजरेगा। हुकाम ने समंदर में तुगयानी और बुलंद लहरों की वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से जापान के ओकिनावा सूबे में 200 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं और स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत साउथैम्पटन के यूटिलिटा बोल में टी20 बैन

0: लंबी सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड 3-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। फीफा आलमी कप में दीगर क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मियामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसर सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक बुलंद किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तआवुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England and Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. And now the news in detail. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: Mr. Modi thanked the people and leadership of New Zealand for their warmth and support, saying the visit of an Indian Prime Minister after 4 decades reflects the growing strength of the partnership. Hailing the Free Trade Agreement or FTA between the two countries, Mr. Modi appreciated New Zealand's efforts in concluding the FTA process in a short period and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation.
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
1: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister announced that India and New Zealand will establish a strategic partnership to provide a broader framework for expanding cooperation across key sectors.
3: Today, I'm pleased to announce that Prime Minister Modi and I have agreed to elevate our relationship to a strategic partnership. And this is a significant step forward in a world that is increasingly volatile and uncertain. Strong partnerships are more important than ever before. And this provides a stronger platform for practical cooperation in prosperity, security, and people-to-people connections.
1: Prime Minister Modi has said that the Indian community in New Zealand is a vital pillar of the growing partnership between the two countries. He said that from Auckland to Wellington, from Christchurch to Queenstown, the Indian community spread across every corner of New Zealand is a vital part of this shared journey. Now we go over live to the Prime Minister addressing the Indian diaspora at a community event in Auckland.
2: Ab itna lamba intezar aapko nahi karna padega. अब 40 साल नहीं लगेंगे ये मोदी की गारंटी है

0: मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability.
2: मल्टी फंक्शन रडार के साथ
3: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टी फंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS Mahendragiri एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द Mahendragiri माउंटेन
2: Mahendragiri पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
1: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. He emphasized that reading is essential for understanding the country and its people. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education.
4: राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली
5: द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट एडवांस द नेशन कम्स फ्रॉम नॉलेज फ्रॉम विजडम एंड फ्रॉम पुटिंग दैट विजडम इनटू प्रैक्टिस

0: to advance while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षो में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
3: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित

0: अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टारपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों

ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

0: सुने सुनाए ज्ञान के बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक

द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान की बात में बहुत स्वागत है आप सभी का, और आज मैं हूँ आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं
2: अरविंद भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का एक और कड़ी में। और सीमा, इससे पहले हम अपने कार्यक्रम को शुरू करें, किसान भाई हमारे सवाल पूछें, एक्सपर्ट उस पर जवाब दें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बताएं ये सब्जी कौन सी होगी अगर इसका इतिहास 4000 साल पुराना हो, अगर ये पहली शताब्दी में यूनान में जो पहले ओलंपिक्स हुए थे उसमें एथलीट्स की ये पसंदीदा जो है ताकत की एक सोर्स रहा हो, और इसे काटते हुए अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो।
1: बिल्कुल, जो लास्ट वाला हिंट था ना, बिल्कुल सही जा रहा है कि जिसे काटते हुए आंसू आ जाए, लेकिन हाँ, जिसका स्वाद है जो जुबान पर छा जाए। तो हम बात करेंगे प्याज की।
2: जी हाँ, एक ऐसी सब्जी जो कि थाली में सलाद से लेकर अब बनाने के समय हर जगह जो है मौजूद रहती है, और इसके तरह तरह के उपयोग में, पौष्टिकता के अलावा इसके औषधीय रूप भी बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारा आज का विषय यही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जी है जैसे कि हमने कहा, और हर घर में इसका इस्तेमाल होता है, और साल भर हमें इसकी जो है जरूरत होती है, तो इसलिए इसकी खेती भी हमें चाहिए कि साल भर हो, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी कर सकें और किसी भी तरह के इम्पोर्ट पर हम लोग डिपेंडेंट ना रहें। इसीलिए आप बात करेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में जो खरीफ की प्याज की खेती है इसके बारे में।
1: बिल्कुल है, और आज इस विषय पर हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर सबीना इस्लाम जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाखा विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपसे।
3: नमस्कार।
1: और जैसे कि आज हमारा जो विषय है प्याज की बात करने वाले हैं, हम खरीफ प्याज की खेती की बात करने हैं, खासतौर पे मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम प्याज की बात करते हैं, इसकी मांग की बात करते हैं, इसकी खेती की बात करते हैं, तो कितना समय लगभग लग जाता है, अगर हमारे किसान भाई जानना चाहें कि कम से कम कीमत पर, कम से कम समय में कैसे हम इसको उत्पादन कर पाएंगे।
3: देखिए, जैसे आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं खरीफ प्याज के बारे में, तो इसको जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, जैसे उत्तर भारत की मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं जब बारिश थोड़ा सा शुरू हो जाए, क्योंकि हम देखेंगे जो मई जून का तापमान होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है, और प्याज आमतौर पे एक शीतकालीन फसल है या रबी क्रॉप है, तो एक बार बारिश होने के बाद जैसे थोड़ा सा ठंडा होता है उसी दौरान हम इसकी बिजाई शुरू करते हैं। और मान लीजिए आप जून जुलाई से आप इसकी नर्सरी शुरू करेंगे और ये जाके आपका अक्टूबर आखिरी या नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो लगभग आपका जब आप खेत में लगा देंगे, खेत से लगाने के बाद आपको 110-120 दिन के अंदर आपका ये फसल तैयार हो जाता है।
2: जी हाँ, वैसे तो मुख्य रूप से सर्दियों की जो है फसल है, लेकिन हमारी डिमांड इतनी है और इस समय भी जो है उसकी खेती की जानी है, लेकिन खेती करने से पहले बहुत सारी हमें सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है कि इससे, ताकि हमारी फसल जो है वो कीटों से मुक्त रहे, किसी तरह की समस्या ना, और उत्पादन अच्छा हो ताकि हमारे किसान मित्रों को उसका लाभ भी मिले। तो सबसे जो पहला इसमें जो चरण आता है वो आता है बीजों के चुनाव का और नर्सरी बनाने का। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं किस राज्य के हिसाब से किस तरह के बीज ज्यादा उन्नत होते हैं, किस तरह के बीजों को लगाने से उनकी खेती जलवायु के हिसाब से उनको ज्यादा मुनाफा देगी,
1: अगर हम अच्छी किस्मों की बात करें। जी हाँ,
3: देखिए जो हम खरीफ प्याज की बात कर रहे हैं और जो शीतकालीन प्याज होता है, जो रबी प्याज होती है, आप क्रॉप बायोलॉजी हम कहते हैं, जो हमारी रबी फसल होती है उसको हम लगाते हैं अक्टूबर की आखिरी या नवंबर में, जब हमारे यहाँ पे ठंड शुरू होती है, उसके बाद हम उसको दिसंबर आखिरी या जनवरी में उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ताकि हमारा उसी दौरान ठंड है, तो इसका मतलब उसकी जो पत्ती की ग्रोथ या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ठंड में हो रही है। फिर उसके बाद उसकी जो बल्ब डिफरेंशिएशन, मतलब जो नीचे कंद बनना, वो शुरू होती है, फिर वो जाके आप अप्रैल मई में हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं जबकि तापमान बढ़ता है। और जो खरीफ में होता है, आप देखिएगा जो क्रॉप बायोलॉजी बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जब हम लगा रहे हैं तापमान काफ़ी ज़्यादा है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए जो उसकी आइडियल तापमान है वो नहीं मिलती है, और उसके बाद जब आपको हार्वेस्टिंग करने का टाइम है नवंबर दिसंबर, तो उस टाइम ठंड शुरू होती है जो कि आपको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अनुकूल है। तो इसीलिए जो भी हमारे किस्में हैं, सारे किस्में से आपका ये खरीफ प्याज नहीं हो सकती है, कोई कोई किस्में ऐसे होगी जो रबी में बहुत अच्छे पैदावार देती है बट वो खरीफ में नहीं चलती है। तो इसीलिए कोई किसान भाई अगर खरीफ प्याज का उत्पादन करना चाहते हैं तो उनके लिए जो सटीक जो किस्म है उसके चयन करना बहुत आवश्यक है। ये नहीं है मैंने ये रबी में लगा दिया था, इसमें अच्छा पैदावार है, उसी किस्म को दोबारा चुन के खरीफ प्याज में लगा दिया। तो इसीलिए जो हम देखते हैं उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पे हमें, अरे यहाँ पे अग्रीफाउंड डार्क रेड, जो NHRDF से विकसित है, फिर उनकी लाइन 883 है जो अच्छी चलती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन गार्लिक रिसर्च सेंटर है वहाँ से विकसित है भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर, इसके अलावा B780 फुले समर्थ, ये सारे किस्में अच्छी चलती है। तो कोई किसान भाई अगर खरीफ प्याज की खेती करना चाहे तो मैं ये रिकमेंड करूँगी एग्रीफाउंड डार्क रेड लाइन 883, भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर, बसवन 780, N53 फुले समर्थ, ये किस्में जरूर चयन करें।
2: जी हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में खरीफ प्याज की खेती के बारे में, और अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, खासतौर से हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान मित्रों का, वहाँ प्याज बहुत अच्छी होती है, तो आप हमें सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2342-1081 और 2342-1083। दिल्ली से बाहर से अगर आप कॉल करें तो 011 जरूर लगाइएगा। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सबीना इस्लाम जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आपने किस्मों की बात की डॉक्टर साहब कि कौन सी किस्म किसके लिए बेहतर है। अभी जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत अच्छी प्याज होती है, खासतौर से नासिक में बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे किसान जो है हमारे क्या खास अच्छा करते हैं या फिर वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो वहाँ की प्याज की उत्पादकता को बहुत बढ़ा देती है जो बाकी किसानों को फॉलो करना चाहिए अगर वो प्याज की खेती इस मौसम में करना चाहते हैं।
3: देखिए मैंने शुरू में बताया कि जो प्याज एक क्रॉप है ये क्लाइमेट डिपेंडेंट है। अगर आपको तापमान ज़्यादा हो जाएगा, 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्ते की ग्रोथ है, रुक जाती है। अगर पत्ते की ग्रोथ हो जाती है, जो हमारे प्याज के जो कंद है उसमें आपको जो खाद्य पदार्थ तो संचय होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए देखिए जो महाराष्ट्र है वहाँ का जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है वो समुद्र के किनारे पे है, उनकी जो तापमान है अनुकूल रहता है। हमारे यहाँ पे जैसे आप अप्रैल मई में देखेंगे 40 के ऊपर चला जाता है, उनका जो तापमान है 35-38 के आसपास रहता है, तो नाइट टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है जो हम उत्तर भारत मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो ये उनके एडवांटेज होती है, इसीलिए वो आगे बढ़ गए। तो हमारे यहाँ पे यही होता है, जो तापमान हमारा है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
2: लेकिन
3: तो
2: उसको इस्तेमाल कैसे करें अपनी खेती को और बेहतर करने, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नर्सरी पर आ जाते हैं, हमने किस्मों की बात कर ली है, बीज की बात कर ली है, बीज उपचार से होते हुए हम जानना चाहेंगे किस तरह से बेहतर नर्सरी बनाई जा सकती है।
3: देखिए यही अभी हम बात करें खरीफ प्याज, तो आप जो उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो मैंने ये शुरू में बोला है, जब देखिए सॉयल टेम्परेचर जो है बहुत मायने रखता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है, जो पारिपार्श्विक का जो तापमान है अगर 27 क्या डिग्री सेल्सियस के अबव होगा, ज़्यादा होगा तो उसकी ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी। अगर बारिश ज़्यादा होगा फिर गर्मी होगा तो उसमें आपका फफूंद की जो प्रकोप है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। भले आपने नर्सरी अच्छे से कर लिए और उसमें तापमान बढ़ गया और आपने पानी दे दिया, तो डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी है आपको पूरे खड़े खड़े जो नर्सरी है बहुत अच्छे जो चल रहे थे उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर सकते हैं। तो बीमारी का प्रकोप जो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा होती है, तो नर्सरी जब आप लगाएंगे, जो खासतौर से मैं मैदानी क्षेत्र के लिए बात कर रही हूँ, देखिए हमारे यहाँ पे बारिश तो रोज़ नहीं होती है, यहाँ का जो बारिश होता है कभी बहुत ज़्यादा होती है, फिर आपको 10-15 दिन बिल्कुल नहीं होती है, तापमान काफ़ी बढ़ जाती है।

0: इसीलिए आपको पौधों को धूप से बचाने के लिए, जो तापमान है थोड़ा सा कम करने के लिए, शेड नेट की प्रबंधन करना पड़ेगा। लगभग 50% शेड नेट के आसपास करते हैं। तो जो हमारे किसान भाइयों कई बार ऐसे करते हैं, शेड नेट जो है बहुत नीचे लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वेंटिलेशन नहीं होती है, उमस ज़्यादा हो जाती है, तो जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है उसमें भी, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, तापमान और जो आर्द्रता जो होता है उसमें बीमारी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो जो आप शेड नेट लगाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा लगाइए, 8 से 10 फीट के ऊपर, ताकि अच्छे से वेंटिलेशन बने, उमस ना बने। और दूसरा होता है, इसमें तो आपको तापमान से बचाव हुआ, फिर बारिश से आपको बचाना है, क्योंकि प्याज ऐसे फसल है वो जो पानी की रुकावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आपकी जो नर्सरी बेड होगा काफ़ी ऊंची होनी चाहिए, 20 के 22 सेंटीमीटर के आसपास ऊंची होना चाहिए, ताकि कभी ज़्यादा बारिश भी हो जाए वाटर लॉगिंग ना हो। और इसी दौरान आपको देखिएगा, जो नर्सरी आप शेड नेट कर रहे हैं, कई बार बारिश का पानी इकट्ठा होकर आपका नर्सरी में गिरता है, नर्सरी को पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो आपको उसी हिसाब से कर्व भी बनाना चाहिए, ताकि जो पानी है दोनों साइड से बह जाए, आपको नर्सरी को नुकसान ना पहुंचाए।
1: जी हाँ, और बहुत ऐसी जानकारी मिल रही है। और आज विषय से संबंधित कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। 23 42 10 81 और 23 42 10 83 पर इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। और अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, 100.1 MHz पर। किसान की बात में आज बात हो रही है खरीफ में प्याज की खेती के बारे में। डॉक्टर सबीना इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अभी बात की नर्सरी के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे इसकी दो चीज़ें, एक नर्सरी मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि हमारे जो पौधे वो अच्छी रहे और फसल मिले, दूसरा बीज उपचार के बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: जी देखिए, पहले तो हमने बात कर लिया सटीक किस्म की चयन करना, फिर जब आपको प्याज की बीज मिल गया, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, प्याज की जो सीड होती है, बीज होती है, उसकी वायबिलिटी 1 ही साल होता है। कई बार किसान भाइयों को पता नहीं होता, पुराना सीड ले लेते हैं और उसको देखते हैं उसका जमाव बिल्कुल नहीं हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा जो नए सीड लॉट है उसी को लेने का। फिर उसके बाद जब आपने नर्सरी बना लिया, अपने शेड की प्रबंधन कर दिए, नर्सरी रेज बेड भी बनाए, तो फिर जो आप बीज लगाएंगे नर्सरी बेड में, कोशिश कीजिए उसको लाइन सोइंग करें, ऐसे छिड़काव से अच्छा है, मतलब 5 सेंटीमीटर के आसपास लाइन की दूरी होगी और कंटिन्यूस सोइंग होगा। तो हम जो नॉर्मली जो कोशिश करते हैं, नर्सरी की जो चौड़ाई है 1 मीटर के आसपास रखना चाहते हैं, ताकि और दोनों नर्सरी बेड के बीच में दूरी जो है लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, ताकि आराम से बैठ के कोई उसमें काम कर सके।
5: जी हाँ, बातचीत हम जारी रखेंगे डॉक्टर साहब। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो।
6: हाँ नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार,
6: स्टूडियो में प्रेजेंट सभीयों को मेरा नमस्कार। मैं किसान बोल रहा हूँ मथुरा जनपद उत्तर प्रदेश से।
0: जी,
5: अपना प्रश्न पूछिए।
6: मैम मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं पहली बार प्याज करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अगर आप एक्सपर्ट हैं मुझे लगा, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ।
0: देखिए, हमने पहले ये चर्चा किया है, जब आप प्याज लगाना चाहेंगे पहले तो आपको इसकी क्रॉप के बायोलॉजी समझना चाहिए, क्योंकि आप रबी में जब लगाएंगे, रबी में तो आराम से हो जाती है जो ठंड में होती है, बट खरीफ प्याज में थोड़ा सा चुनौती होती है। तो सबसे पहला होता है इसका किस्म, जो सही किस्म अगर नहीं चयन कीजिएगा तो आपकी पैदावार ठीक से नहीं होगा। दूसरा, इसका जो नर्सरी है वो सही टाइम पर लगाना है और उसके सही से मैनेजमेंट करना है, इसको धूप से तापमान से बचाना है, और जो वाटर पानी जो इकट्ठा होता है उससे भी बचाना है। और इस दौरान नर्सरी की ग्रोथ थोड़ा सा रुकावट होती है, जैसे रबी में होती है, नर्सरी अच्छे से चलती है, इसमें आपको बीमारी की भी प्रकोप होती है, कई बार कीड़े भी आती है और वाटर लॉगिंग भी होती है, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ से बचाव करना है। उसके बाद आप जब नर्सरी में आप मतलब इसकी ग्रोथ जो न्यूट्रिशन है उसको अच्छे से देंगे, आपको लगाएगा कि अपने अच्छे से नर्सरी पौध तैयार कर ली, फिर आपको उसको खेत में लगाना पड़ेगा, रेज बेड में मतलब ब्रॉड बेड फारो में उसको ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी।
5: जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब बीज उपचार के बारे में, हम चाहेंगे जानकारी को आप जारी रखें।
0: आप इससे थोड़ा सा सुनिएगा, पहले हमने ये चर्चा किए थे सही किस्म का, फिर हमने बताया था कि आपको जो नर्सरी लगाएंगे उसको शेड के प्रबंधन करना है, रेज बेड करना है, फिर अभी हम जो बीज लगाएंगे एक तो कोशिश करेंगे नए बीज जो लॉट है उसी को लेंगे, क्योंकि पुराना बीज लॉट का आपका जर्मिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और जो बीज होता है इसी दौरान डैम्पिंग ऑफ की प्रकोप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं 1 किलोग्राम सीड में कम से कम 2 ग्राम बेबिस्टिन या थायरम अच्छे से मिला के उसमें लाइन पे सोइंग करें। हमने बताया कि लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास की दूरी की लाइन खींचेगा और कंटिन्यूस लाइन पे बीज सोइंग कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो 1 मीटर की जो हमारी बेड है चौड़ाई जो है उसमें कम से कम आपको 200 के आसपास सीड गिरे, ताकि आपको मतलब 150-170 के आसपास पौधे अच्छे से मिल जाए, ताकि ज़्यादा घना भी ना हो और ज़्यादा हल्का भी ना हो। फिर उसके बाद देखिए, जब आप नर्सरी लगाएंगे फिर अपने बीज अगर उपचार किए तो अच्छा है, अगर बीज उपचार करना भूल गए तो बीज हम लगाने के बाद उसको ढकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, FYM या फिर अच्छे से सड़ी हुई FYM या फिर वर्मी कॉम्पोस्ट से बीज को ढक देते हैं, तो उसी दौरान आप 1 किलो जो आपका वर्मी कॉम्पोस्ट है उसमें 2 ग्राम बेबिस्टिन या थायरम मिला के उसके ऊपर सीड को ढक देते, फिर सीड को ढकने के बाद आप उसके ऊपर हम सूखी घास या पराले अच्छे से डाल देते, ताकि तापमान थोड़ा सा ठंडा बना रहे और उसमें जो नमी है वो भी पकड़ के रहे। तो ये जब आप सूखी घास डालेंगे, हम इसको कहते हैं मल्चिंग, तो इसमें आप देखिएगा जो आप घास लेते, कई बार होता है कि हमारे जो किसान मित्र होते हैं ये घास को दवाई से जला के मतलब जो हर्बिसाइड यूज़ करके घास को जलाते, ऐसे वाला घास मत लीजिएगा, क्योंकि गलती से अगर आप ये ले लीजिएगा तो इसकी जो रेसिड्यू होता है वो आपको प्याज पे टॉक्सिसिटी होता है, आपको जर्मिनेशन को रुकावट देती है। तो फिर आप जैसे देखिए, आप खेत से सूखी हुई घास को डालेंगे और हर दिन सुबह शाम आप देखिएगा जो नर्सरी है वो कभी सूख ना जाए, और आप उसमें हाथ लगा के देखिएगा तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार अपने नर्सरी गर्म हो गया और उसके बाद आपने पानी दिया तो डैम्पिंग ऑफ की जो ये कहते हैं जो डैम्पिंग ऑफ होता है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होती है और उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो फिर जब अपने ऐसे सुबह शाम पानी दे दीजिएगा तो फिर आप देखिएगा 6-7 दिन के बाद उसके अंकुरण होता है, 8-10 दिन के बाद आपको देखना पड़ेगा लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास उसका पौध निकल के आता है, जब अंकुरण होती है तो आपको उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने दीजिएगा, उसका जो पराली था उसको मल्चिंग था उसको निकाल दीजिएगा, और ऐसे अच्छे से सफाई से कीजिए ताकि उसका पराली का जो टुकड़ा होता है वो खेत में ना रहे, कोशिश कीजिए क्योंकि उसमें छोटा मोटा कीड़ा आ जाता है, फिर आपको पौधे को भी नुकसान पहुँचाता है। और जैसे अपने पराली को निकाल लीजिएगा उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा ड्रेंचिंग कर दीजिए रिडोमिल का, ताकि उसका सिस्टमिक फंजीसाइड हो, कोई बीमारी अगर आ रहा है तो उसको भी उससे बचाव करें।
5: क्या बीमारियों से बचाव के लिए भी यही समय उचित होता है बीज उपचार का, ताकि कुछ बीमारियां जो आने वाली हो सकती हैं मौसम की वजह से उनसे बचाया जा सके?
0: हाँ जी, ये जो डैम्पिंग ऑफ की हम बात कर रहे थे इसी से बचाने के लिए हम बीज उपचार के ज़्यादा करते हैं, ताकि डैम्पिंग ऑफ का जो प्रकोप होता है, क्योंकि डैम्पिंग ऑफ दो टाइप की होती है, एक होता है प्री एमरजेंस मतलब बीज निकलने से पहले, एक होता है पोस्ट एमरजेंस। ये जो आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बीज उपचार कर रहे हैं, इससे आपका प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ रुक जाएगा, फिर पोस्ट एमरजेंस जब डैम्पिंग ऑफ आएगा इससे कुछ दिन बचाव होगा, बट जैसे हम भी आपने बताया कि आपका नर्सरी का तापमान बहुत गर्म हो गया फिर आपने पानी दे दिया तो मिट्टी में जो भी विषाणु होता है वो फिर से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कोई भी दवाई का असर कुछ दिन तक रहता है, जैसे उसकी असर खत्म हो जाती है फिर जो भी विषाणु होता है फिर अपना एक्टिविटी शुरू कर देता है, तो उससे बचाव करने के लिए फिर आपको मिट्टी में ड्रेंचिंग करने की आवश्यकता होती है।
5: जी, तो डॉक्टर साहब हम लोग जैसे आप जानकारी दे रहे हैं खरीफ के प्याज की खेती के बारे में, इस विषय में हम और ही बात करेंगे, खासतौर से अब किस तरह से पौध को हम लोग खेत में लगाएं और उस तरह खेत की तैयारी उसकी सावधानी के बारे में एक छोटे से अंतराल के बाद।
7: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत है आपका कार्यक्रम में पपे से। और जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, आज हम कर रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में खरीफ प्याज की खेती। तो अब जैसे कि हमने अभी नर्सरी की तैयारी कर ली है ना, अब हमने उसे खेत में अगर हमने उसे ड्रॉप आउट करना है तो उस किस के तरीके से हम कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें लेनी होगी?
4: देखिए, हम लगभग 6 से 7 के ओल्ड सीडलिंग जो होता है उसको खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ध्यान रखिए कि छोटा, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करें मतलब मेन मूल खेत में लगा रहे, आपको सीडलिंग बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। अगर बहुत छोटा होगा तो आप उसको एस्टेब्लिशमेंट में दिक्कत आएगी, कभी मॉर्टेलिटी भी, मतलब काफ़ी सीडलिंग मर जाती है। और अगर ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब अपने 10-12 हफ्ता लगा दिए, फिर उसको जब खेत में लगाएंगे तो उसमें साठी आने का संभावना रहती है। तो जब हम खेत में लगाएंगे तो आजकल हम कोशिश करते हैं जो जैविक खाद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग यही देखते रहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं हमेशा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो होता है, आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश यही सारे डालते हैं। तो जो मिट्टी में हमारे जो सूक्ष्म जीव होता है, जो ये जो न्यूट्रिएंट है इसको जो सॉल्युबल बनाता है, जिसके अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, इसकी मात्रा काफ़ी कम हो जा रहा है। तो इसीलिए हमको ये रिकमेंड करते हैं, जब भी हमारा किसान भाई प्याज का खेती करना चाह रहा है, जो भी हमारा मिट्टी है उससे खेत, जब मूल खेत तैयारी कर रहे हैं लैंड प्रिपरेशन, उस टाइम सॉयल में जो बायोफर्टिलाइज़र है उसको इस्तेमाल अच्छे से करें, क्योंकि बायोफर्टिलाइज़र आजकल काफ़ी मौजूद है, काफ़ी हमारे संस्थान से भी इसको उपलब्धता है। तो आप उसको जो लगभग 15 टन के आसपास FYM होती है, जो हम 1 हेक्टेयर में लगाते, लगभग 10,000 मीटर स्क्वायर होती है, और उसमें हमारा 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फॉस्फोरस और 50 kg पोटाश और 50 kg सल्फर देना होता है। तो इसका मात्रा आप जब बायोफर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो इसका मात्रा आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये जो इस टाइम आप जब इसमें ट्राइकोडर्मा वेरिडी जो होता है इसको भी अच्छे से मिला लीजिए, लगभग 1 kg 250 g के आसपास जो ट्राइकोडर्मा वेरिडी होता है, ये आपका जो FYM है या फिर वर्मी कंपोस्ट है उसको अच्छे से मिला के 10-15 दिन रखिए और पूरा खेत में छिड़काव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद उसको आप मेन खेत की तैयारी कीजिएगा। और इसी दौरान मैंने अभी बात किया है कि पानी की रुकता है, जैसे बारिश के भी अचानक हो जाता है और प्याज बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करता वाटर लॉगिंग कंडीशन, तो आपको ब्रॉड बेड फारो करना पड़ेगा, लगभग 20 से 25 cm के आसपास रेज बेड बनाना है। तो आपका अगर लोकेशन है, कई बार हम 2-row प्लांटिंग सिस्टम करते, 3-row प्लांटिंग सिस्टम करते, कई बार हम ये रिकमेंड करते हैं जो साइंटिफिकली हम करते हैं, जो अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो लगभग 1 मीटर की चौड़ा बेड बनाइए 20 से 25 cm, तो उसमें 2 लैटरल डालिएगा और उसमें 2 एमीटर के बीच की डिस्टेंस लगभग 45 cm के आस 45 से 60 cm हो, तो उसमें आप मतलब रेज बेड बना के कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा जो बरसात के प्याज होता है इसमें एंथ्रेक्नोस की प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको हम जलेबी रोग भी कहते हैं, जो कोलेटोट्रिकम ग्रोएस्पिरेट्स की वजह से होता है। इसका क्या होता है, जब बारिश की पानी होती है और उसकी स्प्लैशिंग इफेक्ट होती है, इसके ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और एक बार अगर खेत में आ जाए तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम किसान भाई को ये सलाह देंगे, अगर आपको खरीफ प्याज करना है तो उससे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका रेज बेड हो और वहाँ पर ड्रेनेज की काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छे से हो।
5: जी हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम बात कर रहे थे कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम से पहले भी, वो है खेत बचाओ अभियान के बारे में, हम चाहेंगे उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं।
4: जी, यही अभी हम वो जो चर्चा कर रहे थे कि अक्सर हम यही देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई है जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है उसी को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा मिट्टी है, मिट्टी हमारी माँ है, मतलब ऑर्गेनिक थिंग है, तो इसमें काफ़ी सूक्ष्म जीव होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जो हमारे NPK है उसको मतलब सॉल्युबल करते हैं, उसको अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। अब देखिएगा प्याज का अगर रूट देखिएगा, जड़ देखिएगा, लगभग 12 से 15 cm के अंदर ऊपर तक ही रहता है।

0: है और थोड़ा सा सरफेस एरिया उसका बहुत कम है। तो चाहे आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी डालेंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो आपके जड़ तक नहीं पहुँचता है। तो ये जो बायो फर्टिलाइज़र्स है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सूक्ष्म जीव होता है जो कि आपको न्यूट्रिएंट को आपको जाड़े तक पहुंचाता है। जब वो आपको जाड़े तक पहुंचा दे रहा है तो आपको जो एनपीके हम जो डालते हैं उसको मात्रा हम काफ़ी कम कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं शैम्पू और कंडीशनर, तो ये आपको एक कंडीशनर का टाइप का काम करता है, आपको मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बना के रखते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, रिकमेंड करते हैं हमारे किसान भाई को कि जब भी आप मतलब आपको कोई भी फसल की खेती करें, आप बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो इससे आपका जो एनपीके आप डालते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, इसका मात्रा काफ़ी कम कर सकते हैं और आपका खेत काफ़ी दिन के लिए सस्टेनेबल रहेगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ दिन तक आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसके बाद आप चाहे कितना भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसके उतने रिजल्ट नहीं आता है। ये वजह यही है कि उसके अंदर जो सूक्ष्मजीव था उसका जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो गया, तो जो फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं सिंथेटिक उसका अवेलेबिलिटी नहीं करा पा रहे।
1: जी हाँ, जैसे हमको खेत बचाना है, धरती और मिट्टी को बचाना, उसी तरह हमें बारिश और उसके पानी को भी बचाना है। तो सीमा जी, कैसे बचाएंगे हम पानी?
2: बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख जल संरक्षण अभियान चल रहा है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत चलाया जा रहा है। और इसका मूल मंत्र है, जहाँ गिरे जब गिरे जितना गिरे वर्षा का पानी वहीं सहेजे। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, वर्षा जल संचयन, घरों की छतों, मैदानों और अन्य स्थानों पर बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाना, साथ ही भूजल का पुनर्भरण, तालाबों, सूखता गड्ढों और जल संरचनाओं के माध्यम से जमीन के गिरते हुए जल स्तर को सुधारना। जन आंदोलन इस अभियान को सिर्फ सरकारी योजनाओं न रखकर स्थानीय पंचायतों, नागरिकों, किसानों और स्कूलों की भागीदारी से एक जन आंदोलन बनाना है। और यही आज हमारा मूल मंत्र है कि सच कहा कि जहां गिरे जब गिरे जितना गिरे वर्षा का पानी वहीं संजीजे, और ये सभी की जिम्मेदारी है। और खासतौर पे जैसे कहा कि ये स्कूलों से लेकर हर जगह, ऑफिसेज में, घर में, हर सोसाइटी में, हर जगह एक मेन मोटो अब ये होना चाहिए कि वर्षा के पानी का ज्यादा से ज्यादा हम संग्रह कर सके।
1: जी हाँ, जब संग्रहण की बचत की बात आती है तो हम धन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अब हमको पानी और वर्षा के बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को, इससे पहले हम जाएं, हम जल्दी से जानना चाहिए खरपतवार नियंत्रण इस समय और कैसे करें ताकि हमारी मुख्य फसल को नुकसान ना हो।
0: देखिए, प्याज शैलो रूटेड क्रॉप है, इसकी जड़ काफ़ी नीचे तक तो नहीं जाती है और ये पुअर कंपिटिटर ऑफ वीड्स है, मतलब जो खरपतवार है उससे अच्छा कंपिटिट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें प्री एमरजेंस वीडिसाइड जो है केमिकल है पेंडेमिथिलिन 30 ईसी अराउंड 2.5 लीटर प्रति हेक्टर में आपको 600 लीटर पानी में डाल के उसको स्प्रे करना है। उसके बाद आप उसको रोपाई कर दीजिए, उसके बाद इरीगेशन करना बहुत आवश्यक है क्योंकि सॉइल में अगर नमी नहीं रहेगा तो इसकी इफेक्टिविटी नहीं रहेगा। तो लगभग 30 से 35 दिन तक आपको पौधे को इस खरपतवार से बचता है। इसके बाद अगर आपको वहाँ ज़मीन पे ज़्यादा खरपतवार की प्रकोप है तो उसी हिसाब से आपको 5 से 6 बार हैंड वीडिंग करना आवश्यक हो सकता है।
1: जी, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी खासतौर से मौसम की
2: बात जरूर करेंगे हम,
1: नज़र में रखते हुए कि हमारे किसान भाइयों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्विक टिप्स उनके लिए।
0: क्विक टिप्स हैं, जो हमारी नर्सरी लगाएंगे उसको आप धूप और तापमान से बचाइए, शेड नेट के प्रबंधन कीजिए, कई ज़्यादा बादल होने से आप शेड नेट को हटाइए क्योंकि नहीं तो लैंकी ग्रोथ हो जाएगी। फिर सही किस्म की चयन कीजिएगा क्योंकि सारे किस्म खरीफ प्याज में आपको नहीं सक्सेस देता है। तीसरा है, जब आप बेड लगाएंगे या फिर मेन खेत में लगाएंगे, वाटर लगिंग कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्याज ऐसा है फसल है, कहीं पे एक बार पानी की अगर रुक जाती है तो उसका नुकसान होता है, फिर वो क्रॉप सही से नहीं चलता है। और चौथा है, आपको उसको ड्रेनेज को काफ़ी प्रबंधन करना है क्योंकि अगर ड्रेनेज नहीं है तो बीमारी आ जाएगी। और चौथा है, पछुआ है, जो इसमें आपका कई बार बीमारी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो इससे आपको प्रिवेंटिव स्प्रे मेजरमेंट लेना पड़ेगा। आप खेत में जाइएगा, जैसे थोड़ा सा बीमारी आपको दिख रहा है, जैसे पर्पल ब्लाइट जाता है, लिप ब्लाइट आती है, उससे पहले आपको फंजीसाइड की इस्तेमाल करना है। कभी भी आप दवाई की छिड़काव कीजिएगा, आप देखिएगा प्याज के पत्ते काफ़ी ग्लॉसी होती है, सिल्की टाइप का होता है, तो जो भी आप स्प्रे करेंगे उसके साथ स्टिकर ज़रूर डालिएगा। बिना स्टिकर के डालेंगे तो उसकी एफिकेसी नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं इसके साथ हमारे किसान भाई अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
1: जी हाँ, ज़रूर उम्मीद है कि इन सबसे उनका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने का और इतनी जानकारी देने का। तो दोस्तों हमारे साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर सबीना इस्लाम, आप शाक्य विज्ञान सभा पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक हैं। और आज के कार्यक्रम से अब विदा लेने का समय आ गया है सीमा।
2: जी हाँ बिल्कुल, और कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। kkbongold@gmail.com पर इंतजार रहेगा आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का। और इसी के साथ मैं सीमा सती
1: और मुझे अरविंद को और साथ ही हमारे प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल के साथ हमें दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीति एक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्पों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित ये 2 दिन की बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत को

0: हवा देने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region. Hailing the Free Trade Agreement FTA between the two countries, Mr. Modi appreciated New Zealand's efforts in concluding the FTA process in a short period and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership.
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
1: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister announced that India and New Zealand will establish a strategic partnership to provide a broader framework for expanding cooperation across key sectors. Prime Minister Narendra Modi has said the Indian community in New Zealand is a vital pillar of the growing partnership between the two countries. He said that from Auckland to Wellington, from Christchurch to Queenstown, the Indian community spread across every corner of New Zealand is a vital part of this shared journey. Addressing the Indian diaspora at a community event in Auckland, Mr. Modi said that India-New Zealand relations are built on shared memories, enduring friendship, common values and a commitment to a brighter future.
2: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
1: Speaking on the occasion, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon highlighted the growing strategic and economic partnership between the two nations. Defence Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. In United States, The Trump administration today imposed a fresh round of sanctions on Iran, targeting individuals and financial networks linked to the country's leadership in response to Tehran's attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz earlier this week. The latest measures mark another escalation in Washington's campaign against Iran following a series of retaliatory steps that have included U.S. strikes on Iranian targets and the withdrawal of sanctions waiver that had allowed Tehran

0: पल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवंत भी, विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा। इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा के गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
3: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद
3: सर। आप नुआपड़ा जिले की सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
4: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर जैसा लगा, इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे, जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारनबा नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ सामीप्य है और जो संपर्क है उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया।
3: जी सर।
4: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
3: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारी, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओडिशा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
4: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं, एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक ओडिशा का उपकल, जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं, और दूसरा है उड़ीसा का आहा जंगल है और पहाड़ पर्वत है जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा के उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुत प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
3: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वह कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
4: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहार को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूं। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिलके ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
3: आप वो 2 लाइन हमको भी सुना दीजिए।
4: कहीं

ने इसका हिंदी अर्थ होगी, आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने

0: ऐसे मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है। ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का वो मंत्र ऐसे गाते थे, कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नई संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और श्रुति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है। और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत। और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ अकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुंचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन अकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर अकेडमी करता है और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए। बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है

3:25:22। स्वागत आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 रेडियो स्टेशन के साथ। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक जी. जिस तरह मुझे अभी बहुत समय के बाद एक एहसास हुआ कि मुझे ये गीत सुनना चाहिए और अपने अपनों को सुनाना चाहिए, तो पहला गीत मैंने आपकी नज़र कर दिया है. इसी तरह अगर आपके मन में भी कोई थॉट आ रहा है, कोई गीत ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आज सुनना बनता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं fmgoldair@gmail.com. एक बार दोबारा सुन लें आप fmgoldair@gmail.com, और यहाँ से अब आपके जो मैसेजेस हैं उनका सिलसिला शुरू होता है. तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, आप खुश हैं, तो भी हमें मैसेज कीजिए. अगर आप आज बहुत उदास हैं, कुछ है दिल में हलचल, कुछ जहन में फितूर आ रहा है, कुछ भी है, आप अकेला रहना चाहते हैं, कोई गीत सुनना चाहते हैं, तो भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं fmgoldair@gmail.com. और अब जो गीत हमने आप तक पहुंचाना है, आप सब तक पहुंचाना है, वो तो आप तक पहुंचेगा ही, लेकिन किसी खास के लिए भी है. आज किसी का जन्मदिन है जिनका नाम मैं भी लूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत सा शेर उनके लिए कहूँगी कि हंसी थमी है इन आँखों में यूं नमी की तरह, हंसी थमी है इन आँखों में यूं नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह. आँखों की बात की है, रोशनी की बात की है, क्योंकि आज डॉक्टर यशोदा लोहिया जी का जन्मदिन है. वो एक अस्पताल में बतौर आई सर्जन कार्यरत हैं, और आज उनके बेटे डॉक्टर दीप और उनकी बेटी शिखा और उनकी दो प्यारी प्यारी बच्चियों और उनकी मुंह बोली बहन सीमा की ओर से उनको जन्मदिन की, बर्थडे की बहुत बहुत बधाई है. आप बहुत प्यारा कार्य कर रही हैं, आप लोगों को रोशनी जो है उसे मेंटेन करना भी बताती हैं, क्योंकि अब ये बरसात का मौसम आ गया है, तो सभी डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशली आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आँखों को बचा कर रखिए, क्योंकि बारिश में भी आँखों पर असर पड़ता है, और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो सिर्फ आँखों की होती हैं, मौसम के हिसाब से होती हैं. तो बहरहाल हम बीमारी की बात नहीं करते हैं, आज हम FM गोल्ड की तरफ से डॉक्टर यशोदा लोहिया को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, और उनके दोनों बच्चों ने हम तक ये संदेशा पहुँचाया है कि उन्हें एक गीत बहुत बहुत पसंद है, यानी उनका पर्सनल फेवरेट है. तो आइए सुनते हैं उनका पर्सनल फेवरेट भी, हमारा फेवरेट भी, आप सबकी पसंद भी. हैप्पी बर्थडे डॉक्टर यशोदा लोहिया.

और आइए अब आपके संदेशों को और आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पास स्वर्ण सिंह जी का ये संदेश आया है, लोहागढ़ से आया है, गांव लोहागढ़ से। स्वर्ण सिंह गिल हैं, दलजीत सिंह जी हैं, राजदीप सिंह हैं, इनके साथ गुरनूर हैं, गुरलाल हैं, थोड़े टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स हो जाते हैं ना, और अविराज सिंह जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और इसी तरह भारत भूषण जी, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण और संस्कृति और पौरुष हैं, इन्होंने बेंगलुरु से हमें संदेशा भेजा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत संदेशे के लिए। यहाँ पर सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से हमें मैसेज करते हैं, इनके साथ बिमला अनेजा हैं, और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। गाना बहुत प्यारा है आपका, देखें चला पाते हैं कि नहीं। कोल्हापुर से संभाजी सुतार हैं, चेतन हैं इनके साथ, और सारिका सुतार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। यहाँ पर प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ पलारी से हमें संदेशा भेजा है। इसी तरह कुमकुम जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपका भी संदेशा आया है। विजय सुरलकर हैं, साथ में रत्माला हैं, कुमकुम हैं और मोताला महाराष्ट्र से इन्होंने एक ये संदेशा भेजा है। मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी तरह आप हमें मैसेज करते ही, आपके मैसेज हमें ऊर्जा देते हैं। और इसके साथ साथ संभाजी हैं, चेतन हैं और

अरिका सुतार हैं, इन्होंने कोल्हापुर से हमें संदेशा भेजा है। आप अपना जो संदेशा है इसी तरह हमें मैसेज करते रहिए। मैसेज करने के लिए आपको जो पता है वो मैं बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और अब बारी है एक और खूबसूरत गीत की। 1973 में ये फिल्म आई और जो गीत है वो कुछ यूं है, देखिए कितनी खूबसूरत बांसुरी बजाई गई है।

0: अभिमान फिल्म के इस गीत के बाद मेरी नज़र आपके मैसेजेस पर है, पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ आज शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा, और हमारे दरमियान जो कार्यक्रम है उसका नाम है मन भावन। और उस तक पहुंचने का जो पता है आप भली भांति जानते हैं, फिर भी जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया उन्हें बता दूं, fmgold@delhi.com आप अपना जो संदेशा है, अपनी फरमाइश है, आप हमें इसमें भेज सकते हैं। कोई दिलचस्प किस्सा जुड़ा है तो वो भी हमें बताइएगा, मज़ा आएगा सुनने में। जमशेदपुर से हमारे पास हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का ये संदेशा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और पंजाब से हमारे पास परमिंदर सिंह रंधावा और इनके साथ लखनपाल जी हैं और सुरेंद्र कौर रंधावा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बोधराज खोरवाल जी, बहुत बहुत नमस्कार, उत्तम नगर दिल्ली से आपने संदेशा भेजा है, और आपके साथ कमला रानी हैं, गीतिका हैं और भानु प्रकाश हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने संदेशे fmgold@delhi.com पर हमें भेज सकते हैं। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से ये मैं आपका देखिए दोबारा आपने जो भेजा है ना, अभी मुझे एकदम से याद आ गया कि मैंने अभी तो आपका ये लिया। अब ये पैराग्राफ में जब आप लिखते हैं तो मैं आपके नाम ही खोजती रह जाती हूँ, इसीलिए आपसे मैं निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप ना एक के नीचे एक अगर नाम आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पैराग्राफ में ढूंढना पड़ता है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान है, ये इन्होंने संदेशा भेजा, तो उम्मीद करती हूँ अगली बार आप अपना संदेशा एक के नीचे एक नाम लिखकर भेजेंगे। मोहम्मद यासीन हाशमी साहब हैं, ये हैं नजमा बेगम हाशमी हैं, मोहम्मद तौसीफ हैं और मोहम्मद कलीम अंसारी हैं। इन्होंने हमें कहाँ से भेजा है, गुंज डुंडवारा से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है, और आपके संदेशे हमें मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। जिन्होंने अपना संदेशा भेज दिया है, मैंने जिनका संदेशा पढ़ लिया है उनसे विनम्र निवेदन है कि आप दोबारा ना भेजें, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें, क्यों आप नहीं चाहते। यहाँ पर कमलकांत गुप्ता जी का भी संदेशा आया है, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी हैं और दीपा रिमझिम गुप्ता हैं इनके साथ। और आपसे एक और मैं बात कहूँ, आप अपने दोस्तों को और जो आपके अपने हैं उनको बोलिए ना कि आप भी इसमें आप मैसेज कीजिए, तो एक मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आप अपने किसी साथी का नाम लिखकर भेज रहे हैं और वो साथी ने आपका सुना ही नहीं है, मैसेज ही नहीं सुना है, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशानी छिम्पा और पूजा परिहार हैं, इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा। मुझे लगता है अब काफ़ी सारे मैंने नाम जो हैं वो पढ़ लिए हैं, और अब एक बहुत बेहतरीन गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में आइए सुनते हैं।

कई बार ऐसे होते हैं साथियों कि जब हम कोई गीत सुनते हैं ना, तो कुछ गीत ऐसे हैं जिसमें थर्ड स्टैंजा में फीमेल सिंगर आती हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये रफ़ी साहब का सोलो है, लेकिन तीसरे अंतरे में तो आशा जी ने आके कमाल ही कर दिया। चलिए, इसी तरह आप के संदेशे हमें मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे समय अब ज़्यादा नहीं है, फिर भी fmgold@delhi.com इस पर आप हमें संदेशा भेज सकते हैं। यहाँ पर सीमा जी नमस्कार, किसने भेजा है? छत्तीसगढ़ से हमारे पास कौशल्या देवकुंजी और रोशन लाल देवकुंजी का संदेशा है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हेमलता है साथ में और डिम्पल देवगन है, और आपने एक गीत की फरमाइश की है। जी हाँ, मानसून तो आ ही गया है, सावन का महीना भी बस बिल्कुल सामने ही है, तो कई बार मौसम के हिसाब से जो गीत होते हैं वो सुनने का बड़ा मन करता है। आदाब किसने हमें लिखकर भेजा है? नसीर शेख साहब हैं, आपने आदाब हमें लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा है कोई भी गीत सुना दें, फातिमा कॉलोनी यहाँ महाराष्ट्र से आपने लिखा है। नासिर शेख हैं इनके साथ, नाजिया इनके साथ हैं, साजिद इनके साथ हैं, और इसके साथ साथ अगले मैसेज की तरफ मेरी नज़र जा रही है तो मैं देख रही हूँ कि कृष्ण मेहरा हैं, कोमल हैं इनके साथ, किरण मेहरा हैं, कपिल हैं और कुणाल मेहरा हैं। उन्होंने हमें नमस्ते भेजा है, और भिवानी से इन्होंने हमें लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए भी। बबलू ठेकेदार जी हैं, शेख सगीर हैं, शेख वज़ीर हैं और शेख सुहेल साहब हैं, अदनान हैं इनके साथ, विजू भाई हैं इनके साथ, और इन्होंने भी बाजार मुताला से हमें ये संदेशा भेजा है। तो अब क्या कहते हैं कि अब एक गीत सुन लेते हैं। हिमलता जी, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, आपने राजस्थान से हमें संदेशा भेजा है। जब भी गीत की बात करती हूँ एक नया सा मैसेज आ जाता है, तो चलिए जो पहला हमने जो मैसेज पढ़ा था उनकी फरमाइश है, हम सब की फरमाइश है, क्योंकि आप जानते हैं मौसम तो आ ही गया है, मानसून।

0: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
1: ध्यान रखना बेटा।
2: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
3: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
2: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
3: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
2: आपकी जागरूकता, हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।

स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन। वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, चलते चलते होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी हैं, सचिन खोरवाल, अमन हैं, दीपांशु हैं और इन्होंने एक फिल्म के गीत की फरमाइश की है, लेकिन अब आगे बढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही है। एक गीत आपकी नज़र कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा ही सुनते हैं। आइए आपसे इजाज़त तो ले लूँ, सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुदेंद्र टंडन ने कहा कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन तक और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का अपना ऐतिहासिक 2 दिन की यात्रा पूरी करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन, जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। भारत ने कल पहली पारी में 285 रन बनाए थे। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। फुटबॉल फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार

4:11 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1। और साथियों, आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत, अपने ज़माने के मशहूर गीत जिन्होंने उस वक्त तो हमारे दिलो दिमाग पर असर किया ही, हमारे दिलों में घर किया ही, लेकिन आज भी जब हम उन्हें सुनते हैं तो बड़े तरोताज़ा लगते हैं।

आई आईया करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु आई आई

0: जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा।

0: सूख दू।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो

0: हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: एक बार फिर आपकी दोस्त सीमा वर्मा स्वागत करती है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी हमने गीत सुना अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू जंगली फिल्म का ये गीत रफ़ी साहब की मखमली आवाज़। और आइए अब एक और गीत आपकी नज़र करते हैं, 1959 की फिल्म सुजाता का ये गीत है। और जिन्होंने ये गीत गाया है उनकी आवाज़ की यही खासियत थी कि एक हल्की सी कंपन जो दिल में बहुत प्यारा मीठा सा असर कर जाया करती थी। ये गीत आप की नज़र करते हुए आपको ये भी बता दूं कि इस गीत के उस पार 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार।

0: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित SES बाबा नेभराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। TGT सिंधी एक रिक्ति, असिस्टेंट टीचर 6 रिक्तियां, लैब असिस्टेंट 2 रिक्तियां। ये सभी पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हैं। भर्ती के नियम, वेतन, योग्यता और आयु संबंधी शर्तों के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के नियम लागू होंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.edudel.nic.in। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स आमंत्रित कर रहा है विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री धारी होना चाहिए। कंसल्टेंट को कार्य दिवसों में प्रतिदिन 2 घंटे के लिए मेहरौली नई दिल्ली स्थित C.DOT परिसर में उपस्थित होना होगा। ये अनुबंध प्रारंभ में 2 वर्षों के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन एवं पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली NCR के प्रतिष्ठित अस्पतालों क्लिनिकों से जुड़े डॉक्टरों को वरीयता दी जाएगी। इच्छुक डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे अपना बायोडाटा तथा MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री प्रमाण पत्रों की प्रतियां ईमेल से इस ID पर प्रेषित करें admin.del@c.in। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अपर डिवीजन क्लर्क के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं और प्रतिस्थापन का स्थान रहेगा केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार सुन रहे थे। और साथियों, अब वक्त हो चला है आपके अपने कार्यक्रम परिक्रमा का, कुछ ही देर में।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कराते हैं

0: देश की परिक्रमा और साथ ही याद करते हैं कुछ खास हस्तियों को भी। ऐसी ही एक खास हस्ती भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है, जो कहते थे कि मनुष्य का मन अपने अंदर से ही त्राण पाता है और अपने अंदर से ही असहाय क्लेश भी, यानी मन की गहराई से ही शांति और असहनीय पीड़ा दोनों उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब मन विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तो ये स्वयं को हील करने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने अंतर्मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के संकल्प के साथ करें। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना।
1: हेलो सरफिरोजी, नमस्कार एंड गुड डे एवरीवन। यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड सरफिरोजी ऑलरेडी हैज इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस। India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का अहम हिस्सा।
1: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमिशन्स इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी, सेज इंडिया बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्स।
0: परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया।
1: टाइफून बावी फोर्सेस फ्लाइट कैंसिलेशंस एंड स्कूल क्लोजर्स इन जापान एंड ताइवान।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा।
1: एंड इन फीफा वर्ल्ड कप नॉर्वे टू टेक ऑन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना टू फेस स्विट्जरलैंड इन क्वार्टर फाइनल्स टुनाइट। And now we are moving towards our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Population Day. Yes, so Sarfirozi, let me ask you a question. Have you ever visited the Kumbh Mela, a bustling market or a busy railway station during the festive season and thought, the sheer number of people here is unbelievable? That's the power and that's the challenge of population, isn't it?
0: बिल्कुल तन्वी, मैं कुंभ मेला तो नहीं जा पाई हूँ, लेकिन चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन तो हम कुछ दिनों में विजिट करते हैं, महीने में या कई बार साल में, लेकिन मेट्रो स्टेशन जरूर रोज विजिट करते हैं। और बात कर रही हैं आप पॉपुलेशन के चैलेंज की, तो बढ़ती आबादी की जो चुनौती है उसे थोड़ा अगर हल्के फुल्के अंदाज में समझने की कोशिश करें तो ऐसा मान लीजिए एक म्यूजिकल चेयर का खेल है, जिसमें जो चेयर है यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो सीमित है, लेकिन जो खेल के खिलाड़ी हैं वो हर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक म्यूजिक बजता है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन फिर जब म्यूजिक रुकता है तो एक ही सीट के लिए 10 लोग दावेदार हो जाते हैं। आप हम लोग जैसे मेट्रो में आते हैं, जब ऑफिस आते हैं तो स्टेशन पर जब रुकती है मेट्रो, उससे पहले ही कि कोई निकले बाहर, चढ़ने वालों की इतनी हो जाती है भीड़ कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं बचती। तो इस तरह की चुनौती हम रोज देख रहे हैं आबादी से जुड़ी हुई।
1: दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई 11th ऑफ जुलाई Today is observed as World Population Day, a day that asks us an important question. Is population simply about numbers, or is it about creating a better life for each and every person?

0: तन्वी, पॉपुलेशन डे की बात कर रहे हैं जो आज मनाया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे दिमाग में ये बात आई कि आज ही की जो तारीख है इसे क्यों चुना गया पॉपुलेशन डे मनाने के लिए? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम वापस जाएंगे साल 1987 में, जब 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी के 5 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
1: The day became famous as the day of 5 billion. That's a huge number. And it wasn't a celebration of a number. It was actually a wake-up call.

0: thought echoed across the globe. And can our planet continue to provide enough food, education, healthcare, jobs and even natural resources for each and everyone?
1: बिल्कुल तन्वी, और इसी सोच ने दुनिया भर में एक बहस छेड़ दी और फिर दो साल बाद 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की और 1990 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे हर साल मनाने को औपचारिक रूप से मंजूरी भी दे दी.
0: So here's a myth that I would like to bust. Population concern doesn't always include more people. Sometimes it means fewer young people. Our listeners might be surprised. So look at Japan and Italy, for instance. Their biggest concern isn't rapid population growth, but an aging population. A large share of their citizens is above 65 years of age, a trend often called the silver tsunami.
1: यानी इसका मतलब यह है तन्वी कि कहीं ना कहीं हम शुरू से गलत सवाल पूछ रहे हैं. क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किसी देश में लोगों की आबादी कितनी है, बल्कि शायद ये पूछना चाहिए कि कितनी ऐसी आबादी है जो पूरी तरह हेल्दी है, कितनी ऐसी आबादी है जो पढ़ी लिखी है, और क्या उस आबादी में से जो यंग लोग हैं उनके पास आगे बढ़ने के मौके हैं.
0: That's precisely the message behind this year's World Population Day theme is realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future. Every child is born with dreams, but the real question arises here is, will they get the opportunity to fulfill them?
1: बिल्कुल सही कहा तन्वी. जब युवाओं को अच्छी शिक्षा, सही स्वास्थ्य सेवाएं, समान अवसर और बिना डरे सपने देखने की आजादी मिलती है, तो वो सिर्फ अपना करियर नहीं बनाते बल्कि मजबूत परिवार और मजबूत देश का भी निर्माण करते हैं.
0: Absolutely. And as Gurudev Rabindranath Tagore beautifully wrote, where the mind is without fear and the head is held high. Those timeless words remind us that real development is not measured by population figures alone, but by whether people can learn freely, dream confidently and realize their true potential.
1: बिल्कुल तन्वी, और भारत जैसा जो देश है हमारा, इसे अलग अलग संस्कृतियों का समागम के देश के तौर पे तो जाना ही जाता है. साथ ही हमें देश के सबसे युवा देशों में भी शामिल किया गया है और इस नाते हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलता है. देश में युवा भारतीय स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. तन्वी,
0: That's correct. And they are even making scientific breakthroughs, serving with pride in the armed forces and creating solutions that inspire the world. And that is why education remains one of the greatest investments any society can make.
1: बिल्कुल तन्वी, और विक्टर ह्यूगो ने भी कहा है कि जो इंसान स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जेल का दरवाजा बंद करता है. यानी शिक्षा अपराध और अज्ञानता को दूर करने का सबसे ताकतवर हथियार है, और जब हम युवाओं की शिक्षा और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम उसी आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहे होते हैं.
0: I truly agree. World Population Day is also closely linked to the Sustainable Development Goals, or as we commonly call them, SDGs. Two of them stand out in particular. The first one is SDG 3, which focuses on good health and well-being, and second is SDG 5, which promotes gender equality. Well, listeners, imagine trying to build a house on a weak foundation. It simply won't last, right? The same is true for development.
1: बिल्कुल, अच्छी सेहत और लैंगिक समानता के बिना लंबे समय तक चलने वाली तरक्की हासिल करना मुश्किल है. और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट ऐसा हो, इस हिसाब से हो कि जो हमारी दुनिया के संसाधन है वो असीमित नहीं है, उन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संभाल कर रखना है.
0: Absolutely true. Mahatma Gandhi once said, the world has enough for everyone's need, but not everyone's greed. It is a powerful reminder that sustainable development is not about consuming more, but about ensuring that every individual has a fair chance to live with dignity while protecting the resources that future generations will depend upon.
1: और अब बात करते हैं कि कैसे आज का जो दिन है पॉपुलेशन डे, वो किस तरह दुनिया भर में मनाया जाता है. आज के दिन दुनिया भर में जागरूकता अभियान आयोजित होते हैं, स्वास्थ्य शिविर और परिवार नियोजन से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.
0: एंड इवन पब्लिक डिस्कशंस, यूथ प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स आर आल्सो प्लान्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन दिस पर्टिकुलर डे. सो डियर लिसनर्स, प्लीज बिफोर वी रैप अप आवर टुडेज़ डिस्कशन, आई वुड लाइक आवर लिसनर्स टू कैरी

0: one question with them. Can just a single day spark a global movement?
1: बिल्कुल तन्वी, और हमारे श्रोताओं के पास समय है इस सवाल का जवाब खोजने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि बड़े बदलाव और जो सफलता है वो रातों रात नहीं मिलते। ये रोज की छोटी आदतें, सब्र और निरंतर प्रयासों का परिणाम होते हैं। जैसे कि एक मजबूत इमारत की जो नींव है वो तुरंत नहीं बनती, वैसे ही अगर हमें जीवन में कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत होती है। हालांकि जो लोग बदलाव को जल्दी अपनाते हैं वो अवसरों का सबसे पहले लाभ उठा सकते हैं।
0: I couldn't agree more. When future generations look back at us, they will remember us. Will they remember how many people lived on earth? Or rather, how well we cared for one another? Because World Population Day is obviously not just about counting people. It's actually about valuing people, isn't it?
1: बिल्कुल तन्वी, इसका मकसद है हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत देना, हर युवा को बराबरी के अवसर देना, हर महिला को समान अवसर देना और हर परिवार को सोच समझ कर फैसले लेने की आज़ादी देना। अपनी युवा आबादी और अपार प्रतिभा के साथ भारत के पास मिसाल बनकर नेतृत्व करने का अनोखा मौका है, लेकिन सोचना हमें यह है कि भविष्य हमारे दरवाजे पर दस्तक तो दे रहा है, लेकिन क्या हम उसका दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? तन्वी, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं को देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और उन्हें बताने का कि हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
0: So let's begin with the New Zealand PM community event. This community event at Auckland's Spark Arena was a celebration of the vibrant cultural ties between India and New Zealand. Alongside colourful performances by members of the Indian diaspora, the event reflected the shared values and traditions that continue to bring the two nations closer. More on this from our correspondent.
2: The colors of India and the traditions of New Zealand came together beautifully during Prime Minister Narendra Modi's visit to Auckland. Earlier, Prime Minister Modi witnessed a traditional Maori cultural performance and praised the iconic haka, describing it as a powerful expression of courage, pride and respect. Prime Minister Narendra Modi recalled New Zealand Prime Minister Christopher Luxon's visit to India during the Festival of Holi last year. In a remarkable coincidence, Prime Minister Modi's own visit to New Zealand coincided with Matariki, the Maori New Year. From Holi to Matariki and from the powerful haka to India's rich cultural traditions, the celebrations reflected a friendship rooted in mutual respect for each other's heritage, diversity and strong people-to-people ties. Manju Meena for Akashwani News, Auckland, New Zealand.
0: Moving towards Sambalpur, the Jagannath Rath Yatra is not just a festival. It is one of the most significant spiritual events in the Hindu calendar. Every year, the holy city of Puri in Odisha transforms into a sea of devotion. People travel from all over the world just to catch a glimpse of Lord Jagannath during this auspicious occasion. This year, the Rath Yatra will begin on 16th of July. More on this from our Sambalpur correspondent.
3: The Jagannath Rath Yatra is one of the biggest and most sacred festival in India. It is dedicated to Lord Jagannath, believed to be a form of Lord Vishnu. For millions of devotees, visiting Puri during this time is a deeply spiritual experience. The festival is held every year during the Hindu month of Ashad. This year, the Grand Rath Yatra will begin on July 16. On this day, thousands of devotees gather to pull the 3G and wooden chariots carrying Lord Jagannath, his brother Lord Balabhadra and his sister Goddess Subhadra through the Grand Road of Puri. After spending a few days at the Gundicha temple, the deities will return to the Jagannath temple during the Bahuda Jatra on July 24. The next day on July 25, devotees will witness the famous Sunaveso, when the deities are decorated with beautiful gold ornaments. One of the most unique tradition of the festival is the construction of the chariots. Every year, all three chariots are built from scratch using wood and age-old technique that have been followed for centuries. As preparation enter the final stage, the holy city of Puri is ready to welcome lakhs of devotees from across India and around the world for this grand celebration of faith and tradition. For Parikrama, This is Alok Chandra Barik, Akashvani, Sambalpur.
1: और तन्वी, अब अपने श्रोताओं को संबलपुर से लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां आज युवाओं की ऊर्जा, नए विचार और भविष्य की दिशा एक ही मंच पर दिखाई दे रही है। यहां चल रहा है माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 और तन्वी, इस आयोजन में और क्या कुछ खास हो रहा है उस पर एक खास रिपोर्ट है।
4: इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब

0: is for local farmers. He expressed happiness that programs like Meghalaya Pineapple Fest are providing a platform to the farmers of the state to showcase their product. With Arzu, Soumya Sharan for Parikrama.
1: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि ये महोत्सव जो है वो शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित हो रहा है और इसके लिए आपको टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है.
2: And now we are talking about Delhi's fests and initiatives. The next initiative in the list is Delhi PMML School Initiative. To help young people better understand the constitution and democratic values, the Prime Minister's Museum and Library PMML today launched a new museum-based learning initiative, Jan Se Gan Tak, in New Delhi. A report on this.
3: The newly launched Jan Se Gan Tak initiative is an immersive museum-based program to familiarize higher secondary students with India's constitution, democratic traditions, and civic values. The initiative includes a scholar-led walkthrough of the museum's constitution galleries, followed by interactive discussions on justice, liberty, equality, fraternity, citizenship, and public participation. The program will be held every Friday for students nominated by participating schools with the aim of encouraging young learners to view the Indian Constitution not just as a legal text but as a living expression of India's aspirations and responsibilities. Schools that wish to nominate students or join future sessions can contact Pradhan Mantri Sangrahalaya through the official email IDs on its website. With Arzu and Saklin Akhtar, Harshita Ojha for Parikrama.
1: श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान में और वहाँ की हलचल आपको देंगे. तो इस समय दुनिया भर में जिसे खेल का बहुत ज़्यादा चर्चा है तन्वी, वो है फीफा. फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे. इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से और फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था.
2: So apart from FIFA, we cannot forget cricket. India will face host England in the 5th and final T20 international of the series today at the Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series.
1: श्रोताओं, अब हम याद करेंगे उन कुछ खास हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. जिस एक शख्सियत का हमने शुरू में ही जिक्र किया था तन्वी, भीष्म साहनी को, तो आज सबसे पहले उन्हें ही याद कर लेते हैं. भीष्म साहनी की आज पुण्यतिथि है. ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे. रावलपिंडी में जन्मे साहनी ने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में MA किया. विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हासिल की और समाचार पत्रों में लिखने का काम किया. तन्वी, जब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं किसी शख्सियत की तो इस तरह तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन जब एक शख्सियत अपने सफर के बारे में खुद बताता है तो कहीं ना कहीं हम उनसे अटैच हो जाते हैं. तो एक भीष्म साहनी के इंटरव्यू का एक चंक है जो हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो उन्हें पता चलेगा कैसे कितना लंबा सफर भीष्म साहनी ने तय किया.
2: जी,
4: मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था जब मैंने एक कहानी लिखी, तो इंटरमीडिएट कॉलेज था, उसकी पत्रिका में वो छप गई. मैं बड़ा खुश. फिर उसके बाद जब मैं लाहौर पढ़ने गया तो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की एक पत्रिका थी रावी नाम से, उसमें फिर दी, कुछ एक और भी थी, चलती रही. वो अबला नाम से था, अबला. और शायद हर हिंदी का लेखक पहले अबला से ही शुरू करता है. उर्दू के लेखक तो कुछ एक थे और गाहे गाहे मिलते भी थे, उनके साथ उठना बैठना भी था, लेकिन हिंदी लेखन में कोई नहीं था, ज्यादा नहीं थे. लेकिन दिल्ली में मेरी फुफेरी बहन रहती थी, उसे लिखने का शौक था और उसके साथ मेरा संपर्क था. और फिर मैं जब बिजनेस करने लगा अपने पिताजी के साथ तो मैं अक्सर दिल्ली जाया करता था.
2: So what amazing writing he has done, and we cannot forget to mention Tamas here, the work he has written, and even today we do research on it, we act on it, and this new generation, they can't help but be inspired by it.
1: बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे श्रोता भी ये जानते होंगे कि इनकी इसी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तन्वी, और इसी रचना पर इनकी एक फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा भारत सरकार ने

0: पद्म भूषण अलंकरण से भी विभूषित किया था.
1: एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइटर्स, अनदर राइटर इन द लिस्ट इज अमिताभ घोष. टुडे इज हिज बर्थडे. एन अमेरिकन राइटर, ही वन द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर. हिज एम्बिशियस नॉवल्स यूज कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्ट्रैटेजीज टू प्रोब द नेचर ऑफ नेशनल एंड पर्सनल आइडेंटिटी, पर्टिकुलरली ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया. ही हैज रिटन historical fiction and non-fiction works discussing topics such as colonization and climate change. And he worked at the Indian Express newspaper in New Delhi and several academic institutions. His first novel, The Circle of Reason, was published in 1986. And apart from that, his other successful works are The Shadow Lines, The Glass Palace, and many more. The In an Antique Land, the book that came in 1992, and the one The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable, that came in 2016. Both are amazing works. So let's hear a short interview of his and understand his point of view.
2: Yeah, I mean, I think, you know, if we go back 100 years and we think of, let's say, Mahatma Gandhi, he articulated a very powerful challenge, you know, to this this kind of Western modernity. In fact, he said at that point, there were only 300 million Indians. And he said, if 300 million Indians start living like Westerners, we'll consume the world like locusts. So even back then, he could see clearly that it's not necessarily anything to do with, he didn't know about the science of climate change or whatever. It was just common sense. If you overuse resources, at some point, you will have to pay for it. And that's exactly where we are.
0: और तन्वी, आज ही जयंती है टुन टुन की भी, जिनका नाम हम सभी ने सुन रखा है. ये भारतीय पार्श्व गायिका और हास्य अभिनेत्री थी. इनका असली नाम था उमा देवी खन्नी और इन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री के रूप में भी संबोधित किया जाता है. ये फिल्मों में गाने गाती थी उमा देवी के नाम से. और अपने श्रोताओं को एक ट्रिविया भी दे देते हैं कि टुन टुन का जो प्रसिद्ध नाम पड़ा, ये नाम इन्हें अभिनेता दिलीप कुमार ने दिया था. इन्होंने गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55 और प्यासा में यादगार रोल किए, जो आज भी लोगों को याद हैं. इस अवसर पर आइए सुन लेते हैं टुन टुन क्या और अभिनेता महमूद के बीच एक कॉमेडी सीन.
3: वही बचपना, वही शरारत
4: है. क्या बचपन में हमने आपसे कोई शरारत की थी?
3: जी नहीं.
4: लेकिन मैडम, आपकी तारीफ.
3: मलका फिक्टोरिया.
4: मलका फिक्टोरिया,
3: याद है बचपन में मैंने आपसे शादी की बात की थी.
4: आपने हमसे शादी की बात की थी? उसके बाद हम क्या बेहोश हो गए थे?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं.
4: लेकिन मैडम फटोरिया, अब तो आपकी उम्र उम्रा हो चुकी है. हमारी शादी आपसे.
5: एक्सक्यूज मी, वो शादी की बात मम्मी की नहीं, हमारी हुई थी.
4: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बाबा तो काफी हो चुका है.
3: ये बाबा नहीं है, ये तो बेबी चमेली है.
4: अच्छा, तो क्या इनकी शादी हो गई?
3: जी नहीं, बस आप ही की राह देख रहे थे. देखिए ना राजकुमार साहब, अब आप अपने घर में किसी भी औरत को ले आइए.
4: मलका फटोरिया, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम किसकी औरत को अपने घर ले आए.
1: That's a wonderful comic timing by Tun Tun, the yesteryear actress. And today we are also remembering Giorgio Armani. Today is his birth anniversary, an Italian fashion designer and founder of the Armani luxury fashion house, widely regarded as among the most influential designers in contemporary fashion. Apart from this, today is also the birthday of Jhumpa Lahiri, a British-American author known for her short stories, novels, essays in English, and more recently in Italian as well. And it's also the birthday of Kumar Gaurav, an Indian actor who worked in Hindi cinema. He has done amazing movies, and let's hear a beautiful song picturized on him alongside Poonam Dhillon.

श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और तन्वी खुराना को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं।

0: चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नजर ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the

वेलकम जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत सीमा वर्मा हूँ मैं और मेरी सभी दोस्त हैं आप, है ना, बहुत पुराना रिश्ता है। और इतने खूबसूरत मौसम में मानसून ने दस्तक दे दी है और इतने खूबसूरत मौसम और इतनी खूबसूरत शाम में पहला गीत, ये तो

दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत से हमने शुरुआत की प्रोग्राम की, और मैं सोच रही थी कि 90s की जो फिल्में आईं, एक से बढ़कर एक बेमिसाल फिल्में जो आज भी अपना जलवा बनाए हुए हैं, स्पेशली इनके जो गीत हैं आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और जो नई जनरेशन आ रही है इनके साथ भी ये गीत कदम से कदम मिलाकर इस तरह से आगे चल रहे हैं। ऐसी ही एक 90s की फिल्म थी दिल, याद है, माधुरी दीक्षित और आमिर खान को हमने देखा। आमिर खान साहब की जोड़ी माधुरी दीक्षित के साथ, जूही चावला के साथ बहुत अच्छी स्क्रीन पर नज़र आती थी। बहरहाल इस फिल्म को बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले साथियों, लेकिन जो जीता वो माधुरी दीक्षित ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। गाने सभी बहुत अच्छे हैं, आइए ये एक गीत सुनते हैं।

साथियों, फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हीरो हीरोइंस होते हैं, इनके इनके जो काम है, इनका जो काम है उसकी वजह से या इनकी पर्सनालिटी की वजह से या जो कुछ भी है, हर कोई ऐसा होता है कि हर किसी का अपना कोई ना कोई पर्सनल फेवरेट होता है कि भाई ये इंसान मुझे बड़ा पसंद है और ये हीरोइन मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे ही एक हम शख्स की अब बात करने जा रहे हैं जो जब लॉन्च हुए 1981 में, और नाम बता दूं फिल्म का, लव स्टोरी, इनके पिताजी ने ही प्रोड्यूस करी ये फिल्म। जब ये लॉन्च हुए तो एक तरह से धमाका हो गया कह सकते हैं कि छा गए, और फिल्म लव स्टोरी को किसी भी इंसान ने 2 से 3 बार 4 बार देखा। ये वो समय था जब फिल्में जो थी वो पिक्चर हॉल में ही जाके देखी जाती थी, हॉल्स में, सिनेमा घरों में देखी जाती थी, कोई OTT प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं था। बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ इस इंसान का रहा, और फिर इसके बाद उन्होंने कुछ एक फिल्में की, लेकिन आज अगर हम उनकी बात करें तो अब वो फिल्मों में नहीं आते हैं। कभी कभार इक्का दुक्का अगर कहीं दिख जाएँ वो एक अलग बात है, लेकिन अब वो पूर्णतः अपने बिजनेस में ही अपना ध्यान लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है। हम बात कर रहे हैं कुमार गौरव साहब की, जिनका जन्मदिन है आज, और यहाँ पर गाते गुनगुनाते प्रोग्राम में हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम फिल्मी गीत आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको मिलकर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ दें। और उनकी कुछ फिल्में हैं जैसे लव स्टोरी तो खैर है ही, इस फिल्म के साथ साथ कांटे है, नाम है, फिर एक फिल्म तेरी कसम, स्टार, ऐसी कुछ एक फिल्मों में उन्होंने काम किया है और अच्छा बेहतरीन काम किया है। तो आज उनका जन्मदिन है, हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं FM गोल्ड की तरफ से, हम सब की तरफ से, और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और उन्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उन्हीं की फिल्म का गाना सुना देते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

गाते गुनगुनाते हमारा ये सफ़र बहुत ही प्यारे तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें आपका हमें भरपूर साथ मिल रहा है और हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा और हमारे दरमियाँ ये खूबसूरत 80 और 90 के दशक के गीत, इस उम्मीद के साथ कि आपको सभी गीत भा रहे होंगे। एक गीत और सुनते हैं और 5:34 हो गए। समय बहुत बड़ा हाकिम होता है साहब, इसे संभल कर बचा कर चलते रहना चाहिए आगे। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस गीत को।

चले साहब, अगर एक दूसरे को ढूंढ लिया गया है तो फिर हम भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि सब खुश रहें। अब इन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। गीत जो है अपने समापन पर है, संगीत आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ के पीछे, तो अब हम इसको जाने देते हैं, इनको एक दूसरे के साथ कहीं और जाने देते हैं। फिलहाल हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, और अगला गीत अपने आप में बड़ा ख़ास है। आप अपने कदमों को थिरकने से रोक नहीं पाएंगे साहब, ये मैं आपको ज़रूर कह देती हूँ। सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी जी की आवाज़ों में गुलजार साहब ने लिखा है ये गीत, और म्यूज़िक से आपको पता चल जाएगा AR रहमान साहब का म्यूज़िक है। हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक अलग स्टाइल होता है, और अगर आप संगीत में थोड़ी दखलंदाजी रखते हैं तो आप अंतरे में, अंतरे तक तो नहीं लेकिन मुखड़े में ही पता लगा लेते हैं कि किसका म्यूज़िक हो सकता है। फ़िलहाल इन्जॉय करते हैं इस गीत को।

0: वापस आ जाऊंगा।
1: ध्यान रखना बेटा।
2: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
3: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
2: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
3: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
2: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।

गाते गुनगुनाते हमारा भी ये सफ़र बिल्कुल चल रहा है, और चलते चलते याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1, और शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा। वक्त अगर आप नोट करना चाहें तो 5:48 और लीजिए 8, 9, 10, ये तो सेकंड की जो सुई है ये आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जो गीत मैंने आप तक पहुंचाए हैं उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आने वाला ये गीत भी अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट इसीलिए भी है क्योंकि अभी तक जो गीत हमने सुने हैं ज़्यादातर गीतों में काफ़ी अच्छी बीट वाले गीत हमने सुने हैं, लेकिन मानसून का मानसून आ गया है, मौसम बरसात का है, और बरसात में दो मूड्स होते हैं, आपने भी नोट किया होगा, या तो बहुत झूमने का जी चाहता है या फिर चुपचाप बैठकर अकेले में कुछ सोचने का जी चाहता है, अकेले या किसी खास के साथ।

जीवन चलने का नाम है और सफर में चलते रहें वही बेहतर है। 5:55, 11 सेकंड हो गए हैं और अब जाने की बारी है, लेकिन सफ़र जो है एफएम गोल्ड के साथ आपका जारी रहना चाहिए। नूपुर स्टूडियो में आ गई हैं और अब मुझे आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन जिस तरह हम तरन्नुम भरा आगाज़ करते हैं उसी तरह हम तरन्नुम भरे समापन की ओर अब आइए बढ़ते हैं। सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए, आप शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreci-

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। आज के कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा और दोनों देशों के बीच हुए प्रमुख समझौतों तथा घोषणाओं का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने न्यूजीलैंड का दौरा किया। आज उनकी ये 3 देशों की सफल यात्रा संपन्न हो रही है। लगभग 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा रही। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर हुई इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के

0: बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनी। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणाम क्या रहे, दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा क्यों दिया और ये यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा भारत की आर्थिक और सामरिक प्राथमिकताओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक विस्तारित किया और वर्ष 2030 तक के लिए एक व्यापक रोड मैप भी जारी किया। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, आपदा प्रबंधन, कृषि, डेयरी, पर्यटन, खेल, संस्कृति और समुद्री विरासत जैसे क्षेत्रों में 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही व्यापार, जैव ईंधन, समुद्री सुरक्षा, अंटार्कटिक अनुसंधान, शिक्षा और कृषि नवाचार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। आइए सुनते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट।
1: श्रोताओं, इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाना रहा। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री सहयोग, हाइड्रोग्राफी और नौवहन मानचित्रण तथा भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच आपसी लॉजिस्टिक सहयोग से जुड़े समझौते हुए हैं। इसके साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग स्थापित करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी सहमति बनी है। न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के समुद्री सुरक्षा स्तंभ से जुड़ने की भी घोषणा की है। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को नई मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय आपात प्रबंधन एजेंसी के बीच समझौते के माध्यम से भूकंप, सुनामी और तटीय आपदाओं से निपटने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कृषि और डेयरी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। दोनों देशों ने कीवी फ्रूट एक्शन प्लान शुरू करने तथा नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फ्रूट के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और सर्वोत्तम अनुभवों के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा पर्यटन, खेल, संस्कृति और समुद्री विरासत संरक्षण के क्षेत्रों में भी कई अहम समझौते हुए हैं। गुजरात के लोथल में विकसित हो रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में न्यूजीलैंड मैरीटाइम म्यूजियम सहयोग करेगा। खेलों में उच्च प्रदर्शन, खेल विज्ञान और खिलाड़ियों के विकास के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग को नई दिशा दी है। गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के बीच अंटार्कटिक अनुसंधान पर सहयोग का समझौता हुआ है। वहीं निफ्टेम कुंडली और मैसी यूनिवर्सिटी के बीच अनुसंधान, छात्र आदान प्रदान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। इन सभी समझौतों और घोषणाओं से स्पष्ट है कि भारत और न्यूजीलैंड की साझेदारी अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर रक्षा, समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि नवाचार, विज्ञान और शिक्षा जैसे भविष्य के क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है।
0: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा केवल समझौतों तक सीमित नहीं रही बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और साझा दृष्टिकोण का भी प्रतीक बनी। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड पहुंचना दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो मित्रता को नई ऊर्जा और नया विश्वास प्रदान करेगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया है।
2: पिछले वर्ष प्रधानमंत्री लक्षण की भारत यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है। उनके नेतृत्व, स्पष्ट विजन और मजबूत प्रतिबद्धता से भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता को नई गति और नई दिशा मिली है। आज 40 वर्षों के बाद

0: भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है। हमने हमारे सहयोग को नई गहराई और व्यापकता देने पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य भारत और न्यूजीलैंड को स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं।
0: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: ऑकलैंड में आयोजित भारत न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और अब केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का लॉन्च पैड बन चुका है। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत के विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, विमानन, पर्यटन, फिनटेक, अंतरिक्ष, स्मार्ट सिटी, कृषि और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ने स्पष्ट किया है कि दोनों देश केवल पारंपरिक मित्र ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले विश्वसनीय साझेदार भी हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, संस्कृति और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आधार बनेंगे। 4 दशकों के अंतराल के बाद हुई ये यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप 2030 के माध्यम से दोनों देशों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और नियम आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग मोहित सिंह।

0: असौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन स्वदेशी तन्त्रेण निर्मितस्य आईएनएस महेन्द्रगिरी युद्धपोतस्य विधिवत् जलावतरणं विधापितम्। संसूचितं च यत् भारतम् एकं सुदृढं आत्मनिर्भरं भविष्योन्मुखं च रक्षाबलं निर्माति। परिवहनक्षेत्रे प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संचालित सहयोगं सुदृढं विधातुं ऐतिहासिकं ब्रिक्स मंत्री घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या अंगीकृतम्। बावी चक्रवातस्य कारणात् जापान तैवानयोः विमानयात्राः निरस्तीकृताः, शैक्षणिकाः संस्थाः च स्थगिताः। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये पञ्चमान्तिम च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा अद्य सायं साउथहैम्प्टन नगरे आयोजयिष्यते। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम उपान्त्य स्थानानां निश्चयार्थम् अद्य रात्रौ प्रागुपान्त्य चरणे नॉर्वे इंग्लैंड दलयोर अथ अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशयोर मध्ये स्पर्धा भविता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां सम्पाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः सम्बन्धान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपान्तरितवन्तौ। अनेनैव सह 30+2000 तम वर्षं यावत् उभय देशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 crore rupees विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभय देशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य अक्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सिन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिक रूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं क्राइस्ट चर्च तः क्वींसटाउन पर्यंतं न्यूजीलैंडर्स

0: किसी खास स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे। बहरहाल, आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: धन्यवाद प्राची, थैंक यू सो मच अनुभा, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन।
0: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं और आपसे बातचीत भी करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
2: थैंक यू प्राची। Benchmark domestic indices snap four-week winning streak. Sensex and Nifty decline nearly 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jumped this week amid renewed hostilities in West Asia.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार चार हफ्तों की बढ़त के बाद इस सप्ताह लुढ़के। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.3% की गिरावट आई। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में हर साल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। और पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ते तनाव के कारण इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल आया।
2: And before we begin the program and take your calls, a very important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And over to Prachi for the top story of the day.
0: Top story लेंगे अनुभव, मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश से हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: मार्केट मंथा टीम, प्राच के एक्सपर्ट को नमस्कार।
1: नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं जो इनकम टैक्स का AIS फॉर्म होता है
1: जी,
3: मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है, तो जब मैंने AIS फॉर्म डाउनलोड किया है
1: जी,
3: तो उसमें मुझे सर, चूंकि मैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ
1: जी,
3: और जो भी मुझे एरियर वगैरह बीच में पेड होता है वो मैं कम अमाउंट लमसम भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ
1: जी,
3: तो लमसम के लिए मैंने सर जो फंड सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें मैंने STP के माध्यम से लिक्विड फंड में डाला हुआ था, और STP के माध्यम से मैं अपने SIP में म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करता रहता हूँ।
1: ओके,
3: तो सर जो AIS में है उसको मुझे किस प्रकार इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, मुझे AIS से समझ नहीं आ पा रहा है, उसमें ट्रांजेक्शन आ रही है 15 से 20 ट्रांजेक्शन है, तो उसको मैं कैसे समझ के उसको फाइल करूँ।
1: चलिए विवेक और अनुभव और प्राची, क्योंकि टैक्स फाइलिंग सीजन चल रहा है, 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है
0: जी।
1: तो मुझे लगा बहुत सारे श्रोताओं को, और बड़ी तारीफ की बात यह है कि विवेक उसको खुद करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के। AIS का मैंने एक नया नाम दिया है उसको, वैसे तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, मैंने इसका नाम दिया आईना इसे समझिए, क्योंकि ये आपको आपके साल भर के ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरी एक लेखा जोखा सामने दिखा देता है। तो विवेक, जो SIP म्यूचुअल फंड्स में आपने किए हुए हैं उनको अगर आप उनसे सहमत हैं, देखिए AIS केवल एक ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि आपने जो एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, को बड़ा खर्च किया है, प्रॉपर्टी ली है, शेयर्स लिए हैं, कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया है, तो AIS आपको एक दिशा दिखाने का है। तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि अगर AIS में जो एंट्रीज आ रही हैं आपके SIP की, अगर वो मैच कर रही हैं आपके असली निवेश के साथ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड से कोई मुनाफा हुआ है, डिविडेंड आया है, या आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, उसी को आपने अपने रिटर्न में दिखाना है, आयकर विवरणी में। अगर IFS जो स्केड्यूल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां दिखा सकते हैं। अगर कोई आपको डिविडेंड आया है, कैपिटल गेन आया है, तो एक स्केड्यूल CG होता है, उसमें आप दिखा सकते हैं। AIS सिर्फ आप रिकंसाइल कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो असल में किया है और AIS के बीच में कोई फर्क है, तो उसमें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक फीडबैक का ऑप्शन होता है, उस फीडबैक के माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मेरा नहीं। अक्सर होता है किसी और के ट्रांजेक्शन आपके AIS में आने लग जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको देख लीजिए कि आपके असली ट्रांजेक्शन से वो मैच कर रहा है कि नहीं। बाकी आपने जो आयकर रिटर्न में दिखाना है वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड दिखाना है, या उस म्यूचुअल फंड से अगर कैपिटल गेन हुआ है तो दिखाना।
2: Let's take the next call coming in from Bangalore. Shrikant has joined us online. Shrikant, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: हाँ जी, नमस्कार।
2: नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
4: मुझे ये कहना है कि जिस तरह 4 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी उसके कारण तेल के दाम $70 से बढ़के 126 तक पहुंचे
1: जी।
4: हमारी सरकार ने वहां पे 13-14 रुपए

0: जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, अब वो वापस 126 से 70 पे आ गया, लेकिन वो वहीं पड़ा है। उसी तरह से जिस तरह 4 साल पहले जब रशिया की अटैक हुई थी तो उसी समय भी $70 पे रेट था, अब बढ़ के 140 हुआ, तो हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 100 कर दिया पेट्रोल को। और फिर जब जब दाम घड़े क्रूड के, तब तब आपने उस पर टैक्स लगा के हमेशा उसको बराबर रखा। तो अगर भाई साहब यही हालत रही है तो ना तो इन्फ्लेशन कम होने का है और ना जनता की दुविधा खत्म होगी।
1: श्रीकांत जी देखिए, मैं थोड़ा इसके पीछे का आपको गणित बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं हम उसका उसका सम्मान करते हैं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं
2: जी।
1: एक तो पहले 76 दिन कीमतें नहीं बढ़ी थी, तो पहले 76 दिन में बहुत बड़ा 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था। दूसरा इसमें यह भी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये दाम घटेंगे नहीं, अगर ये $70, अब देखिए ना, हम जब बल्कि मैं भी सोच रहा था कि अब तो $71-72 हो गए तो शायद बैठे, उसी टाइम फिर से लड़ाई शुरू हो गई, फिर ये 2 दिन पहले $80 के आसपास पहुंच गया, $79 के आसपास पहुंच गया। तो पेट्रोलियम मंत्री महोदय जो हैं हरदीप पुरी जी, उनका बयान आया पीछे कि हम 2-3 महीने देख रहे हैं, ये अगर टिक जाते हैं वहां पर तो हम घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे लोगों को। और अभी भी श्रीकांत जी मैं बताना चाहूंगा कि डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी है, पेट्रोल में तो आ गया था पर डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी का मतलब है उनको प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तो जैसे ही घाटे की भरपाई होगी करेंगे, हम भी उम्मीद रखते हैं कि करेंगे। और सरकार बकायदा इस पे जो आप बात कह रहे हैं, आपके जो भावनाएं हैं वो सम्माननीय हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और उसको उसको जब उचित समय होता है उसके पीछे गणित होता है, तो उस गणित को ध्यान में रख के। बाकी ये बात सच है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पहली बात तो 13-14 नहीं, 7.5-8 रुपए बढ़ाए गए हैं, 13-14 तो खैर नहीं बढ़े थे, पर श्रीकांत जी को मेरे ख्याल जो उसके कारण महंगाई है शायद वो पिंच कर रही होगी। मुझे उम्मीद है श्रीकांत जी अगर ये कीमतें $80 से नीचे रही और 1-2 महीने तक, तो ये जरूर घटाए जाएंगे।
2: कोलकाता से हमारे साथ LP कोठारी जुड़ रहे हैं। कोठारी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, कोहली जी को नमस्कार।
1: नमस्कार कोठारी जी।
3: कोहली जी, जैसे मैं तो इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये AAS और TIS की फिगर्स जो है 90% 95% तक ठीक है सब
1: जी,
3: लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिनमें उनकी फिगर कंफ्यूजिंग आ रही है
1: जी,
3: और वो मिल रही है, जो एक्चुअल फिगर मेरी है हमारे क्लाइंट्स की है उससे वो अलग आ रही है
1: जी।
3: और इस वजह से भी जैसे शेयर सेल्स सिक्योरिटी सेल्स वगैरह की फिगरें, तो सर अब मैं उनको TIS को फॉलो करें या हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता है कि हम उनको इनको ये कह सके कि भाई ये फिगर जो है वो सही नहीं है
1: जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कोठारी साहब, आपसे पहले भी एक दर्शक इसी से मिलते जुलती बात पूछ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि AIS जो है एक सूचक है, एक इन्फॉर्मेशन जो कुलेट होकर आती है उसको प्रेजेंट करने का आपके लिए एक रिकंसिलिएशन दिया जाता है। अगर आप उससे सहमत नहीं है कोठारी साहब, आपको लग रहा है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं असल में वो ट्रांजैक्शंस आपके नहीं, ऐसा भी अक्सर अनुभव प्राची देखा गया कि जैसे पैन नंबर गलत डाल दिया तो किसी और का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, किसी और के शेयर्स हमारे AIS में दिखते हैं, तो वहां पर कोठारी साहब नीचे फीडबैक का ऑप्शन है, आप उसमें फीडबैक डालिए। अगर आपको लग रहा है कुछ ट्रांजैक्शन आपके असली ट्रांजैक्शन से रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें फीडबैक डालिए कि ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, उसको उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं, आपकी रिटर्न अगर आपके ट्रांजैक्शंस पर एक्यूरेटली बनाई गई है तो AIS में थोड़ा इधर उधर भी होता है, तो आप उसका बाद में जवाब दे सकते हैं।
2: दिल्ली से हमारे साथ बीरबल जुड़ रहे हैं। बीरबल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन,
4: नमस्कार। कोहली साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार बीरबल जी।
4: सर ये पूछना था, जैसे मेडिक्लेम के ऊपर गवर्नमेंट ने GST घटाया था
1: जी,
4: मैंने मेरी अभी पॉलिसी ड्यू हुई है उसकी किस्त भर दी, मैंने पता किया था मेरी बैंक के थ्रू है, उसका ग्रुप पॉलिसी है ये, उसमें उन्होंने GST नहीं घटाई, ये ठीक है क्या जी?
1: देखिए GST जिन जिन पॉलिसीज पे घटाया गया है वो बीरबल जी वो पॉलिसीज की लिस्ट आपके पास है, कोई एक पॉलिसी है जिसपे शायद इनका GST नहीं घटा है या उस पर अभी भी GST चल रहा है, और भी जैसे कार इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, उस पर भी GST है, तो सब चीजों पर नहीं घटाया गया है। मुझे लग रहा है GST 2.0 जब सेप्टेम्बर में आया तो बहुत सारी चीजों पर घटाया गया और बहुत विचार करके, बहुत लंबा उस पर चिंतन चला, बहुत लंबा उस पर बकायदा रिसर्च की गई कि कहां कहां लोगों को राहत देनी है। उम्मीद करते हैं आप जहां दूसरी चीजों पर भी चाहते हैं शायद आने वाले समय में वो घटाया जाए, पर फिलहाल अब जैसा है तो है, आप भी देते हैं हम भी देते हैं
5: जी। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। NR प्रसाद जॉइन्स अस ऑनलाइन नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द

0: करते हैं ये तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कितना प्रयास हो रहा है, हम कितना गीगावाट अन्य स्रोतों से, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल हो गया, परमाणु एनर्जी हो गया, चाहे पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, इनसे हम थर्मल पावर के मुकाबले कितना प्रतिशत बढ़ रहे हैं? क्या आपके हिसाब से सर ये संतोषजनक है प्रगति?
1: जी, आपका पहला सवाल है Q1 रिजल्ट से। Q1 हम अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बोलते हैं अमित। Q1 के रिजल्ट्स थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं क्योंकि इस दौरान में युद्ध चल रहा था और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई थी
2: जी।
1: अब थोड़ी सी क्रूड ऑयल की कीमतें ठंडी हुई हैं तो आने वाला क्वार्टर बेहतर हो सकता है, पर इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की मिक्स रिजल्ट्स आएंगे। कुछ अभी पीछे एक IT कंपनी का रिजल्ट आया जिसमें मिला जुला सा रिजल्ट आया, तो मैं समझता हूँ ये क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। दूसरा, आपने एनर्जी सोर्सेज का पूछा तो अभी तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, मैं किसी एक का उठा लेता हूँ, परमाणु सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी जो होती है। अभी हम लगभग 9 GW हम न्यूक्लियर उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2047 विकसित भारत का जो हमने टारगेट रखा है उसमें 100 GW पहुंचाने का, तो बिल्कुल काम चल रहा है उस पर। बायोगैस हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है अमित। और अब ये जो हाल में संकट हुआ है इसने एक तरह से एक्सेलरेटर दबा दिया है, मुझे लग रहा है जितनी भी संस्थाएं इस पर काम कर रही है उन सबको अब ये लगने लगा है कि इस पर तेजी से काम कर। भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा था पर मुझे लग रहा है हम उस लक्ष्य को और शीघ्र पा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हमारे आपके लाइफ टाइम में ही हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा, ऑल्दो आपको आपको ईश्वर लंबी आयु दे। जी,
2: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। योगेश इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। योगेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: नमस्ते।
1: जी,
3: उसको लेकर के है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इनके थ्रू कैसे अलग है म्यूचुअल फंड से, और जस्ट इन केस अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश होते हैं तो क्या उस केस में ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जितने ज्यादा जा सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इनमें कम गिरावट होती है, और इनका बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है म्यूचुअल फंड की तरह?
1: बहुत अच्छा सवाल है योगेश। रीट और इनविट का इन्होंने पूछा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दो नए प्रोडक्ट्स हैं। अगर हाँ योगेश, अगर कल को मार्केट क्रैश होता है प्रॉपर्टी का तो उसमें फिर नेचुरल बात है इनकी वैल्यूएशन भी फर्क पड़ेगा। आपको पता है ये जो रिटर्न देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये डिविडेंड देते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑफिस बिल्डिंग दी हुई है, उसका किराया आ रहा है, वो किराया सब लोगों में बांट दिया जाता है। कल को कोई बिल्डिंग बेची जाती है, उससे जो कैपिटल गेन होता है उस कैपिटल गेन को भी सब लोगों में बांट दिया जाता है। बिल्कुल, अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस जहां इन्होंने लिया हुआ है अगर वो किसी वजह से क्रैश कर जाते हैं, हालांकि इतनी जल्दी प्रॉपर्टी के प्राइसेस इस तरीके से क्रैश नहीं करते जैसे स्टॉक मार्केट करती है, पर हाँ अगर उसमें करेक्शन आता है तो उसमें जो साझेदार हैं वो, और इसका मैं स्ट्रक्चर आप पूछ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर आगे एक कंपनी होती है SPV उसको कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, और उसके आगे एक ट्रस्ट बनी होती है, उस ट्रस्ट में सब लोग जो है एक तरह से भागीदार बन जाते हैं और उन सब में उसको बांटा जाता है। इसका बेंचमार्क ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आपने पूछा, इसका जो टोटल वैल्यूएशन होता है जो एसेट बेस होता है, क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते, मेरे दिमाग में एक दो बहुत फेमस रीट और इन्वेट के आ रहे पर क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते तो वो बाकायदा उसका जितना उसका टोटल पोर्टफोलियो होता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यूएशन की जाती है। मोटा मोटा आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा आज लोग बड़े लंबे लंबे डिस्कशन वाले पूछ रहे हैं और समय हमारे पास सीमित होता है तो बहुत गागर में सागर भरना पड़ता है।
2: जी, बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसे बड़ा अच्छा मानती हूँ। जुड़ते हैं भिलाई से, भिलाई में हम रवि हमें कॉल कर रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
4: नमस्ते प्राची जी, नमस्ते अनुभव जी और शरद जी को नमस्ते।
1: नमस्कार,
4: मेरा शॉर्ट ही रहेगा सर
1: जी।
4: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गोल्ड और सिल्वर में कभी सबप्राइम क्राइसिस जैसी परिस्थिति आ सकती है क्या?
1: गोल्ड और सिल्वर में कैसी परिस्थिति आ सकती है? सतरंग परिस्थिति
4: में जो सबप्राइम क्राइसिस जो हुआ था,
1: सबप्राइम, अच्छा सबप्राइम से नहीं, गोल्ड और सबप्राइम का रवि जी मतलब ये था 2008 में आई थी ये, और मुझे याद है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर था उस टाइम जिसमें ये क्राइसिस आई थी, हम नाम नहीं लेते हैं तो मैं नाम अवॉइड कर रहा हूं, तो उसकी वजह से नहीं सबप्राइम क्राइसिस इसमें नहीं आ सकती क्योंकि ये वहां आती है जहां पर आप सारा ही उधार पर काम चलता है। सबप्राइम क्राइसिस का मतलब है कि आपने बहुत सारे मॉर्गेज किए, प्रॉपर्टी का मुझे याद है हाउसिंग क्राइसिस थी, लोगों को अपने लोन रीपे करने में दिक्कत आ गई थी। नहीं, इसमें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं उसमें सोने को प्लेज किया जाता है, तो अगर आप लोन वापस नहीं कर पाते हैं तो आपने जो अपना आभूषण रखवाया हुआ है वो उनका हो जाता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और उसका वो 70-80% आपको देते हैं, पूरा तो देते भी नहीं, तो वो करेक्शन ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता इसमें रवि जी कोई सब प्राइम क्राइसिस जैसी कोई कभी सिचुएशन आएगी, ऐसा नजर नहीं आता है।
2: Gautam from Ghaziabad is online with us, but before we take your call, Gautam, let's have a look at how the US markets behaved.

0: call from Bhargav, who's calling us from Delhi. Bhargav, we are running short of time, so I'll ask you to please be very brief.
1: कोहली साहब, ESIA में जो सेल के प्रोसेस दिखाए गए हैं वो हाईएस्ट पे दिखाए गए हैं. सेकेंडली, इट डज नॉट एक्सक्लूड स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकर चार्जेस एंड वेरियस चार्जेस लाइक सेबी चार्जेस, जीएसटी चार्जेस एक्सेट्रा, विच कम्स टू अराउंड 0.8 to 0.9% दिस टू डील करके.
2: भार्गव जी, आपका जो शुरू का पोर्शन था, दैट पोर्शन इज नॉट क्लियर. यू आर टॉकिंग ऑफ यू नो ब्रोकरेज एंड ऑल दैट, प्रोबेबली समथिंग रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी. मैं आपको सलाह दूंगा भार्गव जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट टाइम, बिकॉज द क्वेश्चन वॉजेंट वेरी क्लियर. आई माई हम्बल अपोलॉजीज.
3: दिल्ली से हमारे साथ स्वाभिन जुड़ रहे हैं. स्वाभिन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपने सवाल पूछिए.
4: नमस्कार सर.
2: नमस्कार
4: सर, मैं रेगुलर सुनता हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने आज कॉल किया है
2: जी.
4: और मेरा ही लकी है कि आज कॉल लग गया है.
2: बताइए.
4: सर, मैं जैसे ITR भरता हूँ हर साल, और मेरी सैलरी 12 लाख रुपए की साल का भरता हूँ
2: जी.
4: अब तो सर टैक्स लगता नहीं है
2: जी,
4: तो क्या मुझे भरना जरूरी है सर?
2: देखिए, अगर रिबेट की वजह से, जिसको पहले 87A रिबेट कहते थे, अगर उस वजह से आपका बिलो टैक्स आ रहा है तो आपको भरना चाहिए. जो लोग बिलो एग्जेम्पशन लिमिट हैं, उन लोगों के लिए भरने की माफी है. 4 लाख से अगर आपकी कम है न्यू रिजीम में और 2.5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में, फिर तो आप नहीं भरेंगे. पर अगर रिबेट की वजह से, क्योंकि आपकी 12 लाख है
0: जी,
2: तो आपको भरना चाहिए और उसको बाकायदा नील के रिटर्न आपको फाइल करना चाहिए.
0: Now let's have a look at the commodity prices, the weekly behavior. Crude oil, global crude oil prices rose sharply this week after US President Donald Trump said that the memorandum of understanding with Iran was over and that he did not want to engage with Tehran following renewed hostilities. During the week at the Intercontinental Exchange, ICE, Brent crude September futures surged 5.4% to settle at $76.01 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI crude August futures jumped 3.8% to end at $71.41 per barrel.
3: और शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम कॉल्स पर जितने श्रोताओं जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत
2: It was my pleasure. Thank you so much. धन्यवाद.
0: एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज स्नैप 4-week विनिंग स्ट्रीक. सेंसेक्स एंड निफ्टी डिक्लाइन नियरली 0.3%. इंडिया एंड न्यूजीलैंड एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू 35,000 crore rupees बाय 2030. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप दिस वीक अमिड रिन्यूड हॉस्टिलिटी in West Asia. And that's it in this edition of the program. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में

0: रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
0: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
2: The Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries, Chirag Paswan, said that the achievement is not merely a milestone to celebrate, but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Viksit Bharat. A speedboat carrying Indian tourists capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. According to local media reports, 15 people are feared dead, while 21 people rescued. The boat carrying 32 Indian tourists and 4 crew members overturned about 400 meters off Hon Mai Rut Ngoi Island, triggering a rescue operation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic boat accident involving Indian nationals near Phu Quoc Island, Vietnam. In his message, the Vice President prayed for the swift and complete recovery of those injured. He wished strength and courage to all those affected by this tragic incident. Prime Minister Modi extended condolences to the families who lost their loved ones and hoped for the early recovery of the injured survivors. He said, Indian Embassy and Consulate in Vietnam are providing all possible assistance and are in close contact with the Vietnamese authorities. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Venam, Prithika Pradeep and Chikitha Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. The Indian trio went down 228-232 to Colombia in the final. In the FIFA World Cup, Norway will take on England while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. And that is the end of this news bulletin.

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार अनुभा जी।
2: त्रिगुनायत जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड का 2 दिन का दौरा 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उस देश का पहला आधिकारिक दौरा है। इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। आप इस दौरे के महत्व को कैसे देखते हैं?
3: अनुभा जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में 12 साल के जो हमने देखा है कि जो एक हाई लेवल एंगेजमेंट या विजिट डेफिसिट भारत से होता था देशों के साथ, वो कहीं के भी हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो दूसरे नेबरहुड में हो या लैटिन अमेरिका में रहे हो, ये सब चीजों को काफी अच्छी तरह से ब्रिज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जाते हैं, राष्ट्रपति जी भी जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं जगह जगह। अब बहुत सी जगह हमने देखा है, खासतौर से आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया वगैरह में
2: जी,
3: जो हमारे सबसे बड़े नेबर है, वहां पे 3 दशकों तक कोई विजिट नहीं हुई। तो अब आज देखिए 40 साल के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैं समझता हूँ

0: अपने आप में एक बड़ी बात है। कारण सीधा यह है कि हर एक देश इंपॉर्टेंट होता है, और इंडो पैसिफिक के अंदर में जो उसमें भारत का एक बड़ा स्टेक्स भी है, वहां पर जो ये रिलेशनशिप है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ में हो। तो जैसा आपने देखा कि हमने अभी उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश करी,
1: जी
0: तो भारत है वो जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस है उनके साथ भी अपनी मित्रता काफी बढ़ा रहा है, उनको काफी असिस्टेंस दे रहा है। उसमें भी इन सब देशों का एक बड़ा रोल है क्योंकि वो वहीं पर है, और इंडियन ओशन में इनके साथ में हमारे कोलैबोरेशन जो बढ़ने से, चाहे वो मैरिटाइम में हो, ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो,
1: जी
0: तो ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया कि हमारे रिश्ता जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो जाए, ये एक इस बात को बताता है कि दोनों के लिए ही कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानती हैं कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बात किया तो उन्होंने कहा ये विनिंग पार्टनरशिप है,
1: जी
0: तो दोनों के लिए एक विन विन पार्टनरशिप है।
1: जी आपने अभी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही, तो एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली और वेलिंगटन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें अगले 4 वर्षों में संबंधों को बढ़ाने का रोड मैप शामिल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर उस पर और आप थोड़ा सा जोड़ सकें कि ये अपग्रेड जो हुआ है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, ये इन संबंधों को नया रूप कैसे देगा?
0: देखिए, दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो कि नॉर्मल चलते जाएं, जिसको आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है, कि आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, कभी कभार हम कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा कोऑपरेशन नहीं रहा है या ट्रेड नहीं है, लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उस चीज को तब्दील करते हैं तो उसमें और बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के बारे में
1: जी
0: हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। इसीलिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, चाहे उसमें हमने ट्रेड को 2030 तक डबल करने की बात हो, या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, या जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन
1: जी
0: हो, या किस तरह से हम मैरिटाइम एरिया के अंदर में और ज्यादा अपना कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं आज की डेट में, क्योंकि दुनिया का जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की एक अनसर्टेनिटी है, उसमें वैल्यू सप्लाई चेन्स के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक गुड्स एंड सर्विसेज में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, और दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे। आइए पहले सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: अम्बेसडर त्रिकुणायत, जैसे अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एफटीए पर जो बयान दिया, तो ये जो फैसले हुए हैं आज, जो एक ट्रेड को डबल करने का फैसला और जो हमने एक एफटीए साइन किया है, ये जो फैसले हैं, ये दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे?
0: अगर आप देखें तो मार्च में 2025 में आई थिंक उनके जो ये
1: जी
0: प्रधानमंत्री थे भारत आए थे, और जब वो भारत में आए थे उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था कि भाई हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ। आप सोचिए कि तब से लेकर के अब तक एक रिकॉर्ड टाइम में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, रेटिफिकेशन होने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड में दोनों देश एक दूसरे को एक स्पेशल डिस्पेंसेशन देते हैं, तो ये खाली ट्रेड में नहीं है, ये सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि भारत की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज हो, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, उस सब में भारत का एक काफी नाम है दुनिया के अंदर। हमारे लोग जो है जगह जगह जाते हैं, इसी तरह मोबिलिटी एक एग्रीमेंट होता है उसका पार्ट, कि किस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका भी है कुछ हिस्सा भारत के अंदर, किन चीजों में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, इससे आपको एक आशा बंधी है कि आपका जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड एटलीस्ट गुड्स एंड सर्विसेज में, वो डबल हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में इससे कई तरह का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, और जो डिपेंडेंसीज ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी फ्रजाइल सप्लाई चेन्स हैं, उनको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री के इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण जो नतीजा है वो रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के मैं दृढ़ विश्वास, हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: त्रिगुणायन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैरिटाइम और डिफेंस में जो हमारा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, ये जो सहयोग है इसके लिए क्या नए मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं और ये जो बदलती इंडो पैसिफिक सुरक्षा स्थितियां हैं उसके बीच में इस सहयोग का क्या महत्व है?
0: आपको पता ही है कि दोनों ही मैरिटाइम पावर्स हैं, मैरिटाइम नेशंस हैं और दोनों के सामने बड़े चैलेंज है और चैलेंज आजकल दो तीन तरह का है। एक तो ये कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं मानते हैं और उस बात को पूरी तरह नकारा करते हैं, लेकिन भारत इस बात को मानता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योर इंडो पैसिफिक जो है वो ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या आपका मैरिटाइम कनेक्टिविटी हो, उन सबके लिए बहुत आवश्यक है। और जिन देशों ने ये अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज को साइन किया हुआ है उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत मानता है कि ये ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के रूप में है। तो इसलिए यही न्यूजीलैंड का भी मानना है इस बारे में। एंड देयरफॉर हम लोगों का जो भी कई सारे एमओयू जो हमने साइन किए हैं इसके बीच में, डिफेंस के अंदर में हो, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो, हाइड्रोग्राफी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, मैरिटाइम हेरिटेज के बारे में है, तो ये सारे एमओयू जो है यही बताते हैं कि हमारा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कॉपरेशन है या इंटेलिजेंस कॉपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी तरह से ओशन जो है उनका पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्नेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर में आती हैं और उससे काफी बड़ा फायदा होता है दोनों देशों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की कि भारत और न्यूजीलैंड भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान भी एक ऐसा ही समझौता किया गया था। तो फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई दिल्ली और अन्य देशों के बीच ये इस तरह का जो सहयोग बढ़ रहा है इसे आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ये युद्ध हुए हैं इतने सारे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसके समय पे हमने ये देखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो देशों को एक ऐसा आपस में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई थर्ड कंट्री की करेंसी की आवश्यकता ना हो। और इसी तरह आजकल कोऑपरेशन फिनटेक एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ मीडियम बन गया है और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए दो देश काफी कुछ कर सकते हैं आपस में। और भारत ने जो अपना यूपीआई डेवलप किया है, यूनाइटेड पब्लिक इंटरफेस, उसको आप सोचिए कि कम से कम 25 देशों के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब है कि हम उस देश की करेंसी के साथ डायरेक्टली बिना किसी थर्ड कंट्री की करेंसी के जाए बिना व्यापार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, टूरिज्म में लोगों को बड़ा फायदा होता है, बड़ा आसानी होती है जाने में, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर रिमिट करने में एक क्लिक के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया ने देखा है और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी भारत के यूपीआई को बहुत सराहा है
1: जी।
0: आपने देखा पीछे जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो जब उन्होंने चाय पी और क्यूआर कोड के जरिए वो दिया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरह भारत का यूपीआई ज्यादा से ज्यादा देशों में एक्सेप्ट हो रहा है और ये दोनों के ही भले की बात है।
1: आज न्यूजीलैंड में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत दोनों महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: अम्बेसडर त्रिगुणायत, बात चाहे महिलाओं के योगदान की हो या जिस देश का भी दौरा प्रधानमंत्री करते हैं वहाँ भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनके योगदान की बात करते हैं वो हमेशा, तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं अपने दौरों के दौरान भारतीय मूल के लोगों की उस देश के विकास में, तो ये कितना बड़ा एक मोराल बूस्टर होता है और दो देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने में कितना महत्वपूर्ण है?
0: यहाँ तक हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो 10,000 करीब लोग वहाँ पर थे जिन्होंने उनको सुना और आपने देखा कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गए और यही दर्शाता है। और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंडोनेशिया में आपने देखा कि वहां पे तो उन्होंने कहा कि डीएनए ही है हमारे अंदर उनके राष्ट्रपति ने। तो जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं भारतीय मूल के लोग जो वहां पर हैं या एनआरआईज हैं वो किस तरह वहां के लोगों के साथ मिलजुल करके उनके देश के डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। भारत ये अप्रिशिएट करता है कि हमारे भारतीय लोग लोग या भारत मूल के लोग जो है वो एक लिविंग ब्रिज की तरह हैं दोनों देशों के बीच में। और रही बात जहां तक वुमेन लेड डेवलपमेंट

0: तो आपको याद होगा जब हमने G20 समिट की थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ये नहीं थे, वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के उसकी जगह एक नया एक मंत्र दिया था जिसको कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, मीन्स हर हर क्षेत्र में स्त्रियों को और से और ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और उनको उस तरह का। तो ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है दोनों देशों के बीच में, उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़िया बना सकते हैं, तो उसका मतलब मैं समझता हूँ इस बारे में था। और जहां तक हमारी जो डायस्पोरा है, मैं कहूंगा कि वो तो हर जगह कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक तारीफ होती है और उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उस देश की बढ़त के लिए होता है उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं।
1: कृषि के क्षेत्र में दोनों देश हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी उद्योग में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की जो एक्सपर्टीज है और भारत का एक जो बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार और एग्री टेक टैलेंट है, वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, भले ही हम टेक्नोलॉजी में, आईटी में और सब चीजों में काफी प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन आज तक हम यही कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है,
1: जी
0: ये तो बात सब जानते हैं इस बारे में। और भारत में भी बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो ग्रीन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो येलो रिवोल्यूशन हो या व्हाइट रिवोल्यूशन हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में अगर देखें, उनकी इकोनॉमी में भी डेयरी और एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को, एग्रीटेक जिसको बोलते हैं, उसमें रिसर्च करी है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, ये हमारे बायोलेटरल ट्रेड को बढ़ाने में और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस हैं, उस सब में और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मैकेनिज्म बनाई गई है और इसीलिए ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड मैप के अंदर में, उनको मॉनिटर करने के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे एक बड़ी कमिटी का
1: जी
0: गठन किया गया है दोनों देशों के, जो उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि भाई खाली बोलने के बाद ही नहीं है कि हम चले गए, विजिट खत्म हो गई, लेकिन यह है कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई हर चीज के ऊपर में। और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बनाना एक अच्छी बात है।
1: लोगों के स्तर पर, यानी कि पीपल टू पीपल लेवल पर सहयोग के वो कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आज दोनों देशों ने एक सहमति बनाई है और वो कितने महत्वपूर्ण हैं?
0: देखिए, जहां तक पीपल टू पीपल है तो टूरिज्म एक बड़ी चीज है, तो उसमें अगर फैसिलिटेशन होता है हमारा वीजा के ऊपर में। दूसरा चीज ये है कि भारतीय लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, वो वहां पर जाते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एक दूसरे के जो कल्चर को जा रहे हैं वहां की माओरी जैसे है ट्रेडिंग, उनको बुलाया जाए, उनको यहाँ पर किया जाए, उस तरह बहुत सारे हर एक देश की अपनी अपनी प्रोजेक्शन होती है। तो भारत के जो है जैसे अब योगा है वो वहां बड़ा पॉपुलर है, तो ये सब चीजें होने से जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे कल्चर को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें भी जो हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
1: अम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में

हम अक्सर ना खुशी ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी खुश रहने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती। बस चाहिए होती है एक मनपसंद कप चाय, एक प्यारा सा गीत, थोड़ा सा सुकून और दिल में एक छोटी सी उम्मीद। तो आइए आज की इस शाम को यादगार गीतों के नाम करते हैं। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, आप इसे सुनते हैं और आज की शाम लिए सांस चले आपके साथ हूं मैं नूपुर। नमस्कार। और आज की इस खूबसूरत शाम को मस्ताना बनाने की हमारी थोड़ी सी कोशिश है। अगर 70 के दशक का कोई ऐसा गाना चुनना हो जिसमें डिस्को आने से पहले

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: बिल्कुल आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी और प्रोग्राम सांझ ढले। वैसे शाम का ना एक फायदा तो है, दिन भर की नाराजगी जो ना वो भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। शायद इसीलिए पुराने जमाने में लोग कहते थे कि भाई रात होने से पहले बात कर लेना, समझौता कर लेना और रूठा जो भी हो उसको मना लेना, और अगर मनाना हो तो फिर एक गीत से प्यारा तरीका भला क्या होगा। कोई अगर आज भी आपसे थोड़ा सा खफा है तो उसे मना लीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वैसे एक गीत है मेरी नज़र में जो मुझे भी बहुत पसंद है और इसको सुनकर ना बस ऐसा लगता है कि दिल में इस दिलबर से प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। फिल्म है कारवा, गीत तो आप पहचान ही गए हैं। 1971 में जब ये फिल्म आई थी तो कहते हैं कि उस वर्ष की बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में शामिल हो गई ये फिल्म, और भारत में तो सफलता मिली ही, उसके बाद कुछ सालों बाद चीन में प्रदर्शित हुई तो वहाँ भी बहुत लोकप्रियता पाई इस फिल्म ने, और चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बनकर उभर कर आई। और इस फिल्म की कहानी जो है वो अमेरिकी फिल्म गर्ल ऑन द रन जो कि 1953 में प्रदर्शित हुई उससे प्रेरित मानी जाती है। लेकिन जब ये कहानी भारतीय परिवेश में ढली, संगीत और मनोरंजन के रंग में ढली और कारवां के रूप में आई तो फिर इसने अपनी एक अलग पहचान पाई। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत।

आजकल हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, मूड के हिसाब से गाने चुनते हैं, लेकिन एक जमाना था जनाब जब गाने ही मूड बना देते थे। एक टाइम था जब लास्ट सीन नहीं होता था, लेकिन लोग फिर भी इंतजार करते थे घंटों दिनों गानों के साथ। आज हम स्वाइप करते हैं और उस वक्त लोग एक नज़र में पूरी कहानी पढ़ लिया करते थे। तो आज की शाम का अपडेट ये है कि दिल थोड़ा धीमा चल रहा है और यादें थोड़ा तेज़। अगर शाम का कोई डांस मूड होता तो शायद वो यही गाना होता जो आप तक पहुंच रहा है। इसमें एनर्जी भी है, रोमांस भी है और 70s वाली एक फ्रीडम भी। आर डी बर्मन साहब ने इसे ऐसे कंपोज किया जैसे म्यूजिक नहीं कोई मूवमेंट बना दिया हो। तो आइए इसे सुने, और आज भी जब इसे सुने तो ऐसा लगता है कि लाइफ में ना थोड़ी स्पीड और ऐड कर लेते हैं। अभी शायद हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। फिल्म यादों की बारात, आशा ताई किशोरदा की आवाजें, लेकर हम दीवाना दिल। गीत के बाद ठीक 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने के उपायों पर उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालयों को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गढ़ तक पहल शुरू की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के माध्यम से राजधानी के इतिहास को शोध आधारित और प्रमाणिक रूप में नई पीढ़ी और दुनिया भर के शोधकर्ताओं तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य अभिलेखों पर उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना, अभिलेख प्रबंधन को मजबूत बनाना, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना और ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच को और आसान बनाना है। वहीं पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य दिल्ली के समृद्ध स्थलों और स्मारकों का अध्ययन, संरक्षण और संवर्धन करना है। श्रीमती गुप्ता ने बताया इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए कुल 12 फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें प्रतिमाह 25,000 से 50,000 रुपए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राजधानी में व्यापार और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, नए इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर चर्चा की गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि बैठक में उद्योगों से संबंधित नीतिगत सुधार और राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने यमुना डायलॉग्स पहल के अंतर्गत पहली स्टेक होल्डर परामर्श कार्यशाला आयोजित की। ये पहल दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू द्वारा यमुना के बाढ़ मैदानों के प्रारंभिक दौरों और उसके बाद DDA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों के बाद शुरू की गई। कल आयोजित इस कार्यशाला में DDA के उपाध्यक्ष ने चर्चा का नेतृत्व किया। बैठक में यमुना के बाढ़ मैदानों के अनुरूप विकास की रूपरेखा तैयार करने और पर्यावरण अनुकूल घाटों के निर्माण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। DDA ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से दिल्ली यमुना कॉम्पैक्ट की नींव रखी गई, जो यमुना कॉरिडोर के पुनरुद्धार, संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए साझा रोडमैप के रूप में कार्य करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने सड़कों की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था, नालों की सफाई तथा क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को जन सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रत्येक समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्री सिंह ने जनता दरबार में क्षेत्र से आए नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राजधानी के राजा विहार में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने और समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी के उद्यान मार्ग पर स्थित इस दो मंजिले पुस्तकालय में 35,000 से अधिक पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं और संदर्भ प्रकाशनों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। शोधार्थियों और अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्ययन सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
2: वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के लिए यह पुस्तकालय एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने दिल्ली के सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को इस पुस्तकालय में लाने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने का आग्रह किया।
4: सार्वजनिक पुस्तकालय सब युवाओं के लिए एसेट का काम करेगी। वो बच्चे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक जो माहौल मिलना चाहिए पढ़ाई का, इस लाइब्रेरी के माध्यम से मिल पाएगा।
2: प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली कालका एक्सप्रेस और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के लिए दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकने की सुविधा प्रदान करने का

0: ने लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राजधानी के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी ये सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तर रेलवे ने परिचालन दक्षता, राजस्व अर्जन, टिकट जांच तथा यात्री सेवाओं के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन्स ऑन डिमांड योजना के अंतर्गत 1,887 विशेष रेलगाड़ियों का सफल संचालन किया गया, जिससे लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित हुआ। वहीं प्रतीक्षा सूची की नियमित निगरानी करते हुए विभिन्न रेलगाड़ियों में 4,120 अतिरिक्त कोच लगाए गए, जिससे 28 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर टिकट जांच से अर्जित राजस्व के आधार पर जोनल रैंकिंग में उत्तर रेलवे ने इस वर्ष अप्रैल और मई में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जून में पूरे भारतीय रेल में प्रथम स्थान हासिल कर उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा के दौरान सहयात्रियों से संवाद किया और उनकी दैनिक यात्रा, नागरिक सुविधाओं तथा राजधानी के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यात्रियों के साथ बातचीत से उन्हें उनकी अपेक्षाओं और दैनिक अनुभवों को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रभावी और जन केंद्रित शासन के लिए नागरिकों की बात सुनना और उनकी जरूरतों से जुड़े रहना आवश्यक है। श्री संधू ने कहा कि लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों को समझने से शासन को अधिक उत्तरदायी और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने ब्लू लाइन का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं के उन्नयन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन रीमॉडलिंग, नए एस्केलेटरों की स्थापना, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटों के पुनर्व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने से जुड़े अन्य कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास और उन्नयन कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध निष्पादन और यात्रियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में शुरू की गई ये योजना आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है।
1: वो एक ऐसा दौर था जहां पे देश भर में ही नहीं दुनिया में एक महामारी की परिस्थिति उत्पन्न थी। कोविड के दौर से हम लोग उस वक्त गुजर रहे थे और उस वक्त ये सोच और उस वक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिन्होंने आने वाले समय में भारत भारतीयों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यकीनन वो एक ऐसा दौर था जहां सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत चुनौतियां चल रही थी, जहां हम लोग को इस बात का एहसास हो रहा था कि कल को भविष्य में अगर दोबारा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पे बाधाएं आती हैं, ऐसे में कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बने।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। युवाओं को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली में जन से गढ़ तक नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है।

0: इसका उद्देश्य छात्रों को भारत के संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक कर्तव्यों से परिचित कराना है। एक रिपोर्ट।
1: जन से गण तक एक अनुभवात्मक संग्रहालय आधारित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को भारत की संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक मूल्यों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संग्रहालय की संविधान दीर्घाओं का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नागरिकता और जनभागीदारी जैसे विषयों पर संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के पहले सत्र में दिल्ली के 5 स्कूलों के 21 छात्रों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को सहभागी विद्यालयों द्वारा नामित विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने बताया है कि जो विद्यालय अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के लिए नामित करना चाहते हैं या भविष्य के सत्रों में शामिल होना चाहते हैं, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि निरंतर जन भागीदारी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रयासों के कारण रोहिणी आज दिल्ली के सबसे हरित क्षेत्रों में से एक बन चुका है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से स्वस्थ, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गण तक पहल शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों का असीम भंडार है और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में साउथहैम्पटन में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
3: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले, जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
2: Speedboat carrying Indian tourists capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. According to local media reports, 15 people are feared dead while 21 people were rescued. The boat carrying 32 Indian tourists are four crew members overturned about 400 meters off Hon Mae Root Ngoi Island, triggering a rescue operation. Indian Embassy in Hanoi today said the exact details of the incident

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक बहुत ही प्यारे से सुरमई संसार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूपुर, आप सुन रहे हैं मधुरिमा। कहते हैं जहां शब्द ठहर जाते हैं वहां से राग बोलने लगते हैं। राग जो कभी भोर की पहली किरण बनकर मन को जगाते हैं, तो कभी संध्या की शीतल छांव बनकर आत्मा को सुकून देने चले आते हैं। तो प्रोग्राम में आज हम केवल संगीत नहीं सुनेंगे बल्कि रागों से बात करेंगे। सही कहूँ तो रागों की बात करेंगे। जानेंगे किसी एक राग का स्वभाव, उसकी कहानी, उसके रंग, उसका रस और उसके पीछे छिपी भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत, भारतीय संगीत की विरासत। तो सुरों की इस मनभावन यात्रा का आरंभ करते हैं एक गीत के साथ। फिल्म हसीना मान जाएगी है ये फिल्म, और गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ने, संगीत बनाया कल्याण जी आनंद जी ने। और माना जाता है कि जिस राग को आधार मानकर इस गीत के लिए संगीत की रचना की गई वो राग है चारुकेशी, जिसे प्रचलन में चारुकेशी भी कहते हैं। आइए इस गीत का आनंद लें।

राग चारुकेशी भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही संगीत का एक बहुत ही मधुर और लोकप्रिय राग है। ये राग दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत से ही हिंदुस्तानी संगीत में आया है ऐसा माना जाता है। इसकी प्रकृति भक्तिपूर्ण और करुणामयी होती है। बहुत ही मधुर राग है जिसे तीनों सप्तकों में बिना किसी रोक टोक के गाया जा सकता है। दैवत और निषाद कोमल होने के कारण ये राग उत्तरांग में अनूठी सुंदरता दर्शाता है। चारुकेशी राग का प्रयोग भक्ति संगीत में किया जाता है और ये राग भावपूर्ण होता है और इस राग को ना आमतौर पर आसानी से पहचाना जा सकता है। ये राग चारुकेशी थाट के अंतर्गत ही आता है और इस राग में रे ग म प शुद्ध स्वर लगते हैं, जबकि धैवत यानी ध और निषाद यानी नी कोमल होते हैं। पहुंचाती हूं आप तक लता मंगेशकर जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का एक गीत, चलो सजना जहां तक घटा चले। और इस गीत का जब संगीत बनाया तो इसी राग को आधार मानकर बनाया गया। सजना

इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है, यानी आरोह और अवरोह दोनों में सात सात स्वर लगते हैं। इसमें मध्यम यानी म वादी है और षडज स संवादी स्वर होता है। गाने का समय, कह लीजिए गाने बजाने का उपयुक्त समय, दिन का दूसरा प्रहर यानी दोपहर का समय माना जाता है। और ये राग जो है बॉलीवुड संगीत में काफ़ी लोकप्रिय है। इस पर कई सुपरहिट गाने बने हैं, जैसे फिल्म मिलन का गीत है आज दिल पर कोई जोर चलता नहीं, गीत गाता चल का शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, और फिल्म दस्तक का बैया ना धरो, और हिमालय की गोद में फिल्म से गीत एक तू जो मिला लता जी की आवाज में जो पहुंच रहा है आप तक, लीजिए पहुंच गया। संगीत कल्याण जी, आनंद जी, संगीतकार जोड़ी का।

तो आज के लिए बस इतना ही। राग चारू केशी के मधुर स्वरों ने आशा है आपके मन को भी उसी तरह स्पर्श किया होगा जैसे ये राग वर्षों से संगीत प्रेमियों के हृदय को अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति से स्पर्श करता आया है। करुणा भक्ति और मधुर श्रृंगार के रंगों से सजा ये राग हमें याद दिलाता है कि संगीत केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है। इसी सुरमय अनुभूति के साथ अब आपसे अनुमति चाहूंगी। आप सुन रहे थे आकाशवाणी FM कुल का कार्यक्रम मधुरिमा। फिर मिलेंगे एक नए राग, नई जानकारी और नई संगीतमय प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को सुरों से, संगीत से सजाए रखिएगा। चलते चलते गीत फिल्म दस्तक

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने, हेनरी पैटन और हैरी हेलियोवारा की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की श्रृंखला का अंतिम टी20 मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी और भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक और पीथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। और इस मुकाबले के लिए एक तरफ चेकिया की कैरोलिना मुखोवा हैं जबकि दूसरी तरफ लिंडा नोस्कोवा हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी आज इस खिताबी मुकाबले में भिड़ंत करते हुए नजर आएंगे। वहीं अब से कुछ देर पहले पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा की जोड़ी ने खिताब पुरुष डबल्स का अपने नाम कर लिया है। उन्होंने आज फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के मटे पाविक और अल सर्वाडोर के मार्सेले अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब जीता। इससे पहले कल इटली के यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव ने विंबलडन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है, जहां कल इटली के यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरेव से होगा। कल सेमीफाइनल मुकाबले में ज्वरेव ने ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी के शानदार अभियान पर विराम लगाते हुए उन्हें 7-6, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर लगातार दूसरे विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। डिफेंडिंग चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी 24 साल के सिनर ने

0: 39 साल के जोकोविच को सीधे सेटों में मात देकर एक बार फिर से उनका 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ दिया। अब फाइनल में एक तरफ फ्रेंच ओपन जीत कर आ रहे ज्वेरेव हैं, जिनके पास अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने का मौका होगा, जबकि दूसरी तरफ सिनर लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। सिनर ने विंबलडन 2025 का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हरा कर जीता था। हार के बावजूद भी 23 वर्षीय आर्थर फेरी चर्चाओं का विषय रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। विश्व रैंकिंग में 114वें स्थान से शुरुआत करने वाले फेरी ने दमीर जुमहूर, ओटो विर्तानेन, जीजू बर्ग्स, ग्रिगोर दिमित्रोव और फ्लावियो कोबोली जैसे खिलाड़ियों को हरा कर अंतिम चार तक का सफर तय किया। वो लाइव रैंकिंग में 78 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 36वें रैंकिंग तक पहुंच गए हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि विंबलडन के इस ऐतिहासिक कोर्ट पर कई खिलाड़ियों ने खिताब जीते और कई खिलाड़ियों ने दर्शकों के दिल जीते। ऐसे ही खिलाड़ी रहे आर्थर फेरी, जिन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की, जहां फीफा विश्व कप में नॉर्वे का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला मियामी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से शुरू होगा, जबकि एक अन्य मुकाबले में सुबह 6:30 बजे गत विजेता अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कल स्पेन ने एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।
0: 16 वर्षों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने का स्पेन का इंतजार खत्म हो गया है। स्पेन ने बेल्जियम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सेमीफाइनल का सफर तय किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्हें पहली सफलता मैच के 30वें मिनट में मिली, जब लैमिन यामल के शानदार रन के बाद पेड्रो पोरो ने बॉक्स में लो क्रॉस किया। बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ ने पहले डैनी ओल्मो का शॉट रोक लिया, लेकिन रीबाउंड पर फेवियन रुइस ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि बेल्जियम ने स्पेन की बढ़त को बरकरार नहीं रहने दिया और मैच के 41वें मिनट में टिमोथी कोस्टिगेने के शानदार क्रॉस पर चार्ल्स डी केटलेयर ने हेडर की मदद से गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल के साथ स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन की लगातार 6 क्लीन शीट का सिलसिला भी टूट गया। मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 86वें मिनट में मैदान पर आए स्पेन के मिकेल मेरिनो ने 2 मिनट बाद ही टीम के लिए विजयी गोल दागा और अंतिम चार में टीम का स्लॉट फिक्स कर दिया। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना पिछले विश्व कप की उप विजेता फ्रांस से होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो फीफा भी अब अपने खिताब की दौड़ के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब रुक करते हैं लंदन के लॉर्ड्स मैदान का, जहां पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जी हां, बिल्कुल, 140 साल बाद ये मैदान महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। खेल के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। भारत ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए थे। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, ऐतिहासिक मुकाबला कहा जा सकता है कई मायनों में, इस समय क्या स्थिति है भारतीय टीम की इस मैच में?
2: जी शक्ति, भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम पर इस समय 145 रन की बढ़त के साथ खेल रही है और स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ही क्रीज पर डटे हुए हैं। तो अभी तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। अगर भारत की पहली पारी की बात करें तो उनको शुरुआती झटके जरूर लगे थे, जिनमें शेफाली वर्मा और यष्टिका भाटिया के नाम शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप करी स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने 64 रन की। उसके बाद हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच 89 रन की साझेदारी हुई। और फिर पुछल्ले बल्लेबाजों में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, इन दोनों ने 45 रन जोड़े भारत के लिए और एक मजबूत स्थिति में उनको खड़ा किया। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने 3 विकेट लिए थे। और इसके अलावा जो जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको कोई भी मौका नहीं दिया। क्रांति गौड़ ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट हॉल लिया और सिर्फ एक ही प्लेयर रही एमी जोन्स, जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया इंग्लैंड की तरफ से। कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने 44 रनों का योगदान दिया था। तो इस के चलते इंग्लैंड की टीम जो है वो 170 रन पर सिमट गई थी और भारत को 115 रन की लीड मिली थी।
1: जी बिल्कुल, यानी 115 रन की बढ़त, और जब आप 285 रन बना करके इतनी बढ़त हासिल कर लेते हैं तो वाकई आपका मनोबल ऊंचा होता है और कह सकते हैं कि मैच पर भारतीय टीम की पकड़ मजबूत है। वहीं इंग्लैंड में इस समय पुरुषों का टी20 मुकाबला भी खेला जा रहा है, जहां भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में साउथहैम्पटन में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 14वें ओवर में एक विकेट पर 146 रन बना लिए थे। विशेष जिस तरह की ये श्रृंखला गुजरी है भारत के लिए, क्या कहा जा सकता है, टीम श्रृंखला पहले ही गंवा चुकी है और अब सब कुछ आगे देखने के लिए होगा, जो कि एक दिवसीय श्रृंखला भी है।
2: जी बिल्कुल, भारत के लिए ये श्रृंखला जो है किसी बुरी सपने से कम नहीं रही है। आज हालांकि टीम में दो बड़े बदलाव हमको देखने को मिले हैं कि वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर दिया गया है या उनको आराम दिया गया है, उन्होंने 3 मुकाबलों में 42 रन जोड़े थे। वहीं संजू सैमसन वापसी करते नजर आए और सूर्यांश सेडगे को जगह मिली है वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे। भारत पहले से ही 3-0 से श्रृंखला में पीछे चल रहा है। आज सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए मैदान पर उतरी है भारतीय टीम और इसी के चलते उनको वनडे सीरीज के लिए जो अपना मोमेंटम है वो सेट करने के लिए देखेगी। भारत को इस सीरीज के तुरंत बाद 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम में, दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में और तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेलेगी।
1: जी बिल्कुल, जहां पर टीम की उम्मीद होगी कि जब मैदान पे उतरा जाए तो एक नया जोश, नया जुनून और नया जज्बा हो और टीम के साथ दर्शकों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की वो जोड़ी भी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां दूसरे देश की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में कई भारतीय मूल के खिलाड़ियों को स्थान मिला है।
3: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, ईश सोडी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है।
1: इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि 100 वर्ष पहले भारत की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस दौर में मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था।
3: इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साझेदारी की अपार संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश खेल के क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं। इस दौरान श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत न्यूजीलैंड से रग्बी सीखना चाहता है।
3: भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ।
1: तो एक शानदार टीम है न्यूजीलैंड के पास रग्बी की, जिसका इस विश्व में शायद कोई ही सानी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे न्यूजीलैंड में खेलों के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से बेहद प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेल तकनीक में साथ मिलकर काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं स्पेन के मैड्रिड का, जहां भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तानिपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया।
4: भारत की 17 वर्षीय तीरंदाज प्रीतिका प्रदीप ने शानदार वापसी करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की तीरंदाज हजल बुरून को 145-142 से हराकर मैड्रिड तीरंदाजी विश्व कप में अपने करियर का पहला व्यक्तिगत विश्व कप कांस्य पदक जीता है। उन्होंने इसके साथ ही एक ही दिन में भारत के लिए 2 पदक जीतकर यादगार प्रदर्शन किया। प्रीतिका ने ज्योति सुरेखा वेनम और चिकिता तनिपार्थी के साथ मिलकर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका भूमिका निभाई। भारत ने इस तरह कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का समापन 2 पदकों के साथ किया। प्रतिका को सेमीफाइनल में मलेशिया की फातिन नूर फतेहा मत्साले के खिलाफ 100

0: बयालीस 144 से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक मुकाबला खेलना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत में प्रतिका दबाव में नजर आई। तुर्की की बुरून ने पहले ही दौर में लगातार 3 सटीक 10 लगाकर बढ़त बना ली और प्रतिका 28-30 से पीछे हो गई। दूसरे दौर में उन्होंने 29-28 से बढ़त बनाकर अंतर कम किया और तीसरे दौर में तीनों तीरों पर सटीक निशाना लगाते हुए स्कोर 87-87 से बराबर कर दिया। अंतिम तीर पर उन्हें जीत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 8 अंक की जरूरत थी, लेकिन प्रतिका ने दबाव को मात देते हुए शानदार परफेक्ट 10 लगाया और अपने करियर का पहला विश्व कप कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले सुबह खेले गए महिला कंपाउंड टीम फाइनल में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रतिका प्रदीप और चिकिता तानिपार्थी की भारतीय तिकड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। कोलंबिया ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखते हुए भारत को 238 से हराया, जिससे भारतीय टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब कल रिकर्व वर्ग में भारतीय तीरंदाजों के पास 2 और पदक जीतने का मौका होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: सिर्फ तीरंदाजी के निशानों से ही नहीं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से भी भारत को खुशखबरी मिली है, जहां एथलेटिक्स में सर्वेश कुशारे ने मोनाको डायमंड लीग में अपने डेब्यू ही लीग में ऊंची कूद में 3रा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। अपने डेब्यू में ये कीर्तिमान रचने वाले सर्वेश पहले खिलाड़ी हैं भारतीय, और इसके साथ साथ वो सैलाइट क्लब में भी आ गए हैं, जहां नीरज चोपड़ा और मुरली श्रीशंकर तथा विकास गौड़ा जैसे तमाम खिलाड़ी हैं। और अब चलते चलते एक बार स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लेते हैं, जहाँ T20 में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इस समय 15वें ओवर में 1 विकेट खोकर के 178 रन बना लिया है। वहीं महिला टीम ने इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए हैं। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही, जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
4: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार।

0: हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436907930849155237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़

0: रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे

0: पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहाँ आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो जगन्नाथो चढ़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौंर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है। प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौंरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्री क्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। स्नान का बाद में अंदर जाते हैं हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, बेस करते हैं, रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जो की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पथी पांचन होता है, आम केला पनस सपुरी सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का कोरा जल लवंग जायफल दे के चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का भजन का जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
0: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा, ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाश

0: आणि कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
1: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
2: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है, और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। वैसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियोड़ा में होता है हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
4: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
5: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, रामकेला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
0: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटन अटारी ये हमारे ध्रुव उहे के जन्म है। कुछ दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले आई। वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ। माँ गावे आज

0: या जनकारे राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के गनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गए। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। और ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है। तो सुने पर आते की के वो छोटे से चटाई निकाली, सो कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। आ कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा, मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

गदगद कर देती। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते, मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, उन मन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते, हम लग कई कौन

में टीम बना के हमला भेजी, घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे, ये में अब बड़ा आनंद आते, आज भी वही है, आगे बढ़ मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तब तो दुगुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते।

0: से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐती तेती बहका सकत रहे हूँ, ओमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लागते। हाँ लेका मुला सिखा के दे दो
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं। और नरसिंह ला भेटे हो खंभा भूर बिनत सौरी ला भेटे हो क्यों टल भेटे हो गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिक ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्य में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 संसदीय सदस्य समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कल्पुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता

0: पर बल दिया। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू क्वेक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचालक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इंग्लैंड ने भारत को साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में 258 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 69 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, कृतिका प्रदीप और चिकित्सा तानीपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं कृतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Park Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. In a post on social media, the embassy shared the list of the victims, stating that the names were provided by the Vietnamese authorities. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. 21 people, including 17 passengers and 4 crew members, were rescued and admitted to hospitals. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed a 9-member committee to examine the draft bill of a uniform civil code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagata Roy is one of the members of the committee. लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर एस जानकी

0: fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka. After battling age-related health issues spanning over 6 decades, her career saw her singing nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She collaborated with legendary music directors like Ilayaraja, M.S. Vishwanathan, A.R. Rahman, among others. She was conferred 4 National Film Awards, 33 State Awards and the Padma Bhushan. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for the next 4 to 5 days. These places include Jammu and Kashmir and Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Meanwhile, IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Bihar for tomorrow. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. The third quarterfinal match between Norway and England will be played at Miami Stadium with kickoff scheduled for 2:30 a.m. Indian Standard Time. Later, Argentina will face Switzerland at Kansas City Stadium at 6:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। चीन में तूफान बावी के बढ़ने से 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। विंबलडन टेनिस में कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच महिला एकल का फाइनल लंदन में जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपने साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि ऑकलैंड से विलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींस

0: टाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और वहां की सरकार के सदस्यों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत न्यूजीलैंड संबंधों के प्रति व्यापक समर्थन का प्रतीक है। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
1: दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को अमरीकी प्रशांत द्वीपों से टकराने और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद से ये तूफान काफी कमजोर हो गया है। हालांकि तूफान की गति पहले ही कम हो गई, लेकिन भारी बारिश और नमी के कारण यह अभी भी गंभीर खतरा बना हुआ है। चीन के मौसम विभाग ने तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्वी स्पेन के अंडालुसिया क्षेत्र में भीषण जंगल की आग को काबू में करने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी और सैन्य कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। यह आग हाल के दशकों में देश की सबसे घातक जंगल की आग में से एक बन गई है। स्पेन के अधिकारियों के अनुसार बेदार गांव के आसपास आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया है, जहां 12 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। 23 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। अल्मेरिया के लॉस गरला डॉस क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मोस्तवा खामनेई ने अपने पिता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि देश की जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट।
2: आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के हमलों में हुई थी। मुश्तबा खामेनेई ने दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ को ऐतिहासिक बताया। आयतुल्ला अली खामेनेई के सुपुर्दे खाक के मौके पर जारी संदेश में मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि हत्या के लिए जिम्मेदार लोग सजा से बच नहीं पाएंगे। इस बीच सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की खुली मांगे उठने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ईरान को धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से सार्वजनिक बयान की मांग की कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है और इस अहम रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर अब कोई हमला नहीं किया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा

आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और एल साल्वेडोर के मार्सिलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम लिया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना, कहा दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। चीन में तूफान बावी के बढ़ने से 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का। और हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। जिंदगी भी पानी की तरह है, कभी शांत कभी दरिया, कभी मचलती लहरें और कभी एहसासात की ऐसी रवानी जो दिल को छू जाए। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ आज के सफर का हम आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और वो नगमा है 1972 में आई फिल्म शोर से। इस गीत को लिखा है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और इसका बेहद खूबसूरत संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। तो आइए हर सिंगार के इस बहुत ही खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में।

लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म शोर से, और यह फिल्म आई थी 1972 में। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगा

हर्ट्ज पर महफिल है हर सिंगार की, यानी मोहब्बत की, फूलों की वो महफिल जिसमें हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और बेहद खूबसूरत सदाबहार रोमांटिक गीतों के साथ हम हाजिर होते हैं। कहते हैं मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो दिल की धड़कनों को भी एक नई रवानी देता है। कभी किसी की मुस्कान में बस जाती है तो कभी किसी के साथ निभाए गए वादों में अपनी खुशबू छोड़ जाती है। और जब प्यार को प्यार की ऐसी ही दास्तान सुरों में ढल जाए तो वो गीत बरसों बाद भी दिल के बेहद करीब रहता है। जी हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ उस यादगार फिल्म की जिसने अपने रोमांस, संगीत और दिलकश अंदाज से सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। और वो फिल्म थी 1971 में निर्देशक नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी ये फिल्म कारवां। बड़े पर्दे पर आई थी जो बेहद मशहूर रही। निर्माता थे उनके भाई ताहिर हुसैन साहब और पर्दे पर नजर आई सदाबहार जोड़ी जितेंद्र और आशा पारेख की, जिनकी अदाकारी ने इस फिल्म को और भी खास बना दिया। फिल्म का संगीत अपने आप में एक बेहद ही नायाब तोहफा था। दोनों में जादू घोला आर डी बर्मन साहब ने और बेहद खूबसूरत अल्फाज से इसके गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों से इसे अमर बना दिया मोहम्मद रफ़ी साहब और हम सब की प्यारी लता जी ने। भारत में सुपरहिट रही कारवां की लोकप्रियता सरहदों के पार भी पहुंची। वर्ष 1979 में जब यह फिल्म चीन में प्रदर्शित हुई तो वहां भी इसने कामयाबी का नया इतिहास रच दिया और करोड़ों दर्शकों का प्यार हासिल किया। आज भी इसे भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और यादगार फिल्मों में से एक माना जाता है। तो आइए उसे फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में।

कितना प्यारा वादा। कारवां फिल्म का ये नगमा लता जी और रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में मैं हूँ आपके साथ फिरोज़। मोहब्बत की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। कभी कोई चेहरा अचानक दिल में उतर जाता है तो कभी कोई अनजान सी मुलाकात जिंदगी की सबसे हसीन दास्तान बन जाती है। शायद इसी एहसास को शब्दों और सुरों में पिरोया गया था फिल्म अनजाना में। साल 1969 में एक फिल्म आई थी अनजाना। ये बेहद खूबसूरत फिल्म थी जिसके निर्माता और निर्देशक थे मोहन कुमार साहब। ये रोमांटिक फिल्म बड़े पर्दे पर बहुत ही कमाल की थी और बहुत ही मशहूर भी हुई थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार और बबीता की खूबसूरत जोड़ी ने मोहब्बत के जज्बात को बड़ी सादगी और खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। वहीं प्राण, प्रेम चोपड़ा और निरुपा रॉय जैसे दमदार कलाकारों ने कहानी को और भी असरदार बना दिया। और जब बात हो इसके संगीत की तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का नाम अपने आप ही एक खूबसूरत एहसास जगा देता है। उनकी मधुर धुनों ने इस फिल्म के गीतों को ऐसा रंग दिया कि वे आज भी सुनने वालों के दिलों में उसी ताजगी के साथ बसे हुए हैं। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह नगमा था फिल्म अनजाना से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते जाने पहचाने होते हुए भी अनजाने से लगते हैं और कुछ निगाहें पहली ही मुलाकात में दिल पर ऐसी दस्तक देती है कि उनकी कशिश उम्र भर साथ रहती है। मोहब्बत का भी यही खूबसूरत एहसास समेटे हुए आई थी साल 1971 की एक यादगार फिल्म जाने अनजाने। इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंता साहब और पर्दे पर नजर आए थे सदाबहार अभिनेता शमी कपूर, विनोद खन्ना और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा लीना चंदावरकर, जिनकी अदाकारी ने इस कहानी में जज्बात और एहसास को बहुत ही खूबसूरत एक नाम भी दिया था। फिल्म के गीतों को अपने खूबसूरत अल्फाजों से सजाया हसरत जयपुरी साहब ने, जबकि सुरों को दिल में बसाने वाला संगीत दिया शंकर जयकिशन साहब ने। यही वजह है कि इस फिल्म का संगीत आज भी सुनने वालों के दिलों में ताजगी और मोहब्बत की खुशबू बिखेर देता है। तो आइए दिल को कुछ पल के लिए सुकून देते हैं, यादों की महफिल सजाते हैं और उन सदाबहार गीतों की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन हसीन लम्हों में खो जाते हैं जहाँ किसी की नीली नीली आंखें सिर्फ एक नज़र में दिल का करार चुरा लेती है। और यह नगमा है जाने अनजाने से रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

फिल्म जाने अनजाने के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए हर सिंगार से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट, और उसके बाद 11:40 पर गीत मेरे मनमीत को लेकर मैं आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल में से थे। नाव में

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we will take calls from you, our listeners, on market-related queries. But listeners, do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, aaj shanivar hai aur har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hume call kijiye 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन श्रोताओं, याद रखें कि किसी खास स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. बहरहाल, आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, थैंक यू सो मच अनुभा, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं और आपसे बातचीत भी करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices snap 4-week winning streak. Sensex and Nifty decline nearly 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jumped this week amid renewed hostilities in West Asia.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार चार हफ्तों की बढ़त के बाद इस सप्ताह लुढ़के. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.3% की गिरावट आई. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में हर साल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. और पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ते तनाव के कारण इस सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल आया.
0: And before we begin the program and take your calls, a very important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And over to Prachi for the top story of the day.
1: Top story lenge Anubha, magar usse pehle Uttar Pradesh se हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं. विवेक जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: मार्केट मंत्रा टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार.
2: नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं जो इनकम टैक्स का AIS फॉर्म होता है
2: जी,
3: मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है,

0: जब मैंने AIS फॉर्म डाउनलोड किया है
1: जी,
0: तो उसमें मुझे सर, चूंकि मैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ
1: जी,
0: और जो भी मुझे एरियर वगैरह बीच में पेड होता है वो मैं कम अमाउंट लमसम भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ
1: जी।
0: तो लमसम के लिए मैंने सर जो फंड सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें मैंने STP के माध्यम से लिक्विड फंड में डाला हुआ था और STP के माध्यम से मैं अपने SIP में म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करता रहता हूँ।
1: ओके,
0: तो सर जो AIS में है उसको मुझे किस प्रकार इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, मुझे AIS से समझ नहीं आ पा रहा है, उसमें ट्रांजेक्शन आ रही हैं 15 से 20 ट्रांजेक्शन है, तो उसको मैं कैसे समझ के उसको फाइल करूँ सर, क्या गाइड?
1: चलिए विवेक और अनुभव और प्राची, क्योंकि टैक्स फाइलिंग सीजन चल रहा है, 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, तो मुझे लगा बहुत सारे श्रोताओं को, और बड़ी तारीफ की बात यह है कि विवेक उसको खुद करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के। AIS का मैंने एक नया नाम दिया है उसको, वैसे तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, मैंने इसका नाम दिया आईना इसे समझिए, क्योंकि ये आपको आपके साल भर के ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरी एक लेखा जोखा सामने दिखा देता है। तो विवेक, जो SIP म्यूचुअल फंड्स में आपने किए हुए हैं उनको अगर आप उनसे सहमत हैं, देखिए AIS केवल एक ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि आपने जो एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, को बड़ा खर्च किया है, प्रॉपर्टी ली है, शेयर्स लिए हैं, कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, तो AIS आपको एक दिशा दिखाने का है। तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि अगर AIS में जो एंट्रीज आ रही हैं आपके SIP की, अगर वो मैच कर रही हैं आपके असली निवेश के साथ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड से कोई मुनाफा हुआ है, डिविडेंड आया है, या आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, उसी को आपने अपने रिटर्न में दिखाना है, आयकर विवरणी में, अगर IFS जो स्केड्यूल होता है इनकम अदर सोर्सेज वहां दिखा सकते हैं, अगर कोई आपको डिविडेंड आया है, कैपिटल गेन आया है, तो एक स्केड्यूल CG होता है उसमें आप दिखा सकते हैं। AIS सिर्फ आप रिकंसाइल कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो असल में किया है और AIS के बीच में कोई फर्क है, तो उसमें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक फीडबैक का ऑप्शन होता है, उस फीडबैक के माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मेरा नहीं, अक्सर होता है किसी और के ट्रांजेक्शन आपके AIS में आने लग जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको देख लीजिए कि आपके असली ट्रांजेक्शन से वो मैच कर रहा है कि नहीं, बाकी आपने जो आयकर रिटर्न में दिखाना है वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड दिखाना है, या उस म्यूचुअल फंड से अगर कैपिटल गेन हुआ है तो दिखाना
2: जी। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। श्रीकांत हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। श्रीकांत, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
3: मुझे कहना है कि जिस तरह 4 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी उसके कारण टू के दाम $70 से बढ़ के 126 तक पहुंचे
1: जी,
3: हमारी सरकार ने वहां पे 13-14 रुपया जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, अब वो वापस 126 से 70 पे आ गया
1: जी।
3: लेकिन वो वहीं पड़ा है। उसी तरह से जिस तरह 4 साल पहले जब रशिया की अटैक हुई थी तो उसी समय भी $70 पे रेट था और बढ़ के 140 हुआ, तो हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 100 कर दिया पेट्रोल को, और फिर जब जब दाम घड़े क्रूड के तब तब आपने उस पर टैक्स लगा के हमेशा उसको बराबर रखा। तो अगर भाई साहब यही हालत रही तो ना तो इन्फ्लेशन कम होने का है और ना जनता की दुविधा खत्म।
1: श्रीकांत जी देखिए, मैं थोड़ा इसके पीछे का आपको गणित बता देता हूँ। आप जो कह रहे हैं हम उसका सम्मान करते हैं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं
2: जी।
1: एक तो पहले 76 दिन कीमतें नहीं बढ़ी थी, तो पहले 76 दिन में बहुत बड़ा 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा था। दूसरा इसमें यह भी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये दाम घटेंगे नहीं, अगर ये $70, अब देखिए ना, हम जब बल्कि मैं भी सोच रहा था कि अब तो $71-72 हो गए तो शायद बढ़े, उसी टाइम फिर से लड़ाई शुरू हो गई, फिर ये 2 दिन पहले $80 के आसपास पहुंच गया, $79 के आसपास पहुंच गया। तो पेट्रोलियम मंत्री महोदय जो हैं हरदीप पुरी जी, उनका बयान आया पीछे कि हम 2-3 महीने देख रहे हैं, ये अगर टिक जाते हैं वहां पर तो हम घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे लोगों को। और अभी भी श्रीकांत जी मैं बताना चाहूंगा कि डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी है, पेट्रोल में तो आ गया था पर डीजल में अभी भी अंडर रिकवरी का मतलब है उनको प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तो जैसे ही घाटे की भरपाई होगी करेंगे, हम भी उम्मीद रखते हैं कि करेंगे, और सरकार बकायदा इस पे जो आप बात कह रहे हैं, आपके जो भावनाएं हैं वो सम्माननीय हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है, और उसको उसको जब उचित समय होता है उसके पीछे गणित होता है, तो उस गणित को ध्यान में रख के, बाकी ये बात सच है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पहली बात तो 13-14 नहीं 7.5-8 रुपए बढ़ाए गए, 13-14 तो खैर नहीं बढ़े थे, पर श्रीकांत जी को मेरे ख्याल जो उसके कारण महंगाई है शायद वो पिंच कर रही होगी। मुझे उम्मीद है श्रीकांत जी, अगर ये कीमतें $80 से नीचे रही और 1-2 महीने तक, तो ये जरूर घटाए जाएंगे।
4: कोलकाता से।

0: हमारे साथ एलपी कोठारी जुड़ रहे हैं। कोठारी जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। कोहली जी को नमस्कार।
2: नमस्कार कोठारी जी।
1: कोहली जी, जैसे मैं तो इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये AAS और TIS की फिगर्स जो है 95% तक ठीक है सब
2: जी,
1: लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिनमें उनकी फिगर कंफ्यूजिंग आ रही है
2: जी,
1: और वो मिल रही है। जो एक्चुअल फिगर मेरी है, हमारे क्लाइंट्स की है, उससे वो अलग आ रही है
2: जी।
1: और इसमें से भी जैसे शेयर सेल्स, सिक्योरिटी सेल्स वगैरह की फिगर है, तो सर अब मैं उनको या इस TIS को फॉलो करें, या हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता है कि हम उनको इनको ये कह सके कि भाई ये फिगर जो है वो सही नहीं है
2: जी। बहुत तो, अच्छा सवाल आपने पूछा है कोठारी साहब। आपसे पहले भी एक दर्शक इसी से मिलते जुलती बात पूछ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि AIS जो है एक सूचक है, एक इन्फॉर्मेशन जो कुलेट होकर आती है उसको प्रेजेंट करने का आपके लिए एक रिकंसिलिएशन दिया जाता है। अगर आप उससे सहमत नहीं है कोठारी साहब, आपको लग रहा है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं असल में वो ट्रांजैक्शंस आपके नहीं, ऐसा भी अक्सर अनुभव प्राची देखा गया कि जैसे पैन नंबर गलत डाल दिया तो किसी और का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, किसी और के शेयर्स हमारे AIS में दिखते हैं। तो वहां पर कोठारी साहब नीचे फीडबैक का ऑप्शन है, आप उसमें फीडबैक डालिए। अगर आपको लग रहा है कुछ ट्रांजैक्शन आपके असली ट्रांजैक्शन से रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें फीडबैक डालिए कि ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, उसको उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं, आपकी रिटर्न अगर आपके ट्रांजैक्शंस पर एक्यूरेटली बनाई गई है तो AIS में थोड़ा इधर उधर भी होता है, तो आप उसका बाद में जवाब दे सकते हैं।
0: दिल्ली से हमारे साथ बीरबल जुड़ रहे हैं। बीरबल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
3: नमस्कार कोहली साहब को। नमस्कार।
2: नमस्कार बीरबल जी।
3: सर ये पूछना था, जैसे मेडिक्लेम के ऊपर गवर्नमेंट ने GST घटाया था
2: जी,
3: मैंने मेरी अभी पॉलिसी ड्यू हुई है, उसकी किस्त भर दी, मैंने पता किया था मेरी बैंक के थ्रू है, उसको ग्रुप पॉलिसी है ये, उसमें उन्होंने GST नहीं घटाई, ये ठीक है क्या जी?
2: देखिए GST जिन पॉलिसीज पे घटाया गया है वो बीरबल जी, वो पॉलिसीज की लिस्ट आपके पास है। कोई एक पॉलिसी है जिसपे शायद इनका GST नहीं घटा है या उस पर अभी भी GST चल रहा है, और भी जैसे कार इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, उस पर भी GST है, तो सब चीजों पे नहीं घटाया गया है। मुझे लग रहा है GST 2.0 जब सितंबर में आया तो बहुत सारी चीजों पर घटाया गया, और बहुत विचार करके, बहुत लंबा उस पर चिंतन चला, बहुत लंबा उस पर बाकायदा रिसर्च की गई कि कहाँ कहाँ लोगों को राहत देनी है। उम्मीद करते हैं आप जहां दूसरी चीजों पर भी चाहते हैं शायद आने वाले समय में वो घटाया जाए, पर फिलहाल अब जैसा है तो है, आप भी देते हैं हम भी देते हैं
4: जी। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। NR प्रसाद जॉइंस अस ऑनलाइन नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन लाइन। मिस्टर प्रसाद, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Mr. Rohatki. Hello, Ms. Prachi. Good evening, Sharadji.
2: Good evening, Mr. Prasad.
5: Two questions, Sharadji.
2: Yes.
5: My first question is, about 3-4 weeks back, there was an analysis from the leading company.
2: Yeah.
5: India has fallen down to the 6th position in the top 10 market in the world. It has gone behind Taiwan and now it is in the 6th place.
2: Okay.
5: This is because of the geopolitical and war in India.
2: Yeah.
5: But it has fallen down to 6th position. How do you see now Indian market versus the foreign stock market?
2: Okay.
5: My second question is, SEBI has revived the buyback schemes from 1st of August.
2: Yeah.
5: Now, what will be the features for this? Personally, when I sell this thing on a buyback scheme,
2: yeah,
5: how the capital gains are applicable to me? Thank you. These are my two questions.
2: All right, Mr. Prasad, your first question is that you know the market cap, you know, is what Mr. Prasad is referring to, Anubha mm-hmm. and Prachi. Yes, market capitalization, you know, the way it is calculated, number of shares floated by the market price of the shares. So I think this is a very fluctuating piece of data. And right, because Taiwan and all that, because they are into semiconductors and so on. Yeah. So our market, because of the geopolitical reasons and because of crude oil, because our country was heavily exposed to crude oil shocks. 87-88% of our total crude, yes, is imported. So obviously we were quite impacted vis-a-vis crude oil. So that was the reason our markets reacted. We have now recovered from that point. We had almost gone down to 23,000. I'm talking of Nifty. We are now well above 24,000. And global markets, you know, each zone in the geography has its own fundamentals. Sometimes we find the Kospi reacting. Sometimes we find the Nikkei reacting. Sometimes we find the Hansen. In fact, Hansen, the capitalization in Hong Kong market went 1% ahead of us, because Hong Kong is a tiny country.

0: Sometimes we find FTSE, CAC, DAX, Dow, S&P, NASDAQ. So they keep reacting, you know. So I think this cannot be taken as a parameter, Mr. Prasad, more importantly, to measure the, the performance of the company. I'm sure we will recover. Your second is about the buyback. Yes, buyback under the new rules applicable from 1st April is that buybacks will now be treated as capital gains. Earlier, if you remember, they were treated as dividends. And the capital used to be treated in the capital loss, but now they'll be treated as capital gain because they are not, because of the taxability change which has been made in the budget, Mr. Prasad. I hope both the points are clear and I remain very optimistic on the markets and our markets will recover. It's just a matter of time before that happens.
1: Sharadji and Prachi, we have our next caller online with us, but before we take the call from Amit Jha from Delhi, Prachi, why don't you tell us how the markets behaved this week?
2: Bilkul. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह लगभग 0.3% की गिरावट आई. इससे लगातार चार हफ्तों की बढ़त का सिलसिला टूटा. पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर इस सप्ताह बाजार पर साफ साफ दिखाई दिया. हालांकि विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार लिवाली ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया. साथ ही कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे ने बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डाला और इस कारण सप्ताह के दूसरे भाग में बाजार को रिकवरी में मदद मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस सप्ताह 195 अंक गिरकर 77,569 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक लुढ़ककर 24,207 पर आ गया. इस सप्ताह विस्तृत शेयर बाजार ने प्रमुख शेयर सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मिड कैप 100 में 1.3% की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.2% की तेजी आई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.32 रुपए पर बंद हुआ. और जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से अमित झा. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी, नमस्कार.
3: सर नमस्कार.
0: नमस्कार अमित जी.
3: मैं ये पूछा था सर, जैसे कि सभी अभी पश्चिम एशिया में जो हालात थे 2-3 महीने पिछले में सर
0: जी.
3: तो कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट 26-27 के क्वार्टर में कैसे रहने की उम्मीद, क्योंकि प्रभावित तो हुई होगी उनकी बिक्री या कुछ भी इनकम वगैरह. और दूसरा सर प्रश्न ये है सर कि अभी भी हम कह तो रहे हैं कि हम ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे स्रोतों पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जिससे हमें जो विदेशी मुद्रा जाती है, जैसे कि हम ऑयल एंड गैस का और उर्वरक का ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कितना प्रयास हो रहा है, हम कितना गीगावाट अन्य स्रोतों से, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल हो गया, परमाणु एनर्जी हो गया, चाहे पवन ऊर्जा विंड एनर्जी है, इनसे हम थर्मल पावर के मुकाबले कितना प्रतिशत बढ़ रहे हैं, क्या आपके हिसाब से सर ये संतोषजनक है प्रगति? धन्यवाद
0: जी. आपका पहला सवाल है Q1 रिजल्ट्स से. Q1 हम अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बोलते हैं अमित. Q1 के रिजल्ट्स थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान में युद्ध चल रहा था और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई थी
2: जी.
0: अब थोड़ी सी क्रूड ऑयल की कीमतें ठंडी हुई हैं, तो आने वाला क्वार्टर बेहतर हो सकता है. पर इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स की मिक्स रिजल्ट्स आएंगे. कुछ अभी पीछे एक IT कंपनी का रिजल्ट आया जिसमें मिला जुला सा रिजल्ट आया, तो मैं समझता हूँ ये क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा. दूसरा, आपने एनर्जी सोर्सेज का पूछा, तो आप ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा. मैं किसी एक का उठा लेता हूँ, परमाणु सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी जो होती है. अभी हम लगभग 9 गीगावाट हम न्यूक्लियर उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य है कि 2047 विकसित भारत का जो हमने टारगेट रखा है उसमें 100 गीगावाट पहुंचाने का. तो बिल्कुल काम चल रहा है उस पर. बायोगैस हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है अमित. और अब ये जो हाल में संकट हुआ है, इसने एक तरह से एक्सेलरेटर दबा दिया है. मुझे लग रहा है जितनी भी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं उन सबको अब ये लगने लगा है कि इस पे तेजी से काम कर. भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा था, पर मुझे लग रहा है हम उस लक्ष्य को और शीघ्र पा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं. हमारे आपके लाइफ टाइम में ही हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा. ऑल्दो आपको ईश्वर लंबी आयु दे जी.
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. योगेश इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. योगेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्ते. सवाल है मेरे को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट जिसको बोलते हैं
0: जी,
4: उसको लेकर के है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इनके थ्रू कैसे अलग है म्यूचुअल फंड से, और जस्ट इन केस अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश होते हैं तो क्या उस केस में ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जितने ज्यादा जा सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इनमें कम गिरावट होती है, और इनका बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है म्यूचुअल फंड की तरह?

0: तो उसमें जो साझेदार हैं वो, और इसका मैं स्ट्रक्चर आप पूछ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर आगे एक एक कंपनी होती है, एसपीवी उसको कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, और उसके आगे एक ट्रस्ट बनी होती है। उस ट्रस्ट में सब लोग जो है एक तरह से भागीदार बन जाते हैं और उन सब में उसको बांटा जाता है। इसका बेंचमार्क ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा आपने पूछा, इसका जो टोटल वैल्यूएशन होता है, जो एसेट बेस होता है, क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते, मेरे दिमाग में एक दो बहुत फेमस रीट और इन्वेट के आ रहे, पर क्योंकि हम यहाँ नाम नहीं लेते
1: जी,
0: तो वो बाकायदा उसका जितना उसका टोटल पोर्टफोलियो होता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यूएशन की जाती है, मोटा मोटा आप इसको समझ सकते। थोड़ा सा आज आज लोग बड़े लंबे लंबे डिस्कशन वाले पूछ रहे हैं और समय हमारे पास सीमित होता है, तो बहुत गागर में सागर भरना पड़ता है
1: जी। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसे बड़ा अच्छा मानती हूँ। जुड़ते हैं भिलाई से, भिलाई में हम रवि हमें कॉल कर रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्ते प्राची जी, नमस्ते अनुभव जी और शरद जी को नमस्ते।
0: नमस्कार,
2: मेरा शॉर्ट ही रहेगा सर
0: जी।
2: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गोल्ड और सिल्वर में कभी सबप्राइम क्राइसिस जैसी परिस्थिति आ सकती है क्या?
0: गोल्ड और सिल्वर में कैसी परिस्थिति आ सकती है? सतरंग परिस्थिति
2: में जो सब
0: प्राइम
2: क्राइसिस हुआ था,
0: सब प्राइम, अच्छा सब प्राइम से नहीं, गोल्ड और सब प्राइम का रवि जी मतलब ये था, 2008 में आई थी ये, और मुझे याद है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर था उस टाइम जिसमें ये क्राइसिस आई थी। हम नाम नहीं लेते हैं तो मैं नाम अवॉइड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से नहीं, सब प्राइम क्राइसिस इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि ये वहां आती है जहां पर आप सारा ही उधार पर काम चलता है। सब प्राइम क्राइसिस का मतलब है कि आपने बहुत सारे मॉर्गेज किए, प्रॉपर्टी का मुझे याद है हाउसिंग क्राइसिस थी, लोगों को अपने लोन रीपे करने में दिक्कत आ गई थी। नहीं, इसमें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं उसमें सोने को प्लेज किया जाता है, तो अगर आप लोन वापस नहीं कर पाते हैं तो आपने जो अपना आभूषण रखवाया हुआ है वो उनका हो जाता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। और उसका वो 70-80% आपको देते हैं, पूरा तो देते भी नहीं, तो वो करेक्शन ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता इसमें रवि जी कोई सब प्राइम क्राइसिस जैसी कोई कभी सिचुएशन आएगी, ऐसा नजर नहीं आता है।
3: Gautam from Ghaziabad is online with us, but before we take your call, Gautam, let's have a look at how the US markets behaved during the week and yesterday. Wall Street ended on a positive note yesterday. Among the major indices, the S&P 500 gained 0.4% and the Nasdaq Composite as well as the Dow Jones Industrial Average rose by 0.3%. For the week, the Nasdaq climbed 1.7%. The S&P 500 increased by 1.2%, while the Dow fell by 0.5%. Meanwhile, South Korean chipmaker giant, which made its U.S. debut on Friday, opened 14% higher. Looking ahead, investors will focus on the quarterly earnings season, which kicks off next week, as well as developments in negotiations in West Asia. And now, Gautam, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: Thank you. Good evening, Market Mantra team. I have a small question for the expert.
0: Yeah.
4: This is a stock which has been held for 5 years, which goes through a split.
0: Yeah.
4: And when this stock is sold, say within a year, what kind of capital gains will it attract?
0: All right, Gautam, if there's a stock split, you see, when you calculate capital gain, you from the selling price, you subtract the cost of the stock. So when it goes for a split, let's say a 10 rupee share is split into 5 rupees each. So you'll obviously subtract 5 rupees from that, because now that the cost has been split into two portions. Suppose a 10 rupee share, which has been split into two, you end up selling for 50 rupees. So in 50 rupees, if you sell one part of the share, the cost of acquisition will be 5 rupees, which is two portions. So 50 minus 5, 45, of course, will be the. And on that, you pay, if it's long-term capital gain, you pay 12.5%. Otherwise, you pay on short-term capital gain. Yes.
1: और कोलकाता से हमारे साथ था अतनु साहा जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। एंड थैंक टू एवरीबॉडी एंड थैंक टू आवर ऑल इंडिया रेडियो। सर, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दिस इज आउट ऑफ एल नीनो सिचुएशन राइट नाउ इज एटलीस्ट व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन वी हैव। रेन इज गोइंग ऑन एवरीवेयर एटलीस्ट। So what is your opinion about matter of, because India is based on agricultural sector, at least till now, till important as far as PPP is concerned. Sir, another point is that do we accept a credit loan towards in this regard, related with, sir, about MSME and agricultural sector credit from bank or another substitute area? Thank you very much, sir.
0: All right, Mr. Tanu, the second part of your question wasn't very clear, although I could get a gist of it. I think El Nino impact is being felt around the world, and India, you know, if you see the IMD forecast this year, yeah, it is said that we may be

0: deficient in terms of monsoons by about 10% or so, although this the estimate keeps changing as we progress. So far, there's been fairly okay rain and a little bit of deficiency somewhere, a little bit of excess somewhere. That's always the case with monsoon. Yes, we are, because we are primarily an agri-driven economy. So any impact of weather does have an impact on our economy as well. And I think the second part of question is also related to that. What will be the impact on MSMEs? Yes, the agri-based industries and MSMEs also get impacted because the agriculture produce is impacted. And by the way, El Nino is not necessarily about shortage of rain. El Nino makes things very unpredictable. Yes. You could have very big rain, very excessive rain. You could have absolute deficient rain. You could have unevenly distributed rain. You could have a regionally imbalanced rain. So El Nino can have, can take many forms and shapes. We are just at the about the beginning of the monsoon season. Let's wait till the end of August to make a final conclusion, and then your answer will be more comprehensive.
1: जी श्रोताओं, आइए आगे बढ़ते हैं. अन्य खबरों में, भारत और न्यूजीलैंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद आज अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्तु और सेवा में अपने सालाना द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका ये दौरा आपसी संबंधों को मजबूत करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए संबंधों को नई गति मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के चलते किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे. इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया. इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे.
3: Right, let's take the next call from Bhargav. Hello. Who's calling us from Delhi. Bhargav, we are running short of time, so I'll ask you to please be very brief.
4: Jain sir, secondly, it does not exclude stamp duty, broker charges and various charges like SEBI charges, GST charges, etc., which comes to around 0.8 to 0.9% this.
0: अब भार्गव जी, आपका जो शुरू का पोर्शन था, दैट पोर्शन इज नॉट क्लियर. यू आर टॉकिंग ऑफ यू नो ब्रोकरेज एंड ऑल दैट, प्रोबेबली समथिंग रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी. मैं आपको सलाह दूंगा भार्गव जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट टाइम, बिकॉज द क्वेश्चन वॉजंट वेरी क्लियर. आई माई हम्बल अपोलॉजीज.
1: दिल्ली से हमारे साथ स्वाभिन जुड़ रहे हैं. स्वाभिन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया आपने सवाल पूछिए.
5: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
5: सर, मैं रेगुलर सुनता हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने आज कॉल किया है और मेरा ही लकी है कि आज कॉल लग गया है.
0: बताइए बताइए.
5: सर, मैं जैसे आईटीआर भरता हूँ हर साल और मेरी सैलरी 12 लाख रुपए की साल का भरता हूँ
0: जी.
5: अब तो सर टैक्स लगता नहीं है
0: जी,
5: तो क्या मुझे भरना जरूरी है सर?
0: देखिए, अगर अगर रिबेट की वजह से, जिसको पहले 87A रिबेट कहते थे, अगर उस वजह से आपका बिलो टैक्स आ रहा है तो आपको भरना चाहिए. जो लोग बिलो एग्जेम्पशन लिमिट हैं, उन लोगों के लिए भरने की माफी है. 4 लाख से अगर आपकी कम है न्यू रिजीम में और 2.5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में, फिर तो आप नहीं भरेंगे. पर अगर रिबेट की वजह से, क्योंकि आपकी 12 लाख है
1: जी,
0: तो आपको भरना चाहिए और उसको उसको बकायदा नील के रिटर्न आपको फाइल करना चाहिए.
3: नाउ हैव लेट्स हैव अ लुक एट द कमोडिटी प्राइसेस, द वीकली बिहेवियर. क्रूड ऑयल, ग्लोबल क्रूड ऑयल prices rose sharply this week after US President Donald Trump said that the memorandum of understanding with Iran was over and that he did not want to engage with Tehran following renewed hostilities. During the week at the Intercontinental Exchange ICE, Brent crude September futures surged 5.4% to settle at $76.01 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI crude August futures jumped 3.8% to end at $71.41 per barrel.
1: और शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम कॉल्स पर जितने श्रोताओं जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत
0: It was my pleasure. Thank you so much. धन्यवाद.
3: And before we close, a look at the headlines. Benchmark domestic indices snap 4-week winning streak. Sensex and Nifty decline nearly 0.3%. India and New Zealand elevate ties to strategic partnership set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. And global crude oil prices jump this week amid renewed hostility commodities in West Asia. And that's it in this edition of the program. We will be back tomorrow at the same

0: टाइम. डू जॉइन अस देन. टिल देन नमस्कार.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत की वो महफिल जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर आपके लिए आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर जब कहानियाँ दिल से निकलती थी, संवाद जिंदगी से जुड़े होते थे और धुनें सीधे रूह तक उतर जाया करती थी। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी खूबसूरत ज़माने में जहां हर फिल्म अपने साथ एक नई रिवायत और एक नया अंदाज लेकर आती थी। साल था 1954 का, जिसमें एक महान फिल्मकार गुरुदत्त साहब ने दर्शकों को एक बहुत ही यादगार फिल्म दी थी और वो फिल्म थी आर पार। रहस्य और दिलचस्प किरदारों से सजी इस फिल्म में जॉनी वॉकर, श्यामा, शकीला, जगदीप और जगदीश शेट्टी ने अपनी शानदार अदाकारी से इसे यादगार बना दिया था। आर पार की एक और खासियत थी कि इसकी जबान फिल्म के संवादों में कहीं पंजाबी की गर्मजोशी थी तो कहीं उर्दू की नफासत, कहीं बम्बैया बोली की चंचलता और कहीं आम हिंदुस्तानी की सादगी। यही रंग बिरंगी भाषा उस दौर की मुंबई की तहजीब और गंगा जमुनी संस्कृति की एक खूबसूरत झलक पेश करती थी। और जब बात उसके संगीत की हो तो ओपी नैयर की मस्त धुने और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलनशी अल्फाज का जिक्र किए बिना ये सफर अधूरा रह जाता है। इन दोनों की जुगलबंदी ने आर पार के गीतों को ऐसा जादू बख्शा कि वे आज भी संगीत प्रेमियों की महफिलों की रौनक बने हुए हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाजों में नगमा था फिल्म आर पार से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर जब हर फिल्म महज मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी का आईना हुआ करती थी, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिलों में बस जाते थे और उनकी गूंज बरसों तक लोगों की यादों में महफूज रहती थी। आज की महफिल में हम कुछ ऐसी ही फिल्म का जिक्र करेंगे और अगली जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 1955 की एक बेहद कालजयी फिल्म जिसका नाम था श्री 420, जिसने सपनों, संघर्ष, मोहब्बत और इंसानियत की एक ऐसी दास्तान सुनाई कि वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। इस यादगार फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब ने। उनके साथ थी सदाबहार अदाकारा नरगिस और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी नादिरा, जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस कहानी को एक नई ऊंचाई दी। फिल्म का नायक एक पढ़ा लिखा मगर गरीब नौजवान है जो सपनों की नगरी मुंबई में अपनी तकदीर तलाशने आता है। उसकी मासूमियत, उसके ख्वाब और उसकी जद्दोजहद उस दौर के आम इंसान की कहानी बन जाते हैं। यही वजह है कि श्री 420 आज भी उतनी ही ताजगी और अपनापन महसूस कराती है जितना पहले। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने।

0: घूम
1: हम
2: फिल्म श्री 420 का यह नगमा था मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की दिलकश महफिल में। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि वहां सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार हुआ करती थी। किरदार सीधे साधे होते थे मगर उनके जज्बात बेहद गहरे। मोहब्बत में बनावट नहीं बल्कि दिल की सच्चाई झलकती थी। ऐसी ही एक यादगार फिल्म थी जो आई थी 1959 में। उसका नाम था अनाड़ी। मशहूर मारूफ निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपनी मासूम कहानी और मानवीय संवेदनाओं के दर्शकों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया। फिल्म में राज कपूर की सहज अदाकारी और नूतन की सादगी भरी मुस्कान ने प्रेम की ऐसी तस्वीर उकेरी जो आज भी उतनी ही दिलनशी लगती है जितनी पहले थी। वहीं मोतीलाल और ललिता पवार ने अपने प्रभावशाली अभिनय से कहानी को और भी यादगार बना दिया। फिल्म का संगीत अपने आप में एक अनमोल विरासत है। सुरों को अमर बनाया महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने, जबकि गीतों में एहसासात के खुशबू घोली शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। यही वजह है कि अनाड़ी की गीत आज भी दिलों की महफिल में उसी अपनापन

के साथ सुने जाते हैं और गुनगुनाए भी जाते हैं। यह फिल्म वर्ष 1959 की सबसे अधिक सफल फिल्मों में शुमार हुई और इसकी लोकप्रियता ने साबित कर दिया कि सच्ची कहानियां और सच्चे जज्बात कभी पुराने नहीं होते। उसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल।

अनाड़ी फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद जयती रहेंगी आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पानी पे लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कहानी घरौंदा। दिल्ली दिल्ली दिल्ली जी, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली हर खासो आम का शहर, गालिब की गजलों का शहर और मंदिर की घंटियों का शहर, मेट्रो में चलती जिंदगियों का शहर, कनॉट प्लेस की शोखी का शहर। दिल्ली जिसकी चौड़ी सड़कें, तंग गलियों, शोर जी, उम्मीदों की दिल्ली, हौसलों की दिल्ली, तीखी चाट की दिल्ली, सत्ता के गलियारों की दिल्ली। और इस सपनों की दिल्ली में मोहन भी अपनी जोरू के साथ रोजगार की तलाश में चला आया। गांव के कई परिवार गांव छोड़कर दिल्ली चले आए थे, करते भी क्या, मुट्ठी भर जमीन हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाती। जब से बांध बना था वो जमीन भी जाती रही। जमीन के बदले सरकार ने मुआवजा तो दिया था, पर बैठ कर आखिर कब तक खाते, उसे जिंदगी तो नहीं कट सकती थी ना। धीरे धीरे पूंजी भी खत्म होने लगी। आखिर मोहन ने जी कड़ा किया और अम्मा बाबूजी से दिल्ली जाने की इजाजत ले ली, पर उसकी फुलवा ने तो रो रो कर मानो जी हलकान कर लिया हो।

अब फुलवा का बलबा उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा था। तब अम्मा जी ने जी कड़ा करके फुलवा को मोहन के साथ विदा कर दिया। आखिर इकलौते बेटे को अकेले परदेश कैसे भेज सकती थी। कंधों पर सपनों और उम्मीदों का बोझ लिए वो दिल्ली चला आया था। वो दिन था और आज का दिन। मोहन और फुलवा को गांव की बहुत याद आती थी। कितनी बार सोचते गांव वापस लौट जाएं। अम्मा और बाबूजी की बहुत याद आती थी और घर की टूटी दीवारें, टपकती छत बार बार आंखों के सामने आ जाती। कुछ साल और कमा लेंगे तो अम्मा की मोतियाबिंद का ऑपरेशन और घर की मरम्मत भी करवा लेंगे, ऐसा ही सोचा था मोहन और फुलवा ने। मोहन और फुलवा को यहाँ रहते रहते बरसों बीत गए थे। जीवन में खेती के सिवा कुछ काम ही नहीं किया। अनजान शहर में कोई काम देता भी तो कैसे देता। फिर भी कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है। मोहन ने ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर बेलदारी का काम शुरू कर दिया। खेत में पसीना बहाने वाले शरीर आज भरी दोपहरी में सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। अनाज उगाने वाले हाथ आज ईंट उठा रहे थे। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई। इस अनजान शहर में अपनी फुलवा को छोड़े तो छोड़े कहां। तब फुलवा ने कहा था।

0: फुलवा, फुलवा के बारे में तो आपको ठीक से बताया ही नहीं। मध्यम कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तेल लगे बालों के बीच लंबी सी मांग जिसमें पाव भर पीला सिंदूर, माथे पर चवन्नी बराबर गोल बिंदी और हाथ में भर भर की चूड़ियां और कमर में अम्मा की शादी में चढ़ाई चांदी की करघनी चमकती रहती थी। बड़ी कर्मठ और एक बार जो ठान ले तो फिर किसी की नहीं सुनती थी फुलवा। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले ही फुलवा ने छींटदार साड़ी के पल्लू को समेटकर कमर में खोस लिया और मोहन के कमछे को गोल गोल घुमाकर अपने सर पर रखकर ठेकेदार से कहा,
1: ये ठेकेदार बाबू, हम भी काम करब।
0: ठेकेदार ने एक अजीब सी निगाह से फुलवा को देखा। फुलवा एक क्षण को असहज सी हो गई थी और मोहन बिल्कुल फुलवा की ढाल बन के उसके आगे खड़ा हो गया। वो जानता था ना इस तरह के लोगों के बारे में, बस उसकी फुलवा ही कहां सुनती थी किसी की। और वो दिन था और आज का दिन। वर्षों बीत गए थे उन्हें इस अनजान शहर में, जहां कभी कोई इमारत बनती दोनों अपना डेरा डंडा उठाए वहां पहुंच जाते। छोटी सी गृहस्थी थी उनकी, गिनती के चार बर्तन और कपड़े। फुलवा थी तो बड़ी गुणी, वहीं साइट पर पड़े ईंटों को गीली मिट्टी से जोड़कर छोटी सी झोपड़ी बना लेती और मोहन काली पीली पन्नी का जुगाड़ कर छत छवा लेता और ढलाई के लिए आई लकड़ी के पटरों से दरवाजा और फटी साड़ी को तुरपन करके पर्दे बन जाते। बस गृहस्थी बस जाती। फुलवा कहीं भी रहे पर अपने संस्कार धर्म कर्म कभी नहीं भूलती। हर साइड पर झोपड़ी के बाहर तुलसी का चौरा उसके साथ रहता। मुंह अंधेरे उठकर तुलसी माता का चौरा लीपना और सुबह शाम दिया जलाना उसकी आदत में शुमार था। समय पंख लगाए उड़ा जा रहा था। पिंकी और ननकू यहीं पैदा हुए थे। पिंकी दिमाग से बहुत तेज थी और फुलवा की बड़ी इच्छा थी कि दोनों बच्चों को पढ़ाए लिखाए, पर इस बड़े शहर में पेट भरने के लिए पैसा कमा ले वही बहुत था। पिंकी के लिए कॉपी और पेंसिल जुटाना संभव नहीं था, पर फुलवा ने हार नहीं मानी। उसने उसका भी जुगाड़ कर लिया। हारना तो मानो फुलवा ने सीखा ही नहीं था। वैसे भी इंसान अगर परिस्थितियों से हार जाए तो फिर वो इंसान कैसा। फुलवा की वजह से ही मोहन की अम्मा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो पाया था। मोहन जब भी अपनी परिस्थितियों के आगे झुक जाता, थक जाता, हारने लगता, फुलवा उसकी ढाल बनकर बिल्कुल उसके सामने खड़ी रहती और उसे हौसला देती।

रात को जब शहर रोशनी में नहा जाता तो फुलवा की झोपड़ी भी कुप्पी की रोशनी और चूल्हे के अंगार की रोशनी में दमक उठती। चूल्हे की आग में सिकती रोटियों की गमक से सारी झोपड़ी सौंधी खुशबू से महक उठती थी। दिन भर ईंटें उठाने से चोटिल हुए हाथ आटे की लोई को बड़ी कलाकारी से पीट पीट कर हथेलियों पर बड़ा कर देते। चांद सी गोल गोल रोटियों को थाली में रखते ही पिंकी नमक के डब्बे की ओर भागती और मोहन प्याज को जमीन पर रख अपनी मजबूत हथेलियों से ठप की आवाज से जोर से दो टुकड़े में कर देता। कुल जमा 7 रोटियां ही बन पाती, 2 मोहन की, 2 फुलवा की, 2 पिंकी की और 1 ननकू की। और इन गिनती की रोटियों के साथ 7 तक की गिनती भी पिंकी को आ गई। मोहन चुपचाप सिर झुकाए माँ बेटी की बहस को देखता रहता और खाना खाता रहता। जानता था रोज रोटी 7 ही बनती है, पर फुलवा पिंकी की बात पर मुस्कुरा देती। वो पिंकी का मन रखने के लिए रोज ऐसा ही कहती और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

पिंकी के सवाल को सुन फुलवा की आंखें भीग गई। आंचल के कोर से आंसुओं को पोंछती हुई फुलवा की नजर मोहन से टकरा गई। मोहन समझता था उसकी आंखों में आंसुओं का कारण, पर वो भी लाचार था। कभी कभी सोचता था ऐसे सपने देखने से क्या फायदा जो पूरे ना हो सके। सोचा था गांव का मकान पक्का करवा लेंगे, कम से कम बुढ़ापे के लिए एक पक्का घर तो हो ही जाएगा। अम्मा भी कितनी बार कह चुकी थी घर जगह जगह से टपकता है, जाड़े और बारिश में बहुत दिक्कत होती है, पर बस सुनकर रह जाता, कुछ कर ही नहीं पाता। और यहाँ खाने का ठिकाना नहीं था, पक्के घर की

हाथ छुड़ाकर दूर कहीं छिप गई थी। बिस्तर मानो चुप सा रहा था। वैसे भी बिस्तर के नाम पर था ही क्या। फुलवा ने सीमेंट की प्लास्टिक की बोरियों को जोड़ जोड़ कर नीचे बिछा दिया था और अपनी फटी पुरानी साड़ियों को जोड़कर गठरी सी बनाई थी, जिसे वो बिस्तर के रूप में प्रयोग लाती। और पिंकी, ननकू और मोहन के फटे पुराने कपड़ों को झोले में भरकर तकिया बना लिया था। आज ना जाने क्यों मोहन को गांव की बहुत याद आ रही थी। वो पीपल का पेड़, खेत खलियान, बड़े हनुमान जी का मंदिर, पोखरा और अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी। अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी और लहसुन मिर्च की चटनी खाए हुए कितने दिन हो गए थे। चूल्हे की आग की तपिश में सिकती सौंधी सौंधी रोटी की सुगंध भूख को और बढ़ा देती। अम्मा बाबूजी को याद कर मोहन का मन भारी हो गया था। घर को पक्का कराने का सपना सपना ही बनता जा रहा था। कभी कभी मोहन सोचता, अम्मा से जो वादा किया है क्या वो कभी पूरा कर पाएगा। पता नहीं कब उसकी ये इच्छा पूरी होगी। शाम से ही मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रह रह कर बिजली चमक रही थी।

0: दोनों बच्चों को सीने से चिपका लिया, जैसे कोई हिरनी शिकारी के डर से अपने बच्चों को छिपा लेती है। तभी एक चूहा उसके पैर के ऊपर से गुजर गया और मानो बस उसकी चीख से निकल गई हो।
1: ए जी, का हमार कभी आपन घर होई? पक्का घर जहाँ ये चूहन ये बारिश के नौबत ही ना आई। ये चूहन बहुत नरक ही है यहाँ। कैसो कैसो तक करके लाला के हाथ पांव जोड़ के कल ही आटा उधार मांग के लायल रहीन। सारी पन्नी काट दीहीन, सब आटा छिटाई गलवा। ऊपर से ये बारिश और आफत की ना, चूहा और चिटियन के घरन में पानी घुस जाई।
2: ठीक है कहा दबाहू।
0: झोपड़ी में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। झोपड़ी के एक कोने में ढिबरी जलती रही और उसकी रोशनी में मोहन और फुलवा चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कहने को उनके पास कुछ नहीं था, शब्द मानो थे ही नहीं। फुलवा मोहन के नजदीक सरक आई। एक ही तकिया था जिस पर पिंकी सो रही थी। मोहन ने धीरे से अपनी बाहें फैला दी और फुलवा ने उसे तकिया समझकर उस पर अपना सर टिका दिया। उनका ये प्यार वाकई में बहुत प्यारा था।

0: मोहन की आंखें लगातार आसमान को घूर रही थी, मानो मन में घुमड़ते सवालों का जवाब पूछ रही हूँ। फुलवा ने एक गहरी सांस ली। काश हमारा भी घर होता। फुलवा की आंखों में आंसू आ गए। मोहन की बाहें भी भीग गईं। आज सिर्फ उनकी आंखें ही नहीं, उनका दिल भी रो रहा था। कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक छत ही तो चाहिए थी, और क्या, और तो कुछ भी नहीं।
1: एक बात बतावा, का हमार आपन मकान नहीं बन सकत? हाँ,
2: पैसा कहाँ से लाएं मावा?
1: गाढ़े बगत के लिए तू जो थोड़ा पैसा बचा के रखल रहू, और हमार अम्मा, तुहार अम्मा जो बिहाए में हमके चांदी के हसली और करधन चढ़ायल रही, ओसे काम ना चली।
0: फुलवा की आंखों में उम्मीद के तारे टिमटिमाने लगे और मोहन फुलवा के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया।
2: धत पगली, इतने पैसा से का होइल बा? मकान बनाए खातिर बहुते पैसा चाहिए ना?
1: हमार तो किस्मत ही खराब बा।
0: मोहन ने गहरी सांस ली। फुलवा ने निराशा से अपनी गर्दन झुका दी। उसके चेहरे पर मानो दर्द उभर आया। धीरे धीरे वो दर्द पूरी झोपड़ी में पसर गया और झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। तभी आसमान से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, मानो मोहन के दुख से दुखी होकर उसकी भी आंखें भीग गई हों। मोहन और फुलवा हड़बड़ा कर उठ गए। बच्चे नींद में गुनगुनाने लगे। बारिश तेज होने लगी। धीरे धीरे झोपड़ी में पानी भरने लगा। मोहन और फुलवा बेचारगी से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाते? फुलवा ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और सामने, बिल्कुल सामने चाय की टपरी थी, वहाँ पर नीचे आकर खड़ी हो गई और मोहन जल्दी जल्दी

रात भर बारिश होती रही। मोहन और फुलवा बच्चों के साथ पूरी रात वहीं टपरी के नीचे खड़े रहे। चारों तरफ पानी ही पानी। मोहन की झोपड़ी में भी घुटनों तक पानी घुस गया था। पानी की तेज धार और हवा से काली पन्नी पूरी तरह से फट चुकी थी। मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी जलमग्न हो गई थी। तुलसी मैया पानी की तेज धार से एक ओर झुक सी गई थी और फुलवा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कैसे तिनका तिनका जोड़कर गृहस्थी बनाई थी। पिंकी भी बिलबिला गई, भूख से नहीं दर्द से। उसके सारे सीप और पत्थर उस पानी में कहीं खो गए थे। मोहन समझ नहीं पा रहा था इस परदेश में अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाए।

0: फुलवा ने निराशा से मोहन की ओर देखा, जिसे पूछना चाह रही हो अब क्या होगा। तभी मोहन को कुछ ख्याल आया। मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। मोहन को कुछ ख्याल आया।
1: फुलवा, तनी फोनवा ला के दिल बा, देखी किशनवा कहाँ भाई, हो सकत है ओकरा पास रहन के ठिकान मिल जाए, किशनवा का नंबर तनी दे दे।
0: मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। फुलवा ने ननकू को गोदी से नीचे उतारा और कपड़ों की गठरी से एक डायरी निकालकर मोहन के हाथों में रख दी।
1: याद बा का?
2: तो नंबर मिलावा हम बोलत है 9415।
1: हेलो हेलो किशन।
3: राम राम भैया, सब ठीक है ना? ई वक्त फोन कैसे करे? बाल बच्चा और भौजी सब ठीक है ना?
1: ओहो किशन, यहाँ बड़ा तेज पानी बरसत बहो, सारी रात बरसा हो बड़े, पानी झोपड़िया में घुस गई, तो हर पास जगह हो तो हमरा अपन परिवार के ले आई ना, हमारा समझ में ना आवत गई कहाँ जाएंगे ये घड़ी लेकर के हो।
3: हम तो गांव आए हैं, वहाँ होते तो तुहार मदद जरूर करत।
1: गांव? गांव चल गई? घर में सब ठीक बनो?
3: हमार मेहरारू का नवा महीना चल रहा है, अस्पताल भर्ती कराए हैं और प्रधान जी भी फोन करे रहे, आवास का पैसा आ गई है, तुहार खाते में भी देखा पैसा आयल हुई, तो के भी दस्तखत करे के जाए के पड़ी।
1: का कहो हो? सच में?
2: सच बोलता है?
3: हाँ बिल्कुल सच। मोहन भैया, हम गरीबन का सहारा तो भगवान ही है, हम तो कभी सोचले भी ना रही कि हम गांव में पक्का घर बनवा पाईब, पर अब आवास योजना की मदद से हमरो सर पर भी छत हुई, बारिश से गर्मी से ठंड से बचाव हुई। भैया तू भी जल्दी से जल्दी गांव आकर दस्तखत करा और आवास का पैसा से पक्का घर बनवा ला।
1: जनत फुलवा, हमारा आवास के सरकार पैसा दे बोले।
2: सची में?
1: किशनवा के फोन आये बोले ना, आवास के पैसा आ गए बोले, हम घर चले।
2: का सचमुच आवास का पैसा हमें मिली? हमरा तो अपन कान पर विश्वास ही न हो रहा ननकू के बापू, कहीं ये सब एको सपना तो ना बा कि जो हाथ अब तक दूसरे के घर बनावत रही वो अब अपन घर बनाई। अब पिंकी और ननकू भी ठंड में और बरसात में बुखार से बचल रही और हम लोग भी अपन घर में इज्जत के जिंदगी जी। अब अपन घर, अपन पक्का घर।
0: मोहन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, वो कागज भरकर तो मानो भूल ही गया था और आज आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था, वो भी पक्के मकान का। अब वो भी पक्के मकान में रह पाएगा और अपने अम्मा के सपनों को पूरा कर पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये आंसू खुशी के आंसू थे।
4: पिपरा के पतवा शरीर के डोले मनुआ कि यारा में उठत हिलो, अरे पुरुआ के झोंकवा में आई।

0: छोटा सा घर, उनका अपना घर।
1: तो दोस्तों ये थी कहानी घरौंदा, और इसी के साथ कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी को समेटने की इजाजत दीजिए। रश्मि कुकरेती आपको कहती है नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदर देवा स्थित रोगोंगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है आराधना।

जब संसार निद्रा में डूब जाता है, आकाश अपना प्राचीन ग्रंथ खोलता है। उसके पहले पृष्ठ पर बादलों की चलती हुई लिपि अंकित होती है, दूसरे पृष्ठ पर सितारों की उजली वर्णमाला। एक लिखता है, बहना ही जीवन है, दूसरा जोड़ देता है, टिके रहना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों मिलकर समय का एक ऐसा शास्त्र रचते हैं जिसे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, पर हर संवेदनशील हृदय कभी न कभी पढ़ी लेता है। रात्रि उस ग्रंथ की संरक्षिका है, वह किसी से शुल्क नहीं लेती, किसी का नाम नहीं पूछती, केवल इतना चाहती है जो ऊपर देखे वो भीतर भी देखना सीख जाए। इसलिए जब अगली बार बादल सितारों के बीच से गुजरे, उन्हें केवल बदलती आकृतियों की तरह मत देखना, वे जल और ज्योति का शाश्वत संतुलन है। इसी संतुलन पर ऋतुएं टिकी हैं, इसी पर यात्राएं, इसी पर स्वप्न और इसी पर मनुष्य का वो विश्वास जो हर नए प्रभात से पहले रात्रि के आकाश में जन्म लेता है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अगला गीत फिल्म का नाम है जीने की राह। आवाज है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की।

रजनी ने आज क्षितिज से क्षितिज तक नील पट बिछा दिया था। उस पर बादलों ने रूप बदलते हुए अनगिन आख्यान रचे और सितारों ने बिना किसी शोर के उन आख्यानों में अर्थ भर दिए। एक बादल दूर समुद्र की यात्रा से लौटा था। उसकी देह में लहरों का नमक था, नदियों की स्मृतियां थीं, पहाड़ों की थकन

थी, धान की बालियों की प्रतीक्षा थी। एक सितारा करोड़ों वर्षों से उसी दिशा में टंगा था, किंतु उसका प्रकाश हर रात नया प्रतीत होता था। वो जानता था स्थिर रहकर भी नवीन बना जा सकता है। रात ने दोनों को एक ही आकाश में स्थान दिया। तभी संसार ने समझा, परिवर्तन और स्थिरता प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे की पूरक धाराएं हैं। धरती के वृक्ष ऊपर देख मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, जो ऊपर इतना विशाल होकर भी एक दूसरे को जगह दे सकते हैं, उन्हीं से संतुलन का पाठ सीखना चाहिए। जब प्रातः की आभा निकली, ना कोई विजेता था ना कोई पराजित, केवल आकाश था जो सबको समेट लेने के कारण और भी विराट हो गया था। और अगला गीत तलत अजीज की आवाज में, फिल्म उमराव जान से।

तुम यूं ना आना कि केवल द्वार की सांकल भर हिले, तुम यूं उतरना जैसे सूखे कंठ में पहली बूंद घुले। जब राहें रिक्त मिले तब भी अपना नेह निभाना, और यदि दिशाएं व्यस्त रहें तब भी मन का दीप जलाना। आना आना वैसे जैसे निर्जन वन में कोयल का पहला स्वर फूटे, जैसे नीरव घाटी में दूर कहीं निर्जर का संगीत छूटे। आना आना वैसे जैसे बीज के भीतर हरित स्वप्न आकार संजोते हैं, जैसे धरती के अंतर में अदृश्य अंकुर सांस पिरोते हैं। आना आना वैसे जैसे दीपक की लौ तेल से अपना नाता जोड़ती है, जैसे चंदन की गंध स्पर्श बिना भी मन मोड़ती है। मैं प्रतीक्षा को विलाप नहीं बनने दूंगी, विश्वास की डोरी किसी संशय पर न तानूंगी। मेरे नयनों ने अनगिन ऋतुएं बदली देखी, पर आशा की चुनर कभी धूल नहीं होने दी। यदि पग थक जाएं तो पल भर विश्राम कर लेना, किंतु अपनापन राहों में कहीं न धर देना। मुझे वैभव का स्वर्ण मुकुट नहीं चाहिए, बस स्नेह की एक रेखा जीवन भर पर्याप्त रहे। आना आना वैसे जैसे शिशु की हंसी घर के आंगन को भर देती है, जैसे तुलसी पर गिरती ओस प्रभात को पावन करती है, जैसे नदी सागर का पता रखती है, जैसे नभ हर संध्या पक्षियों को घर देता है। मैं तुम्हें बंधन का निमंत्रण नहीं लिखती, मैं तो केवल सहचर्य की सरिता रचती हूँ, जहाँ आत्माएं एक दूसरे का भार नहीं एक दूसरे का आधार बनती हैं, जहाँ शब्द कम पड़ जाएं पर दृष्टियां अर्थ कहती हैं। यदि कभी दूरी अपने वृत्त बड़े कर ले तो स्मृति की रेशमी डोरी अचानक मत तोड़ देना। यदि जीवन असंख्य दायित्वों के भार से भर जाए तो स्नेह का एक अक्षर मेरे हिस्से छोड़ देना। आना वैसे जैसे नदी अपने सागर का पता रखती है, जैसे नभ हर संध्या पक्षियों को घर देता है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है मधुमती।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब जो जिस गीत के साथ अभी हम आपको छोड़े जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम है हम जोली, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। साथ ही हम आपको ये भी याद दिला दें कि हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है।

0: हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बंदरदेवा स्थित रोंगोगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड पार्क के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निरीक्षण भी किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए, जबकि 6,462 लोगों को बचाया गया है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले मार्केटा वोद्रोसोवा ने 2023 और बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। साउथम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉबी, आवाज है शैलेंद्र सिंह की।

हर रात एक ऐसा समय आता है जब संसार की गति मंथर पड़ जाती है और केवल आकाश जागता है। उसी बेला में चांद अपनी उजली दृष्टि से धरती पर बिखरे असंख्य जीवनों को देखता है। कोई घर लौट रहा होता है, कोई स्वप्न बुन रहा होता है, कोई उत्तर खोज रहा होता है और कोई स्वयं से मिलने की प्रतीक्षा में होता है। मेरा मन भी उस रात किसी प्रश्न का यात्री था। उसने चांद से कहा, तुम्हारी पूर्णता का रहस्य क्या है? चांद ने उत्तर नहीं दिया। वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहा और उसी परिवर्तन ने मन को समझा दिया, पूर्ण वही है जो परिवर्तन से नहीं डरता, रात्रि की निशब्द नहीं। उसकी गहन व्यापकता में इतना सत्य, इतना उज्जवल था कि किसी शब्द की आवश्यकता ही नहीं रही। तब से चांद, जब भी चांद निकलता है, मन उत्तर नहीं खोजता, केवल सीखता है कि अधूरापन भी जीवन का एक सुंदर अध्याय है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन का पंछी कभी किसी वन में नहीं रहता, उसका बसेरा दृश्य से अधिक अनुभूति में होता है। वो ऋतुओं की भाषा समझता है, पत्तों के बदलते रंग पढ़ता है, पहाड़ों की नीरव नहीं उनकी गंभीर मुद्रा से धैर्य का अर्थ ग्रहण करता है और नदियों से सीखता है रुकना नहीं, पर सबको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना। एक दिन उसने आकाश से कहा, मुझे ऊंचाई नहीं चाहिए, मुझे दृष्टि चाहिए। आकाश प्रसन्न हुआ। उसने अपनी अनंतता का एक छोटा सा अंश उस पंछी की आंखों में भर दिया। अब वह किसी शाखा को देखकर केवल पत्तियां नहीं गिनता, वो समझ लेता है कितनी ऋतुओं ने मिलकर उस वृक्ष को वृक्ष बनाया होगा। उसकी उड़ान अब दूरी नहीं नापती, वह अर्थ खोजती है। जो अर्थ तक पहुंच जाए उसे दिशाओं का अभिमान नहीं रहता। मन का पंछी उस दिन पहली बार सचमुच उड़ना सीख गया। मन का पंछी उस दिन पहली बार सचमुच उड़ना सीख गया। मन का पंछी कभी किसी वन में नहीं रहता, उसका बसेरा दृश्य से अधिक अनुभूति में होता है। अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

रात्रि का विस्तार किसी महासागर से कम नहीं था। उसके बीच चांद एक शांत दीप की तरह अपनी दिशा में बढ़ता रहा। मैंने मन को देखा, वो कभी स्मृतियों के तट पर बैठ जाता, कभी कल्पनाओं की नाव बना लेता, कभी भविष्य के क्षितिज तक दौड़ पड़ता। चांद उसे रोकता नहीं था, वो केवल साथ चलता था, मानो कह रहा हो, यात्रा तुम्हारी है, मैं केवल मार्ग का साक्षी हूं। मन ने पहली बार अपने ही भीतर उतरना स्वीकार किया। वहां न कोई पराजय थी, ना कोई विजय, केवल अनुभवों की परतें थीं जिन्होंने उसे आज का स्वरूप दिया था। रात्रि धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, चांद अपनी धवल छवि बिखेरता रहा और मन समझ गया, जो स्वयं के अंतरिक्ष को पहचान लेता है, उसे बाहरी आकाश केवल सौंदर्य नहीं, जीवन का शाश्वत संकेत भी प्रतीत होने लगता है। उस रात चांद आकाश में था, पर उसकी वास्तविक उदय मन के भीतर हुआ था। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है डर।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अभी जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है जीना मरना तेरे संग, आवाज है कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की। तो मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत हैदराबाद भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। भूकंप के कारण लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से 315 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आपदा में 16,740 लोग घायल हुए जबकि 6,462 लोगों को बचाया जा सका। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 पुरुष वर्ग में 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आदित्य ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में फिलीपींस के बरुइस एफ्रेम जॉन को 5-0 से हराया, जबकि 60 किलोग्राम में सिकंदर ने ताजिकिस्तान के शरीफ खोन नूरालियेव को 4-1 से शिकस्त दी। साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल की बातें, अनकही बातें और सुरों में घुली हुई मीठी बातें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके दोस्त और आपके हम सफर रूपा धवन। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं इस वक्त यानी 3:11:40 पर अपना पसंदीदा शो हमराही। आज हमराही के सफर में हम और आप मिलकर करेंगे ढेर सारी बातें और सुनेंगे वो सदाबहार युगल गीत जिनमें बातें शब्द ही मोहब्बत की धड़कन बन गया। चलिए इस खूबसूरत से सफर का आगाज करते हैं इस बेहद ही हसीन और चुलबुले नगमे के साथ। फिल्म है बात एक रात की, स्वर रफी जी और आशा जी का।
1: इजाजत हो तो एक बात कहूँ, जो इजाजत

फिल्म उमर कैद से अभी ये गीत सुना आपने, मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। क्या बात है, इतना खूबसूरत गीत सचमुच। और ये पुराने गीतों में जो जादू है ना, बातों का जो सलीका था, वो इन गीतों में, और वो इन गीतों को और भी खास बना देता है। सुनते हैं एक और ऐसा ही गीत, खूबसूरत सा, फिल्म 9-2-11 से किशोर साहब और आशा जी की आवाज़ में।

दोस्तों, पुराने दौर के गीतकारों ने बात शब्द को कितने अलग अलग रंगों में पिरोया है। कभी प्यार की शुरुआत में होने वाली मीठी बातें, तो कभी सावन की रातों में होने वाली अधूरी बातें। जब लता दीदी और किशोरदा एक साथ सुर मिलाते थे तो ऐसा लगता था मानो दो हमराही किसी मखमली रास्ते पर चलते हुए एक दूसरे से सुख दुख को बांट रहे हों। आइए बातों की इस कारवां को एक ऐसे गाने की तरफ ले चलते हैं जो रिमझिम बारिश में दो दिलों की बातचीत को अमर कर गया। सुनते हैं एक और लता जी और किशोर साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत अजनबी फिल्म से।

0: दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत बात करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब संगीत और शब्द दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ बातों के हुस्न को बयां करें तो वो शाम कितनी हसीन हो जाती है। पुराने दौर के युगल गीतों की तो बुनियाद ही बातों पर टिकी थी। कभी गीला शिकवा, कभी मनुहार, तो कभी चुपके से दिल का हाल कह जाना।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:32 और 46 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ हमराही के कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे थे फिल्मों में बातों के ऊपर आधारित गीतों की, जिसमें दिल के गिले शिकवे, सारे दिल का हाल शब्दों को बातों के जरिए हुस्न का बयां करना। पुराने दौर के युगल गीतों की तो बुनियाद की बातों पर ही टिकी होती थी, कभी गीला शिकवा, कभी मनोहार, तो कभी चुपके से दिल का हाल कह जाना, जैसे कि इस गीत से जाहिर होता है।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

क्या बात है, सचमुच पुराने गानों में बातों का जो सलीका था वो इन गीतों को और भी खास बना देता था। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, लेकिन जिसमें बातें नहीं अपने दिल के भावों का इजहार किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहा है दिल ने दिल से। बातों बातों फिल्म का ये गीत अमित कुमार और आशा जी के स्वर में आप सभी के लिए।

जी हाँ, मीठी मीठी बातें, और वो भी दिल के साथ। ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ सुना, लेकिन सुनकर दिल वाग वाग हो गया। वैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने ही चहेते शो हमराही पर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और साथ हूँ मैं आपके रूपा धवन। तो जनाब, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, दिल में जो बातें होती हैं ना, वो मोहब्बत में अक्सर हुस्न के साथ बयां हो जाती है। जैसे कि इस गीत के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत फिल्म महल से, किशोर कुमार साहब और आशा जी के स्वर में।

तो जनाब, जोशीला फिल्म का अभी ये नगमा आपने सुना। और बात करें अगर आँखों की, तो प्यार में सबसे खूबसूरत बातें वो हैं जो जुबा से नहीं बल्कि आँखों से की जाती है, ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। अच्छा, आज बातों के सिलसिले में आप सोचिए कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आज भी आपके दिल के सबसे करीब है, या वो कौन सा पुराना युगल गीत है जो आपको किसी खास इंसान की बातों की याद दिलाता है।

जी हाँ, आज हमने बात की हमराही में उन गीतों की जिनमें बातों का जिक्र था। बातों का क्या है जनाब, बातें तो अंतहीन हैं। अभी आपने बेहद ही खूबसूरत सा नगमा सुना, छोटी सी बात फिल्म से यशोदास और आशा ताई की आवाज़ में। जैसे कि बातें तो अंतहीन हैं, हमने बात की अच्छे गीतों और आप जैसे प्यारे हमराही साथ हों तो रातें अक्सर छोटी पड़ जाती हैं, मगर बातें ख़त्म नहीं होती। जैसे कि अभी समय हुआ है 3:54 और 10 सेकंड, आप हैं हमराही में रूपा धवन के साथ और वक्त का तकाजा है और अब आज के इस सफ़र को यहीं थामने का समय आ गया है। तो हमने युगल गीतों के ज़रिए दिल की बातें कहीं आज हमराही में, कुछ आपने सुनी कुछ मैंने कही। कल फिर ठीक इसी वक्त मिलेंगे, लेकिन जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ। और कल नहीं, अभी तो आपके साथ 6 बजे तक हूँ मैं। जी हाँ, सुबह के 6 बजे तक अरुणिमा और भोर सुहानी भी आपके साथ लेकर हाजिर रहूँगी। फिलहाल अपनी बातों में मिठास रखिए, अपनों का साथ रखिए। चलते चलते छोड़ जाती हूँ आपको इस बेहद सुरीले नगमे के साथ, जिसे हमने दिया है फिल्म महल से।

0: ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों दोनों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का कल कर्नाटक के मैसूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 33 राज्य पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया और कई पीढ़ियों के असंख्य लोगों के दिल को छुआ। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फूक कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के जॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Laxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: Defense Minister Rajnath Singh said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam yesterday. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bangalore. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will participate in the Paryavaran Sanrakshan Sankalp program at the Pusa campus in New Delhi today. On the occasion, he will interact with nearly 17,000 Vriksh Mitras from across the country and call for transforming environmental conservation into a nationwide people's movement through active public participation. Legendary playback singer S. Janki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 in Mysuru, Karnataka yesterday after battling age-related health issues. Vice President C.P. Radhakrishnan has expressed grief over the demise of legendary playback singer. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She is conferred with 33 state film awards. She was chosen for Padma Bhushan in 2013. In tennis, 21-year-old Linda Noskova won her maiden Grand Slam title after defeating fellow Czech Karolina Mukova 6-2, 5-7, 6-3 in the Wimbledon women's singles final on Centre Court in London. And that is the end of this news bulletin.

कहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी संगति और अच्छी किताबें ऐसी अनमोल संपत्ति होती हैं जो हमेशा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक इसी तरह हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं साथ ही साथ। वक्त हुआ है 4:11 और 24 सेकंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपने ही दोस्त रूपा के साथ। बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी को।

तो जनाब, हमारे जो मन के विचार हैं ना, वही हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारे जीने का अंदाज बदल सकती है सकारात्मक सोच। अपनों को, दोस्तों को और खुद को उनकी अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी बातों के लिए शाबाशी दीजिए। दोस्तों, डांट डपट तो सिर्फ डर पैदा करती है, लेकिन सच्ची तारीफ और हौसले से पैदा होती है हर मुश्किल को जीतने की एक नई उम्मीद। और इस उम्मीद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे दोस्त।

बातें तो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, और दोस्तों में भी कभी कभी ऐसी बात हो ही जाती है कि दोस्ती छोड़कर वो दुश्मनी करने लगते हैं। लेकिन ये दुश्मनी थोड़ी देर की बात होती है, जब एक दूसरे से मान मनोहार करके मना लेते हैं एक दूसरे को, तो फिर से वही दोस्ती पक्की हो जाती है। जी हाँ, और जैसे आपकी और हमारी दोस्ती अभी बनी हुई है, बरकरार है, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 4:22 और 20 सेकंड आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, लता मंगेशकर जी और किशोर साहब के स्वर में।

गुण अवगुण सभी में होते हैं, तो दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाने में समय लगाइए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद नहीं करिए बल्कि दीपक जलाने में समय लगाइए। अंधा कानून फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए।

किस्मत और मेहनत दोनों में एक फर्क होता है। किस्मत केवल वही दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो भी दिला देती है जो किस्मत में नहीं लिखा होता। चलते चलते फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए लता जी के स्वर में।

लफ्ज़ ही होते हैं इंसान का आईना, लफ्ज़ ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या है वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है।

अभी कांच हूँ इसलिए सारी दुनिया को चुभता हूँ, अभी कांच हूँ इसलिए सारी दुनिया को चुभता हूँ, जब आईना बन जाऊँगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दुनिया तभी याद करती है जब आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत नहीं, आप दूसरों की कमी बनिए। जी हाँ, जब आप कमी बनेंगे ना दूसरों की, जब आपको कमी जो है वो दूसरों को खलेगी ना, तो आपको बरबस ही याद कर लिया जाएगा। पर फिर भी हम तो यही कहेंगे कि दूसरों की भलाई में खुद को इतना खो दीजिए कि आपका नाम हर किसी शख्स की जबां पर हमेशा रहे, हमेशा आपको याद करें, और इतना याद करें कि उनकी जो आंखें हैं ना वो सोना ही भूल जाएं।

तो जनाब खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत खुद आप हैं, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। और समय हुआ है फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:54:22। आप हैं रूपा धवन के साथ, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का आह्वान करेंगे। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा नेता ने मांग की है कि श्री उमर अब्दुल्ला या तो अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे या फिर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने वियतनाम में हुई पर्यटक नौका दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले गए 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए और भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के टॉस बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ मुचोवा विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली लगातार 4 वर्षों में तीसरी चेक खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लीजिए जनाब, धीरे धीरे सूरज ने अपनी किरणों को साथ में सूरज के रथ पर चढ़कर सूरज आ गया है। अपनी किरणों को धीरे धीरे आसमान से धरती की तरफ बिखेरता हुआ और उसकी रोशनी से प्रकाशित होता ये सारा जहां। भोर सुहानी में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। और जनाब, कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है या जब कोई उसकी तकलीफ को नहीं समझ पाता, तब यही एक विश्वास सबसे बड़ा सहारा बनता है। कौन सा विश्वास? कोई देखे या ना देखे, मेरा ईश्वर सब देख रहा है और सब जानता है। वो हमारी खामोशी भी सुनता है और हमारे बिना कहे भी हमारी प्रार्थनाएं जानता है।

जी हाँ, मैंने कहा था ना कि ईश्वर सब जानता है। आप भी ये सब जानते हैं कि ईश्वर सब जानता है, हर जगह पर उसी का अधिकार है। और सुबह सुबह का समय भी ईश्वर का दिया हुआ एक कोरा कागज है, यानी आज का अध्याय। तो आज के अध्याय को बस अपनी मेहनत, मुस्कान और अच्छे विचारों से जैसा चाहे हम भर सकते हैं और इस जिंदगी के सफर को और भी सुहाना सफर बना सकते हैं।

जी हाँ, भोर सुहानी हो गई है। आसमान ने वो स्याह चादर समेट ली है और पूरब से सूरज की सुनहरी किरणें धीरे से आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। सुबह का ये वक्त ये कुदरत का हमें दिया हुआ सबसे हसीन तोहफा है। वो तोहफा जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब हवा में एक अजीब सा सुकून होता है। आज की इस नई सुबह में बीते कल की हर चिंता को पीछे छोड़िए और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराइए, क्योंकि एक नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आपके सामने खड़ा है। तो क्यों ना हम भी बस्ती बस्ती और पर्वत पर्वत पर इस बंजारे के साथ चलें। रेलवे प्लेटफार्म का ये गीत आप सभी के लिए रफी साहब के स्वर में।

स्वागत है आप सभी का फिर से भोर सुहानी में। सुबह सुबह जब हम चाय की चुस्की लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आज के दिन भर की भाग दौड़ का नक्शा बनने लगता है। जी हाँ, पूरे दिन भर में हमारी क्या दिनचर्या रहने वाली है, हम क्या काम करेंगे, किस समय हमें बाजार जाना है, किस समय हमें बच्चों को लेना है, किस समय हमें अपने ऑफिस में जाना है, वहाँ जाकर क्या काम करना है, पूरा का पूरा ब्यौरा। बाप रे, इतनी बातें, इतने काम कि मैं तो बोलते बोलते थक जाऊँगी। खैर, इस ब्यौरे को आप दिमाग में तो रखिए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी इस खूबसूरत सी सुबह में भाग दौड़ में शुरू करने से पहले सिर्फ अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आप बेहद खास हैं। आप हैं तो हम हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके साथ हैं हम, आपके दोस्त, आपके हमराही। भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ रूपा धवन। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ और आज की भोर सुहानी सुनते रहिए गीतों से लबरेज ये कार्यक्रम। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह का संचार करती आज की भोर सुहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात।